एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आज वीरवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 24वीं तिथि तदनुसार 14 मई 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 36 सेकंड हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती से हिंदी समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धुलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात करेंगे।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect.
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स @20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य जरूरी उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन भागीदारी से भाग्योदय लक्ष्य के तहत आयोजित किया जा रहा है। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब सुनिए रामचरितमानस। प्रस्तुति होगी वाणी जयराम की, निर्माण किया है सतीश भाटिया ने।

भरत तथा कुलगुरु वशिष्ठ के साथ अयोध्या तथा जनकपुर से आए सभी लोग चित्रकूट में 4 दिनों से निवास कर रहे हैं। श्री राम को देख सभी नरनारी अत्यंत हुलसित हैं। सबकी यही इच्छा है कि वे श्री राम को साथ लिए बिना वापस न लौटें। उन्हें वन में छोड़कर जिन्हें घर नगर में रहना अच्छा लगे, समझ लेना चाहिए कि विधाता उनके विपरीत हो गया है। यदि देव अनुकूल हों, तभी राम के निकट वन में निवास करने का सौभाग्य मिल सकता है। एक दिन माताओं के पास समय देख राजा जनक का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या ने आदर सहित उनका सत्कार किया, उन्हें उचित सम्मान से आसन दिए। दोनों टोलियों के व्यक्ति पुलकित किंतु शिथिल हैं। उनकी आंखों में हैं प्रेम

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस, प्रस्तुति थी वाणी जयराम की, निर्माण किया था सतीश भाटिया ने। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आज विक्रम संवत 2083 के ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। आकाशवाणी से अब सुनिए ये संदेश।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये आकाशवाणी है,
2: हर पल आपके साथ।
1: समाचार हो या सदाबहार गीत,
2: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
1: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
2: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
1: आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से अब सुनिए आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

शाम 6:20 पर सुनेगा गीता संदेश। इसमें आज आप सुनेंगे अध्याय 3 के श्लोक 7 से 9 की व्याख्या। प्रस्तुत करता होंगे डॉक्टर चित्रंजन दयाल सिंह।

हरियाणवी लोक गीतों का कार्यक्रम बाजे नगाड़ा सुनिएगा सुबह 7:40 पर। आज के कलाकार होंगे पाले राम। सुबह सवेरे का समय रहेगा सुबह 8:30 और सुबह 9:30 पर सुनिएगा नॉन फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम स्वरांजलि।

शाम 5:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम गाने नए पुराने। शाम 6:30 पर होगा किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। शाम 7 सुनेगा कार्यक्रम ग्राम संसार। कार्यक्रम जय जवान आप सुन सकेंगे शाम 7:30 पर, और नॉन फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता सुनेगा शाम 7:45 पर। रात्रि 8 सुनेगा कार्यक्रम कुछ बातें कुछ की। और अंत में रात्रि 10 सुनिएगा व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें। ये थी आज दिन भर में हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से अब सुनिए देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, फिर सुबह 7 बजे सुनिएगा हिंदी समाचार और सुबह 7:05 पर होंगे अंग्रेजी समाचार। इन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect.
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स A20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यह मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. A two-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Narendra Modi will visit Abu Dhabi tomorrow as the first stop of a five-nation tour that will take him through the UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy between Friday and 20th of this month. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, informed that on the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will meet UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. He said the two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest.
5: Prime Minister will begin his visit from the UAE on 15 May, where he will meet the President of the UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and exchange views on bilateral relations, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. During the visit, both the leaders will discuss avenues to further deepen our bilateral ties in areas including trade, investment, energy, technology, culture, and people-to-people connect.
4: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC Bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to the 26th of May, during which the newly elected MLAs will take oath. With this move, Assam is set to become the third state after Uttarakhand and Gujarat to table a Uniform Civil Code Bill. The West Bengal government has lifted all restrictions on the interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, oil seeds, food grains and other essential products. The restrictions had been imposed by the erstwhile TMC government. On the other hand, in a significant development, the government of West Bengal decided to hand over the cases related to teachers' recruitment, municipal recruitment and cooperative services recruitment scams to the CBI. The West Bengal government has also terminated the services of all persons who were re-employed by the TMC government after their superannuation. In Uttar Pradesh, rain along with dust storm and lightning have claimed 43 lives in the past 24 hours. Chief Minister Yogi Adityanath has taken cognizance of the incidents and asked the officials to provide every possible help to the affected people. Maximum deaths have been reported from Bhadohi district, where 15 people lost their lives. More than one dozen people are injured and admitted to different hospitals. 10 people died in Mirzapur, 9 in Fatehpur, while 5 people died in Badayun and 4 people died in Bareilly district. The government has given 1-year extension

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हरखराम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
0: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
0: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
0: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
0: जी श्रोताओं, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
2: जी
0: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
0: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
2: जी
0: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
2: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
0: इसके मुख्य लक्षण हैं चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
2: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
0: श्रोताओं, ये सामान्य लक्षण है, लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
2: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
0: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
2: ठंडा करने के लिए उसे कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
0: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वह सांस भी ठीक से ले पाएगा।
2: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें, लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
0: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें, उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें,
2: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं।
2: जी।
0: तो भाई मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के तर्राने की आवाज़ भी तो सुनाई देगी।
2: जी
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
2: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है एनसीईआरटी की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।

0: हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
1: कमली और सोमारू चले घास लेने।
2: घास थोड़ी सी घास ले ले,
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
3: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
2: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
3: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
1: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
2: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
1: बादल बोले,
4: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।

0: और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
1: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
2: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
0: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
3: तो बच्चों, सुना आपने, बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
4: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
3: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
5: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें, तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
6: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
7: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
8: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। और ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
7: आजा खेलते हैं।
8: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
9: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
8: अच्छा वो क्या?
9: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
8: हाँ
10: दूसरा क्या?
9: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
7: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कडियाल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे। शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

0: आपके पास फौजी वर्दी है?
1: हाँ।
0: आपको अपनी वर्दी बहुत अच्छी लगती है ना?
2: बिल्कुल, मुझे अपना देश और वर्दी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। इस वर्दी को पहनकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और यही मुझे सैनिक के कर्तव्यों का एहसास कराती है।
0: मेरे को भी यह वर्दी बहुत अच्छी लगती है। एक दिन मैं भी इसे पहनूंगा और देश की रक्षा करूंगा।
2: शाबाश पुत्र, शाबाश। देश को तुम्हारे जैसे निडर और साहसी बच्चों की ही तो जरूरत है।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

0: बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि ये भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था, और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है। यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: देखो चुन्नीलाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है।
1: हाँ।
3: ये देखो, पास आ जाओ, आ गया हो, आ गया। ये देखो, ये इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते।
3: हाँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता था।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी, और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे

0: अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था, तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
1: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
2: बस थोड़ी दूर हो, वो देखो उस गड्ढे के पास।
1: जी
0: अच्छा, बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
3: उधर से दुश्मन आ रहे हैं।

0: कोई नहीं, यही रोक कर रखना। मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूँ।
1: ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैन गन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
3: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर जी, थैंक यू।
2: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM 101।
4: श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
5: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
6: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बाजा नगाड़ा। आज के कलाकार हैं पाले राम।
7: संग के

वैष्णव के बसता कौन होता बाणा फूल लड़ाइया में सचो तो उन कुटुंब कपिला जाने कौन लड़ाइया में एक गलती न सौ की गलती।

जब छुट्टी बिता कर गाड़ी में बैठ के पहुंचे अपनी यूनिट में, जाके अपने यारे प्यारे तरह मचेसनी करी और फिर विचार करया कि फौजी के साथ भाई के वाका बीतते से, और भाई फौज में तो होना इतना चाहिए, इसमें तो कोई नरा बाखड़ा रह रहा हो तो बड़ ज्ञान का ना तो ना।

तैनो बोली मैं तेरी गैली।

हरियाणवी लोकगीतों का कार्यक्रम बाजय नगाड़ा। आज के कलाकार थे पाले राम। एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार। सुबह 8:15 पर होंगे अंग्रेजी समाचार। इन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
1: बैठक के

0: दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
2: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की आबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
1: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
3: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
4: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों के उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
7: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
8: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
9: अमरीकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमरीका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
10: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, चार और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू प्याज फल सब्जियों अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. 2-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce a uniform civil code bill in state assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grains and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1-year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. And now the news in detail. A 2-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister S. Jaishankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Global leaders have arrived in the national capital ahead of the BRICS foreign ministers meeting. The leaders who arrived here yesterday include Foreign Minister of Iran, Sayed Abbas Araghchi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand, Shehrazad Puangkekyo, Foreign Minister of Cuba, Bruno Rodriguez Perella, and Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam Nguyen Minh Hang. Other leaders who arrived were Foreign Minister of Malaysia Dato' Seri Utama Mohammed bin Haji Hassan and UAE's Minister of State, Ministry of Foreign Affairs Khalifa Shaheen Al-Marar. A report.
12: During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system. The BRICS foreign ministers held their last meeting on the margins of 80th session of the United Nations General Assembly on 26 September 2025. The meeting was chaired by India in its capacity as the incoming BRICS chair for 2026. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
11: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said, a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to 26th of May, during which the newly elected MLAs will take oath. He said the proposed legislation aims to address issues including the legal age of marriage, polygamy, inheritance and live-in relationships. He clarified that religious practices would remain outside the scope of the bill.
13: Assam cabinet should pass uniform civil code. We customize that to the requirement of Assam. We have completely exempted tribal population from the purview of uniform civil code. We have also kept all rituals, traditions, customs practiced by the people of Assam outside the scope of uniform civil code. The UCC bill will be laid before the assembly on 26th of May.
11: With this move, Assam is set to become the third state after Uttarakhand and Gujarat to table a uniform civil code bill. The government has prohibited the export of sugar, including raw sugar, white sugar and refined sugar, with immediate effect till September 2026 or further orders. According to a notification, Directorate General of Foreign Trade has amended the export policy from restricted to prohibited. This prohibition shall not apply to sugar being exported to EU and US under CXL and TRQ quota, the Advance Authorization Scheme, and government-to-government shipments to meet food security needs of other countries. Consignments already in the physical export pipeline are also exempted. The West Bengal government has lifted all restrictions on the interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, oil seeds, food grains and other essential products. The restrictions had been imposed by the erstwhile TMC government. On the other hand, in a significant development, the government of West Bengal decided to hand over the cases related to teachers' recruitment, municipal recruitment and cooperative services recruitment scams to the CBI. The West Bengal government has also terminated the services of all persons who were re-employed by the TMC government after their superannuation. More in this report.
14: In a major relief for farmers and traders, the government of West Bengal has lifted restrictions on the export of agricultural goods to other states. According to a notification issued by the Department of Agricultural Marketing, items such as potatoes, onions, vegetables, fruits, food grains and oil seeds can now move freely across state borders without any barriers. District administrations, police and transport authorities have been directed to ensure smooth implementation of this order. Chief Minister Shubhendu Odhikari, speaking at Nabanno yesterday, said the decision will benefit small and marginal farmers as well as traders. He emphasized that farmers will now receive fair prices for their produce. The Chief Minister also warned that strict action will be taken against officials if goods-laden vehicles are unnecessarily stopped or harassed at interstate borders. This move is expected to ease the way for agricultural exports and reduce the difficulties faced by farmers and traders in West Bengal. Shundipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
11: The government has given 1 year extension to Director of Central Bureau of Investigation, Praveen Sood. According to an official order issued by the Department of Personnel and Training, the Appointments Committee of the Cabinet gave its nod for the extension to Mr. Sood as Director of the Investigation Agency beyond the 24th of this month. Prime Minister Narendra Modi will visit Abu Dhabi tomorrow as the first stop of a five-nation tour that will take him through the UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy between Friday and 20th of this month. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, informed that on the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will meet UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. He said the two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest.
15: Prime Minister will begin his visit from the UAE on 15 May, where he will meet the President of the UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and exchange views on bilateral relations, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. During the visit, both the leaders will discuss avenues to further deepen our bilateral ties in areas including trade, investment, energy, technology, culture, and people-to-people connect.
11: More from our correspondent.
16: India and the UAE share one of the most significant energy partnerships in the region. The UAE is currently the fourth largest source of crude oil for India, meeting nearly 11% of country's total requirement. On liquefied natural gas, Indian companies have locked in long-term supply deals with Abu Dhabi's ATNO gas for a cumulative 4.5 million tons per year. Now let's hear from Asim Mahajan, Additional Secretary, Gulf.
17: We share a very vibrant partnership in the area of energy. The UAE is an important partner in our energy security. Last year, the UAE was the fourth largest source of crude oil, meeting nearly 11% of our requirement. In the area of LNG, Indian companies and the UAE Abu Dhabi National Oil Company ADNOC Gas have entered into long-term supply contracts for cumulative of 4.5 MMTPA LNG to India.
16: The linking of India's UPI payments platform with UAE's ERNI system has already transformed cross-border transactions for businesses and Indian diaspora. The UAE remains India's third largest trading partner and the seventh largest cumulative source of foreign investment over the past 25 years. As West Asia navigates one of its most turbulent periods in recent memory, Friday's meeting in Abu Dhabi is being seen as an important anchor of stability and long-term strategic intent for both nations. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
11: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.

सुबह सवेरे सुनने वाले सभी श्रोताओं को गेशना का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज का दिन एक खाली कैनवस है। आपके विचार उसकी रंगत हैं और आपके कर्म उसकी खूबसूरती। तो आज कुछ ऐसा रचिए जिसे देखकर आपका दिल भी मुस्कुरा उठे।

श्रोताओं, वक्त है आज के प्रश्न का। आपको बताना है, मई 2026 में भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा बना है। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, आपको बताना है मई 2026 में भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा बना है। जवाब देने के लिए टेक्स्ट मैसेज करें 9466021336 पर, समय रहेगा 8:45 तक। साथियों, मैसेज जब आप भेजेंगे तो सबसे पहले उसमें आप उत्तर भेजिएगा, फिर अपना नाम, और नामों में आप तीन से ज़्यादा नाम शामिल ना करें, और उसके बाद अपनी जगह स्थान का नाम लिखिएगा। तीनों में गैप देना मत भूलिएगा।

श्रोताओं, मानव जीवन में ज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और पुस्तकों को ज्ञान का सबसे विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। पुस्तकें न केवल हमें जानकारी देती हैं बल्कि हमारे विचारों, संस्कारों और व्यक्तित्व को भी आकार देती हैं। वे हमारी सच्ची मित्र होती हैं जो हर परिस्थिति में हमारा साथ निभाती हैं। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। ये हमें नई नई जानकारी और दृष्टिकोण प्रदान करती हैं, हमारे सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाती हैं, ये हमारी कल्पना शक्ति को विकसित करती हैं। पुस्तकें अच्छे और बुरे का अंतर समझने में भी मदद करती हैं, ये हमारे व्यक्तित्व का समग्र विकास करती हैं, हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन देती हैं, ये तनाव और चिंता को कम करने में सहायक होती हैं, समय का सदुपयोग करना सिखाती हैं, ये हमारी भाषा और शब्दावली को समृद्ध बनाती हैं। पुस्तकें हमें इतिहास, संस्कृति और परंपराओं से जोड़ती हैं। ये आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती हैं। अकेलेपन में एक सच्चे मित्र का काम करती हैं पुस्तकें। ये हमें अनुशासन और एकाग्रता सिखाती हैं। पुस्तकें जीवन के कठिन समय में सही मार्ग दिखाती हैं। ये हमारे नैतिक मूल्यों को मजबूत करती हैं, रचनात्मकता को भी बढ़ावा देती हैं। ये हमें विभिन्न विषयों में निपुण बनाती हैं। पुस्तकें मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं। ये हमें अच्छे निर्णय लेने की क्षमता देती हैं, जीवन में सकारात्मक सोच विकसित करती हैं। ये हमें महान व्यक्तियों के जीवन से सीखने का अवसर भी देती हैं। पुस्तकें हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती हैं। ये हमें समाज और दुनिया को बेहतर समझने में भी मदद करती हैं। पुस्तकें जीवन को सफल और सार्थक बनाने में सहायक होती हैं। अतः यह स्पष्ट है कि पुस्तकें हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। हमें नियमित रूप से पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए ताकि हम ज्ञानवान, समझदार और एक अच्छे इंसान बन सकें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाए

0: का सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: साथियों, आज का युग तकनीक और इंटरनेट का युग है, जहां हर काम तेजी और सरलता से डिजिटल माध्यमों द्वारा किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया एक ऐसी महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है और हर नागरिक तक तकनीक की पहुंच सुनिश्चित करना है। डिजिटल इंडिया की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई। इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है। इस योजना के तहत इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया से सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। इससे लोगों का समय और धन दोनों की बचत होती है। डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा मिला है, जैसे UPI। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट और डिजिटल सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। इससे शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा मिला है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ा है। ई गवर्नेंस के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ी है, भ्रष्टाचार में कमी लाने में मदद मिली है। डिजिटल इंडिया से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। छोटे व्यवसायों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लाभ मिला है। यह पहल स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहित करती है। डिजिटल इंडिया से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। साइबर सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे लोगों में डिजिटल साक्षरता बढ़ रही है। सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से मिलती है। डिजिटल इंडिया ने देश को कैशलेस और लेस कैश अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाया है। इससे गांव और शहर के बीच की दूरी कम हो रही है। नागरिकों की भागीदारी और जागरूकता बढ़ी है। ऑनलाइन सेवाओं से कार्यों में पारदर्शिता और गति आई है। डिजिटल इंडिया से भारत वैश्विक स्तर पर मजबूत बन रहा है। यह पहल भविष्य के स्मार्ट इंडिया की नींव रखती है। डिजिटल इंडिया एक परिवर्तनकारी पहल है जो देश को आधुनिक और विकसित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हमें डिजिटल तकनीकों का सही और सुरक्षित उपयोग करना चाहिए ताकि हम इस पहल का पूरा लाभ उठा सकें और देश के विकास में अपना योगदान दे सकें।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस समझ गया।
2: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे प्रश्न किया था कि मई 2026 में भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा बना है। इसका सही उत्तर है दक्षिण तटीय रेलवे यानी साउथ कोस्ट रेलवेज। इसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होगा। जिन श्रोताओं ने आज के प्रश्न का सही उत्तर दिया है उनके नाम हम आपको बताएंगे इस विज्ञापन के बाद।
1: एक आवाज जो बचपन में सुनी थी,
2: एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी,
1: एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है।
2: हम सबकी अपनी आकाशवाणी 90 साल की हो रही है।
1: 90 साल की सेवा, संवाद और संस्कार की यात्रा।
2: आइए इस गौरवमय अवसर पर हम सब मिलकर कहें
1: आकाशवाणी
2: विश्वास की आवाज।
0: जिन श्रोताओं ने आज के प्रश्न का सही उत्तर दिया है उनके नाम हैं नाहन हिमाचल प्रदेश से योगी ठाकुर और रीमा ठाकुर। टिया कृष्णा सोलन हिमाचल से। सरोज सैनी, राकेश सैनी और यादवेंद्र सैनी सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से। मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा। ग्राम नागर कोहरा से बबलू साहू, जामुन देवी साहू और आराध्या साहू। हमारे साथी हैं गौतम, जिन्होंने सही उत्तर दिया है पर उन्होंने अपने जगह का नाम नहीं लिखा। योगी मोहल्ला बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर और गुरशब्द सिंह राहुल। सुंदरनगर हिसार से मोनिका गुर्जर, पंकज गुर्जर और कीरत। सेक्टर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौड़, सुयश गौड़ और आशीष गौड़। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। रामगंज खड़वा मध्य प्रदेश से पेंटर विजय सिंह महोबिया, कविता महोबिया और कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती और दिलीप परदेसी। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया और सोनू भाटिया। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा और इंदु। सुधा नारायण के हाली बेंगलोर से। गांव चौहलदा बागपत से संजय ढींगिया और नमन ढींगिया। बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून और निशा। रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी और योगेश कुमार साहू, सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, गंज टंडवाड़ा से मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज और फातिमा गाजी, सौराष्ट्र राजकोट से प्रवीण भाई गुजराती, जगदीश भाई गुजराती और हिरेन भाई, धुलिया महाराष्ट्र से अशोक कवाड़े, आदित्य कवाड़े और दीप माला कवाड़े, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, ध्वनि और सानवी।

उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी और गीतिका भानु। हनुमंत शिंदे, ऋषिका शिंदे सांगली से। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय और अमित कुमार राय। रादौर से राजू बत्रा, पप्पी खुराना और एसके पप्पी। डिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। गांव डेर पाटन गुजरात से धीरज वी रबारी और संजय सचिन। साथियों, नामों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन इस गीत के बाद।

साथियों, हम आपको बता रहे हैं उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने आज के प्रश्न का सही उत्तर दिया है। बनबघेरा जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा, माघेराम सैनी और पूरम सैनी कुरुक्षेत्र से, गांव उगाला अंबाला हरियाणा से।

राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर और आरती रानी। ललिता सिंह और भगवान सिंह। हिमाचल प्रदेश, शिलाई सिरमौर से। वीरमगाम गुजरात से अजीत भावसार और प्रमिला भावसार। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता और नीलम बत्ता। बिहार डुमराव से वली उल्लाह अंसारी और छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया। गौरैया जालंधर से अशोक जाटव। कुड़ी सेक्टर 5 जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और कल्पित चौहान। गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र भ्याण और शमशेर भ्याण। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव। आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ मदनपुर से, छत्तीसगढ़ मदनपुर से हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू। एस एम जावेद गुमला झारखंड से। दिल्ली बिहारी कॉलोनी शहादरा से तुलसी मस्कीन। जलंधर से रोशन जहां, सोनम जहां और आदिबा जहां। जहानगर दुर्ग से आरसी कामड़े और करुणा कामड़े। रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। आकली दीवान मध्य प्रदेश से रामलाल चंद्रवंशी और कृष्णा चंद्रवंशी। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा और पूनम वर्मा। सांगली जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला हुजरे और सबाहत हुजरे। और अंत में सही जवाब देने वाले हैं बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद साहू और बीमा साहू। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

साथियों, एक छोटे से गांव में विवान नाम का एक लड़का रहता था। उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। स्कूल जाना उसे बोझ लगता और किताबें तो जैसे उसकी दुश्मन ही थी। जैसे ही उसे खाली समय मिलता, वह मोबाइल पर गेम खेलता या बेवजह इंटरनेट पर समय बिताता। विवान के माता पिता अक्सर उसे समझाते, बेटा पढ़ाई बहुत जरूरी है, यही तुम्हारा भविष्य बनाएगी। लेकिन विवान हर बार हंसकर टाल देता। एक दिन गांव के स्कूल में एक नए शिक्षक आए, शेखर सर। उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग था। वे केवल किताबों से नहीं बल्कि कहानियों और उदाहरणों से बच्चों को समझाते थे। एक दिन उन्होंने कक्षा में पूछा, तुम सबके सबसे अच्छे दोस्त कौन है? किसी ने कहा, मेरा दोस्त सबसे अच्छा मित्र है। किसी ने कहा, मेरा भाई। किसी ने कहा, माता पिता। किसी ने कहा, पड़ोसी। तो तब शेखर सर मुस्कुराए और बोले, तुम्हें पता है कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? विद्यार्थियों ने उत्सुकता से पूछा, बताइए सर, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? शेखर सर ने कहा, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है किताबें। बच्चे यह सुनकर हैरान थे और विवान तो शेखर सर को देखता ही रह गया। भला किताबें भी किसी का दोस्त हो सकती हैं? बच्चों की हैरानी देखकर शेखर सर ने कहा, किताबें हमें वो सिखाती हैं जो कोई इंसान हमेशा साथ रहकर भी नहीं सिखा सकता। ये हमें गलत रास्तों से बचाती हैं और सही दिशा दिखाती हैं। उस दिन के बाद विवान के मन में थोड़ा बदलाव आया। उसने पहली बार अपनी किताबों को ध्यान से देखा। कुछ दिनों बाद स्कूल में डिजिटल इंडिया के बारे में एक विशेष कक्षा हुई। शेखर सर ने बच्चों को समझाया कि इंटरनेट और मोबाइल सिर्फ गेम खेलने के लिए नहीं बल्कि सीखने का सबसे बड़ा साधन भी है। उन्होंने बच्चों को यूट्यूब पर पढ़ाई से जुड़ी वीडियो दिखाए, ऑनलाइन क्विज करवाई और बताया कि कैसे इंटरनेट से नई नई चीज़ें सीखी जा सकती हैं। विवान को पहली बार महसूस हुआ कि वही मोबाइल जो उसका समय खराब करता था, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसका भविष्य भी बदल सकता है। धीरे धीरे विवान ने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। अब वह रोज थोड़ा समय किताबें पढ़ने में लगाता और इंटरनेट का उपयोग केवल पढ़ाई और नई चीज़ें सीखने के लिए करता। कुछ महीनों में ही उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। वह कक्षा में सवालों के जवाब देने लगा और उसके अंक भी बेहतर होने लगे। एक दिन परिणाम आया और विवान ने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। शेखर सर ने मुस्कुराकर कहा, देखा, किताबों और सही दिशा में की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। विवान ने धीरे से अपनी किताब को छुआ और कहा, अब समझ आया, असली दोस्त तो यही हैं जो हमें हमारी सही पहचान दिलाती हैं। साथियों, किताबें हमारे जीवन की सच्ची मार्गदर्शक होती हैं और पढ़ाई हमारे भविष्य की नींव। साथ ही आज के डिजिटल युग में इंटरनेट का सही उपयोग हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। अगर हम मेहनत और सही दिशा चुन लें तो सफलता हमारे कदम जरूर चूमती है। खैर, ये तो रही किताबों की बात। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत।

साथियों, सपनों की ऊंचाई भाग्य से नहीं, हमारी मेहनत और सीखने की भूख से तय होती है। सही ज्ञान हमें वहां तक पहुंचा देता है जहां कभी हमने सिर्फ कल्पना की थी। ये था आज का विचार। और साथियों, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं aapkibaatakashvani@gmail.com पर। और चलते चलते आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब प्रस्तुत है नॉन फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम स्वरांजलि। गीत से पहले सुनिए ये संदेश।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: ये आकाशवाणी है,
4: हर पल आपके साथ।
3: समाचार हो या सदाबहार गीत,
4: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
3: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
4: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
3: आकाशवाणी।
0: कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं मिलिंद इंगल की आवाज में।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अगली पेशकश अरमान मलिक की आवाज में।

साथियों, कार्यक्रम का अंतिम गीत आपने सुना अदनान सामी और आशा भोंसले की आवाज़ में। इसी के साथ ही कार्यक्रम सुलांजलि संपन्न होता है। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर या

0: आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब आप सुनेंगे विविध भारती से कार्यक्रम आज के फनकार।
1: अपने परिवार के सदस्यों के साथ राजकुमार बड़जात्या ने इस फिल्म का निर्माण किया। कहानी और निर्देशन सूरज बड़जात्या का था। ये फिल्म भी उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली और दशक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। समीक्षकों ने भी इसे खूब सराहा। ये फिल्म टोरंटो में 6 स्क्रीन्स पर कनाडा के सिनेमा घरों में प्रदर्शित होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी। वैसे ये फिल्म अपनी निर्धारित प्रदर्शित तिथि से पहले ही रिलीज हो जाती, पर संगीतकार राम लक्ष्मण ने साउंड ट्रैक एल्बम की जांच के लिए समय लिया। पोस्ट प्रोडक्शंस, सिनेमेटोग्राफी, कोरियोग्राफी के साथ साथ अन्य सभी काम पूरे होने के बाद आखिरकार 5 नवंबर 1999 को स्क्रीन्स पर यह फिल्म आई।

2002 में फिल्म आई हम प्यार तुमसे कर बैठे। जुगल हंसराज और टीना राणा इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे। 2003 की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं, जो चितचोर पर आधारित फिल्म थी और इस फिल्म के कलाकार थे ऋतिक रोशन, करीना कपूर और अभिषेक बच्चन। राशि प्रोडक्शंस की इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था यशराज फिल्म्स ने।

एक विवाह ऐसा भी, इस नाम की फिल्म लेकर आए राजकुमार बड़जात्या साल 2008 में। मुख्य भूमिकाएं निभाई थी ईशा कोप्पिकर, सोनू सूद और आलोक नाथ ने। ये फिल्म आशापूर्णा देवी की कहानी पर

राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं। 2010 में इन्होंने फिल्म बनाई इस लाइफ में, 2011 में लव यू मिस्टर कलाकार। ये फिल्में राजकुमार बड़जात्या की अन्य फिल्मों की तरह लोकप्रिय नहीं हुई।

इसी क्रम में 2011 में सचिन पिलगांवकर के निर्देशन में राष्ट्रीय फिल्म्स की प्रसिद्ध फिल्म अखियों के झरोखों से की सीक्वल आई जाना पहचाना, जिसमें सचिन और रंजीता ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। ये फिल्म भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिर 2015 में आई राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म। ये फिल्म उस वर्ष की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म थी प्रेम रत्न।

खान, सोनम कपूर, नील नितिन मुकेश अभिनीत ये फिल्म दर्शकों के मापदंड पर खरी उतरी। 2019 में एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या अपनी आखिरी फिल्म लेकर आए हम चार। अभिषेक दीक्षित लिखित और निर्देशित इस फिल्म में चार नए चेहरों को पेश किया गया था। ये राजश्री प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की 58वीं

0: राजकुमार बरजात्या का 21 फरवरी 2019 को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। एक निर्माता के रूप में राजकुमार बरजात्या ने पारिवारिक फिल्मों की अपने परिवार की परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतीय दर्शकों के लिए अपनी जमीन से जुड़ी हुई कहानियों को, भावनाओं को, रिश्तों को बड़े ही जतन और प्यार से सिनेमा के पर्दे पर प्रदर्शित किया। इनकी फिल्में भारतीय सिनेमा इतिहास में बेहतरीन कथानकों और प्रस्तुतिकरण के लिए हमेशा ही चिन्ही जाएंगी। और जब भी दर्शक इन फिल्मों को देखेंगे, राजकुमार जी की कथा शैली और निर्माण कला के मुरीद हुए बिना नहीं रह सकेंगे। आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म निर्माता राजकुमार बरजात्या पर। आलेख और स्वर जी श्याम का, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी तेजश्री कांबळे।
1: आज के फनकार।

भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला।

FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र।

नमस्ते कुरुक्षेत्र सुनने वाले सभी श्रोताओं को गेशना का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हमसे बात करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 221-322 पर, और कुरुक्षेत्र का एसटीडी कोड रहेगा 01744। आज हम आपसे जानेंगे कि आप अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखते हैं और क्या आप सैर करते हैं, चलना फिरना आपके दिनचर्या का हिस्सा है या नहीं। तो जब तक आप हमें कॉल मिलाते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, नमस्ते। कौन बात कर रहे हैं?
1: बुलंद शहर की बुलंद आवाज में मोहम्मद सईद अब्बासी का आपको और आपके तमाम चाहने वालों को पुरखलुस आदाब।
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपके यहाँ से प्रसारित जितने भी प्रोग्राम आते हैं मैं रेगुलर सुनता हूँ। खास तौर से सुबह सवेरे जो आता है ना
0: जी,
1: उसको सुनने का तो मजा ही अलग है, क्योंकि
0: बहुत बहुत
1: बहुत माथा
0: धन्यवाद।
1: पच्ची करनी पड़ती है आप जो सवाल पूछते हो उसे ढूंढने के लिए। तो
0: जी
1: इसलिए और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सभी आरजेज का, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके प्रोग्राम करते हो और श्रोताओं का मतलब ख्याल रखते हो और अच्छे अच्छे सॉन्ग प्ले करते हो, बहुत मेहनत से प्रोग्राम करते हो।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छे श्रोता ना हो तो फिर कार्यक्रम भी अधूरा सा लगता है, क्योंकि हमारे श्रोता भी अच्छे हैं जिसके कारण हम कार्यक्रम को पेश करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है और हमें फीडबैक भी देते हैं वो।
1: जी, ये तो एक श्रोता और लिसनर्स का मतलब आरजेस का एक अटूट रिश्ता है कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।
0: जी
1: अगर
0: बिल्कुल
1: लिसनर आरजेस को नहीं सुनेंगे तो आरजेस भी अधूरे हैं,
0: जी
1: और आरजेस अगर मेहनत से श्रोताओं का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो भी अधूरे हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल। अच्छा, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सैर का आपके जीवन में कितना योगदान है, आप सैर करते हैं कि नहीं? क्योंकि आजकल जो है सब कुछ जल्दी जल्दी में, सब बस व्हीकल पे अपने बैठते हैं, स्कूटी बाइक या कार पे, और चल निकल पड़ते हैं। तो ऐसे में क्या आप सैर के लिए समय निकालते हैं, या जो आसपास के काम होते हैं, या वो आप उनको खुद पैदल चलकर जाकर करना पसंद करते हैं, या व्हीकल का इस्तेमाल ज्यादा रहता है?
1: आजकल की मसरूफियत भरी जिंदगी में वाहन तो एक मजबूरी हो गया है, क्योंकि
0: जी
1: तो टाइम की प्रॉब्लम हर इंसान को रहती है,
0: जी
1: सारे
0: जी
1: काम निपटाने होते हैं टाइमली, क्योंकि
0: जी जी
1: तो अगर वाहन का प्रयोग नहीं करेगा तो आदमी लेट हो जाएगा।
0: वो तो है। देखिए,
1: जितना भी
0: ज्यादा
1: जल्दी उठे इंसान
0: जी,
1: और भागम भाग में ऑफिस के लिए तैयारी करने में
0: जी,
1: और घर के थोड़े से काम निपटाने होते हैं, खासतौर से महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा टफ होता है, क्योंकि उनको सभी का ख्याल रखना होता है,
0: जी
1: घर के भी काम निपटाने होते हैं, फिर अपने जहाँ वो जॉब करते हैं जाते हैं वहां की भी तैयारी करनी होती है, बच्चों को भी तैयार करना होता है।
0: जी
1: तो
0: जी
1: उसमें मतलब अपने लिए टाइम निकालना, जो सुबह वॉक होता है मतलब अपने लिए भी टाइम जरूरी है निकालना, क्योंकि
0: जी
1: तो अगर आदमी अपने लिए टाइम नहीं निकालेगा तो फिर इन सब कामों को कैसे निपटा पाएगा।
0: जी बिल्कुल सही कहने। देखिए, जो बहुत दूर का काम है, या आप ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो तो
1: जी
0: खैर व्हीकल उसमें या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या स्कूल की स्कूल बस होती है बच्चों की तो।
1: जी जी जी
0: पर जो आसपास, जैसे कुछ आसपास, जैसे पास में मंदिर है वहां जाना है, या थोड़ा बाजार पास है, तो लोग उसमें भी चलना पसंद नहीं करते। तो वो तो
1: नहीं,
0: एक चलिए अलग बात है, पर क्या सैर आपकी जीवन का हिस्सा है या नहीं?
1: नहीं वो तो खैर सही है, मगर उस चीज को भी थोड़ा जितना हो सके थोड़ा टाइमली, अगर आदमी 10 मिनट या आधा घंटे पहले इन चीजों का ख्याल रख के अगर उठेगा और सारे काम कर लेगा तो अपने लिए भी समय निकाल लेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: क्योंकि
0: जी
1: मान लीजिए हमें अगर 7 बजे निकलना है तो उसके लिए हमें 4 बजे उठना होगा, अगर 4 बजे हम उठेंगे तो अपना जल्दी से मतलब वॉक भी थोड़ा बहुत अपने व्यायाम कर लेंगे
0: जी जी
1: और उसके बाद में फिर अपनी तैयारी भी शुरू कर लेंगे तो टाइम से हो जाएगा,
0: जी
1: उसमें बचत टाइम की भी हो जाएगी और अपने टाइम से अपने ऑफिस भी पहुंच जाएंगे।
0: जी
1: तो जब आदमी खुद ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो सारे काम हो कैसे निपटाएगा।
0: बिल्कुल सही बात है कि अगर स्वास्थ्य खराब हो जाए तो सारे काम ठप।
1: बिल्कुल सारे काम बिल्कुल पेंडिंग में पड़ जाते हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: स्वास्थ्य को रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल खासतौर से जिंदगी मानता हूँ टाइम कम है, मगर फिर भी अगर हो सके कैसे भी करके अपने लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए।
0: कि अगर स्वास्थ्य ठीक है तब तो सारी चिंताएं होती हैं कि ये रह गया वो रह गया,
1: बिल्कुल
0: पर अगर स्वास्थ्य खराब हो जाए तो सिर्फ यही चिंता है कि स्वास्थ्य खराब है, इसको ठीक करना
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल सारी चीजें एकदम से ब्रेक लग जाता है सारी चीजों पे अगर
0: जी
1: स्वास्थ्य
0: जी
1: बिगड़ जाता है, तो अगर स्वास्थ्य सही रहता है तो आदमी टाइमली सारे काम निपटा लेता है।
0: जी चलिए, आज गीत कौन सा सुनेंगे आप?
1: वैसे ज्यादातर तो मैं अपने बारे में बताऊं आपको तो सुबह उठ के मेरा वॉक पे कम से कम 1-2 किलोमीटर चलना जरूर होता है, रेगुलर जाता हूं मैं।
0: बहुत बढ़िया।
1: हाँ, उसके बाद में फिर अपने सारे काम निपटा के अपने ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। और मैं सभी को ये कहना चाहूंगा कि अपने लिए टाइम जरूर निकालें, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का या तो अपने छत पे घूमें या फिर थोड़ा सा अपना पार्क वगैरह में जाएं, उसके बाद में फिर अपना मतलब हल्का फुल्का जैसे आप व्यायाम कर सकते हैं वो करके और फिर अपना तैयारी कर लें ऑफिस की
0: जी,
1: क्योंकि आपको अपने आप को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा
0: जी जी जी।
1: खासतौर से महिलाओं से निवेदन करूंगा क्योंकि उनका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उनके ऊपर बहुत बर्डन होता है
0: जी, घर की तो सारी बागडोर उन्हीं के हाथ में होती है
1: जी जी जी बिल्कुल। सबका ख्याल रखती है, बच्चों का, अपने घर वाले मतलब हस्बैंड का और अपने जितने परिवार के मेंबर होते हैं सभी की बागडोर उन्हीं के ऊपर होती है
0: जी।
1: और फिर उनको अपना ऑफिस भी देखना होता है
0: जी,
1: तो उनके लिए बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए अपने लिए समय जरूर निकालें
0: जी। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपसे जानते हैं कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
1: गाना एक बर्फ फिल्म का है, मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे प्यार करूं
0: जी,
1: चाहे कली से फूलों से खेलूं, चाहे खुशी से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए।
0: चलिए आपकी पसंद का ये गीत आपको सुनवाते हैं साथ जुड़ने के
1: लिए। ये और बात है कि तुम नजरों से दूर रहते हो, तुम्हारे वजूद की खुशबू बसी है सांसों में
0: जी। चलिए आपकी पसंद का गीत सुनवा रहे हैं, साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: हेलो नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं बंसी।
0: बंसी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते, आवाज आ रही है आपको?
1: आपकी आवाज आ रही है जी।
0: आ रही है आपको आवाज के नहीं आ रही?
1: आज ये है तो एक डबल आ रही है जी।
0: अच्छा, अपना गीत बता दीजिए, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: शोले फिल्म का
0: जी।
1: ये दोस्ती हम जोड़ेंगे।
0: ठीक है। अच्छा, आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं कि आप सैर करते हैं कि नहीं?
1: हाँ जी, सैर करने के।
0: चलिए,
1: सैर करना बहुत जरूरी है
0: जी, सेहत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं
1: आप।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम हर काम कर सकते हैं, और यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो फिर बस उसको ठीक करने में सारा समय लग जाता है।
1: डॉक्टरों से बचे।
0: हाँ, डॉक्टर, दवाई और खाना। जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: किसान है, खेती बाड़ी करते हैं
0: जी जी जी,
1: तो मेरी घात जाते हैं
0: जी, क्योंकि अब जो है बैठने का काम ज्यादा हो गया है,
1: तो अब इसकी दुकानदारी का दफ्तर का काम है जी
0: जी जी जी,
1: उनको सैर नहीं हुई।
0: हाँ, इसलिए चलना तो बेहद जरूरी है।
1: कम से कम
0: जी,
1: पहले चलो हम देखो जी, वहाँ बस स्टैंड है
0: जी,
1: बस स्टैंड
0: जी जी,
1: वहाँ से गुरुकुल से पैदल गए थे गुरुदेव जी।
0: अरे वाह,
1: बहुत लोग रिक्शा कर लेते हम तो पैदल चले।
0: चलिए, बहुत बढ़िया है कि ऐसी स्फूर्ति और तंदुरुस्ती बनी रहे आपकी।
1: अब उम्र भी कितनी बढ़वा रही जी।
0: चलिए, बहुत बढ़िया है,
1: अब भी पैदल चलते हैं,
0: बहुत अच्छी बात है,
1: साइकिल भी चलाते,
0: बहुत बहुत बढ़िया। जी, सहर सैर व्यायाम जो कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते चल तो सकते ही है
1: जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कार्यक्रम में आपका गीत शामिल करते हैं और सुनाते हैं जी। बहुत बिल्कुल बिल्कुल लीजिए जी जी
1: जी कुमार
0: जी,
1: एक टेलर मार्केट आई हमारी मनोज।
0: अच्छा जी,
1: धन्यवाद।

0: हेलो हेलो हेलो हेलो,
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी। कौन बात कर रही हैं
1: काम थोड़ा जिला की चौथी में सुमन बात कर रही है। धन्यवाद
0: जी? सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में
1: जी। ठीक
0: जी। और कैसी हैं आप?
1: है जी।
0: और पहली बार आपने कॉल मिलाया? पहले भी करती रहती हैं?
1: ना जी आज भी मिला करा तो आज भी मिला नहीं था।
0: अच्छा, तो आज पहली बार मिला है।
1: हाँ जी
0: चलिए, बहुत बढ़िया हो गया है। तो हमारे साथ नए श्रोता जुड़ते हैं, हर दिन तो अच्छा लगता है
1: हाँ जी मम्मी भी अच्छा लग रहा है जी।
0: जी। और क्या करती हैं आप?
1: हाँ सुहाई हाँ जी हाँ
0: अच्छा, हाउसवाइफ है, तो सबसे ज्यादा काम तो आप ही के पास है फिर
1: जी
0: है ना? खाना, कपड़े, साफ सफाई, बच्चे, बड़े, बूढ़े, सबका ध्यान आपने ही रखना है
1: हाँ जी
0: जी। तो इस ऐस इतने बिजी रहने में, क्योंकि आप सब सारे दिन तो काम में लगी रहती होंगी, तो फिर ऐसे में आप अपने लिए समय निकाल पाती हैं या नहीं?
1: बस जी टाइम लग जाए काट
0: अच्छा, तो
1: लें
0: सैर व्यायाम कुछ करती हैं आप, या काम से ही सारी कसरत हो जाती है आपकी
1: जी कभी कर लें जी
0: है
1: कभी
0: ना? पर मुझे लगता है 5-10 मिनट तो सभी को अपने लिए निकालने चाहिए, खुली हवा में, है ना? सैर करना
1: नहीं
0: अच्छा रहता है, ऐसे पेड़ पौधों के बीच में, जो गांव वाले गांव में रहते हैं उनके आसपास तो खूब पेड़ पौधे वैसे ही बहुत रहते हैं,
1: हाँ
0: तो
1: जी हाँ जी
0: प्रकृति में निकलना अच्छा रहता है हमारी
1: बस भी टाइम नहीं लगता
0: चलिए
1: घर के काम
0: 5 मिनट आज निकाल के देखिएगा, सिर्फ 5 मिनट, है ना? पूरे
1: हाँ जी
0: 24 घंटे में से पांच
1: टाइम
0: मिनट तो अपने लिए निकालने ही चाहिए चलिए, आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
1: हेलो माता
0: हेलो जी,
1: की वेट में दीदी
0: ठीक है, आपकी फरमाइश पर सुनवा देते हैं आपको माता की भेंट, और साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, नमस्ते
1: नमस्कार जी।
0: जी। कौन बात कर रहे हैं
1: रंजना
0: जी?
1: ढूंढा
0: रंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में
1: बोल रही हूँ
0: जी। और कितने समय से आप जुड़ी हुई हैं आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से?
1: आपसे।
0: हाँ जी,
1: जिंदगी के पहले दिन से शायद।
0: अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। और आज हम बात कर रहे हैं कि इतने बिजी शेड्यूल में जो हम दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और उसमें हम कहीं ना कहीं अपनी सेहत से ध्यान हटा देते हैं, तो
1: हाँ
0: सबसे आसान जो चीज़ है वो है सैर। तो क्या आप सैर अपने जीवन में हर दिन शामिल रखती हैं या नहीं?
1: जी बिल्कुल, मेरा टारगेट है मिनिमम 5,000 steps एवरी
0: चलिए बहुत बढ़िया,
1: डे का। कोशिश करती हूँ फिर पूरी कर।
0: चलिए अच्छी बात है, क्योंकि सेहत को सही रखना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। जैसा सब कुछ चल रहा है ना,
1: हाँ
0: खान पान के साथ सेहत,
1: वॉकिंग इज
0: ये बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप, क्योंकि इसे हर कोई कर सकता है।
1: हाँ
0: चाहे आप योगा के आसन कहीं को डिफिकल्ट लगते हैं या हेल्थ इश्यू है कि वो नहीं कर सकते,
1: जी
0: तो सैर तो अब चाहे आप धीरे चलें चाहे तेज चलें पर चलें जरूर, है ना? क्योंकि पहले जब व्हीकल्स नहीं थे, अब तो इतने ज्यादा कार हर एक के पास, जितने लोग हैं उतनी व्हीकल हो गई है घर में, तो चलना लोगों ने कम कर दिया है। तो जहां जहां चल के जाया जा सकता है वहां पर चल के जाना जरूरी है, और कम से कम अब सैर के लिए समय जरूर निकाले, है ना? और कुछ नहीं तो चलिए, और गीत कौन सा सुनेंगे आज आप?
1: हमने देखी है इमरान
0: चलिए आपको सुनवाते हैं खामोशी फिल्म से ये गीत, और साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: खान की। थैंक यू।

0: का टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: मंगल भवन मंगलहारी
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: दादी की कहानियां, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
4: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: हेलो हेलो जी, नमस्ते। कौन बात कर रहे हैं?
1: अपरा मालिनी दीदी, सादर सप्रेम, प्यार है, नमस्कार
0: जी नमस्कार। अपना नाम बताएं।
1: दीदी। मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, इसलिए आधा सिटी मध्य उत्तर प्रदेश वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी, आप कैसी हैं?
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताएं, आप कैसे हैं?
1: मैं भी बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। आपका आशीर्वाद, बांके बिहारी कृपा से घर परिवार में सब लोग आनंद पूर्वक रहते हुए आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनना मेरा शौक है, दीवानगी है, जुनून है। मौसम
0: चलिए, बहुत बढ़िया। और मौसम कैसा है वहां का?
1: मथुरा में इस वक्त चिलचिलाती हुई धूप है, गर्म गर्म हवाएं चल रही हैं और ग्रीष्म ऋतु है तो गर्मी पड़ रही है और तापमान लगभग 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त है।
0: अच्छा, तो बारिश वारिश वहां नहीं हुई बिल्कुल भी?
1: नहीं दीदी, काफी दिनों से बारिश नहीं हुई है, लगभग 2 सप्ताह हो चुके हैं।
0: चलिए, गर्मी में अपना जो है ध्यान रखें, पानी का सेवन जरूर करें, है ना?
1: जी,
0: और आज हम बात कर रहे हैं कि सैर वगैरह आपके जीवन का हिस्सा है या नहीं?
1: हमारा स्टॉक है कि हम साल में या 6 महीने में एक बार जरूर सैर सपाटा के लिए जाते हैं। अभी पिछले दिनों मतलब मार्च महीने में हम लोग पटना, बिहार, झारखंड का दौरा करके आए थे, वहां भ्रमण किए, कई जगह दर्शनीय स्थल को देखे हैं और वापस आए प्रयागराज होते हुए बनारस।
0: चलिए, आज गीत कौन सा सुनेंगे आप कार्यक्रम में?
1: दीदी, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है बहार आने तक
0: जी।
1: और गीत के बोल हैं, चोटी है परांदा तेरा लालनी, रूप की ओरानी तू परांदे को संभालनी। ये प्यारा सा मस्ती भरा झूमता हुआ गीत आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ।
0: जी, आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।

साथियों, बात करते हैं तनाव कम करने के तरीकों के बारे में। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव एक आम समस्या बन चुकी है। इन सबके बीच मन और शरीर पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन अगर समय रहते तनाव को समझकर उसे नियंत्रित किया जाए तो जीवन अधिक संतुलित और खुशहाल बनाया जा सकता है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? रोजाना नियमित दिनचर्या अपनाएं, सुबह जल्दी उठकर ताजी हवा में समय बिताएं, ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने का अभ्यास करें, योग और हल्का व्यायाम करें, और जैसे कि हम बात कर रहे थे सैर, और कुछ नहीं कर सकते तो सैर तो आप कर ही सकते हैं, मोबाइल से दूरी बनाकर रखें, ये सब बेहद जरूरी है। साथ ही जो सुबह की सैर है वो प्रकृति का निःशुल्क टॉनिक है। प्रकृति ने हमें अनमोल उपहार दिए हैं, जिनमें से एक है सुबह की ताजी हवा और शांत वातावरण। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोग स्वास्थ्य के लिए महंगे उपाय ढूंढते हैं, वहीं सुबह की सैर एक ऐसा सरल और निःशुल्क टॉनिक है जो हमारे शरीर और मन दोनों को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाता है। सुबह की सैर से शरीर को ताजी और शुद्ध हवा मिलती है, यह हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाता है, और यह सुबह की जो सैर है पाचन तंत्र मजबूत करती है, हृदय रोगों से खतरे को कम करती है। सुबह का शांत वातावरण मन को सुकून देता है। सैर करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, यह एक अच्छी आदत और अनुशासन सिखाती है। सैर के दौरान प्रकृति की सुंदरता का आनंद मिलता है और यह मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखती है। इसलिए सुबह की सैर वास्तव में प्रकृति का एक निःशुल्क टॉनिक है जो हमें बिना किसी खर्च के बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन प्रदान करता है। हमें इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ, प्रसन्न और ऊर्जावान जीवन जी सकें। और चलते चलते आइए आपको कार्यक्रम में सुनवा देते हैं इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

साथियों, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं aapkibaatakashwani@gmail.com पर। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र, FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

सुन रहे थे मन मस्त कबीरा एल्बम से बैजू मंगेशकर की आवाज में उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए कबीर के द्वारा लिखे गए इन प्यारे से बोलों को। आइए चलते हैं, सुनते हैं अगला नगमा आज के कार्यक्रम रंग तरंग में। ये सुंदर सा नगमा लिया है हमने कागज

एल्बम से, मिर्जा डेयर टू लव इस एल्बम का नाम है। कौशिकी चक्रवर्ती ने इसे गाया है, गुलजार ने इसे लिखा है और शंकर एहसान लॉय ने इसे इस संगीत पर किया है।

द खजाना कॉन्सर्ट अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के द्वारा संगीतबद्ध किए गए और गाए गए इस प्यारे से नगमे को हम सुन रहे थे। आइए सुनते हैं अगला नगमा। कार्यक्रम रंग तरंग में बड़ा खूबसूरत सा है, जिसे लिया गया है यूनिक जगजीत सिंह एल्बम से, जिसे जगजीत सिंह ने गाया है और उन्होंने ही संगीतबद्ध किया है। सही भोपाली ने इसे लिखा है।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं एहसास एल्बम से तलत अजीज के द्वारा संगीतबद्ध किए गए और गाए गए सईद राही के द्वारा लिखे गए इस प्यारे से नज्म को, और सुनते हैं ये प्यारी सी नज्म।

यार का दीदार चाहिए एल्बम से रामशंकर की आवाज में असीर बुरहानपुरी ने इसे लिखा और दीपक पंडित ने इसे संगीतबद्ध किया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, अनफॉरगेटेबल ट्रीट, आशा भोसले एल्बम से। आशा भोसले की आवाज में फानी बदायूनी ने इसे लिखा और जयदेव ने इसे संगीतबद्ध किया।

हम सुन रहे थे एल्बम प्यार का पहला खत से ये नगमा जगजीत सिंह की आवाज में, जगजीत सिंह के ही संगीत के साथ। इसे लिखा है हस्ती ने।

0: हम सुन रहे थे गुलदस्ता अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाज में उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए अमीक हनीफ के बोलों को। यहीं पर समाप्त होता है कार्यक्रम रंग तरंग। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री तथा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: Our discussions must advance.
3: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता की सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चल रहे संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स एक्ट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबुधाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
4: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
1: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न कृषि चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया तथा मूल्य वर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए याद करते हैं राजकुमार बड़जात्या जो कि निर्माता निर्देशक रहे, उन्हीं की फिल्मों में से चुनिंदा कुछ गीतों को सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल में।

मेरी लाइफ में। इस फिल्म से हम सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में मनोज मुंतशिर के बोल और मीत ब्रोजन जान के संगीत के साथ में। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल में, जो कि है हम साथ साथ हैं फिल्म से हरिहरन, घनश्याम वासवानी, प्रीतम राव, संतोष तिवारी की आवाज में, जिसे रविंद्र वाल ने लिखा है।

मेरी धड़कन कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज यादों की महफिल में हम याद कर रहे हैं निर्माता निर्देशक राजकुमार भरजात्या को। तो आइए सुनते हैं उनके ही द्वारा रची गई फिल्मों में से फिल्मों के गीत। अगला गीत होगा चितचोर फिल्म से, यशुदास की आवाज में रविंद्र जैन के बोल और रविंद्र जैन के ही संगीत के साथ।

0: सौदागर फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में, रविंद्र जैन के बोल और रविंद्र जैन के ही संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
2: कहीं बेख्याल हो गई वही चूलियां कितनी।
1: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल, सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आइए सुनते हैं बहुत सुंदर सा नगमा अगली गी फिल्म के साथ में, जिसे निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या जी के द्वारा बनाया गया है। ये है प्रेम रतन धन पायो फिल्म से अन्वेषा, विनीत सिंह, हर्षदीप कौर, शबाब सबरी और साथियों की आवाज में इरशाद कामिल के बोल हैं और हिमेश रेशमिया का संगीत है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल में। आइए सुनते हैं एक बहुत खूबसूरत सा गीत हम आपके हैं कौन फिल्म से। लता मंगेशकर, बाला सुब्रमण्यम और साथियों की आवाज में रविंद्र अग्रवाल के बोल हैं और राम लक्ष्मण का संगीत।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखी ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ

0: और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल, बड़ी खूबसूरती से हमने सजाया इसे सुंदर गीतों के साथ में। राजकुमार बड़जात्या के द्वारा बनाई गई फिल्मों के गीतों को हम सुन रहे हैं। अगला गीत हम सुनेंगे पिया का घर फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर बस शुरू होगा थोड़ी ही देर के बाद।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं आपके साथ विधि जैन, और आज की इबारत मैं आप सबके साथ पढ़ना चाहती हूं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारे कुछ श्रोताओं ने इस इबारत को ना पढ़ा हो क्योंकि वो फेसबुक पर ना हो। तो चलिए चलते हैं उस इबारत की ओर। की हमने जो इबारत आपको भेजी है वो ऐसी है कि वो हमारी मोहब्बत के बारे में पूछ रहे थे और हमने कहा कि डॉन पकड़ में नहीं आता। तभी उसी ने मुस्कुराकर कहा, आपके पैर बहुत हसीन हैं।

0: तो मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत में तारीफ भी एक कला होती है, लेकिन मोहब्बत की दुनिया इतनी सीधी कहाँ है। कभी तो ये चाकू सी है, हाथ कट जाता है, कभी दिल को भी चोट लगती है। कई बार लोग पूछते हैं कि कितने अपने मिले और कितने पराए, या कहूँ कि जिंदगी की भीड़ में जब लोग पूछते हैं कितने आदमी थे, तब अपने हौसले गिनकर बता देती हूँ। और कभी जीवन में लोग नहीं मिलते हैं और देते हैं तारीख पे तारीख, पर हम तो हर हाल में खुश हैं। मुस्कुराकर कहते हैं कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं भीड़ लग जाती है, जीतते जाते हैं पर डर लगता है मृत्यु से। तो मन कहता है, ताओं ने लिखा है कि आज की इबारत में कई फिल्मों के डायलॉग शामिल हैं। अब ऐसे दृश्यों में जो कलाकार दिख रहे हैं उन पर गीत होंगे, या ये डायलॉग इबारत को पूरा करने के उद्देश्य से डाला गया है, या इन डायलॉग्स में जो शब्द हैं उनको आधार बनाकर गीतों को प्रस्तुत होगा। अब ये बात वो समझ नहीं पा रहे, उनका कहना है कि बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं। पर हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज कुछ नए तरीके से आपने विचार व्यक्त किए हैं, फिल्म के संवाद गीतों का सफर लगता है और साथ साथ चलेगा तो क्या होता है। देखिए, सच्ची मोहब्बत को व्यक्त करने की, बहुत अच्छी बात लिखी है कि सच्ची मोहब्बत को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती, पर वह तो अनुभव करना होता है। भोजन में नमक की तरह जो दिखाई नहीं देता पर होता है। कितनी बढ़िया गंभीर बात हमारे श्रोता ने लिखी है। और हमारे श्रोता ने एक और श्रोता ने एक बात लिखी है कि आज की इबारत केवल फिल्मी संवादों का संग्रह नहीं है, बल्कि सिनेमा के चश्मे से जीवन को देखने का एक खूबसूरत नजरिया है। यह याद दिलाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, इंसान को अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए, क्योंकि जीवन की कहानी का सुखांत होना अभी बाकी है। बिल्कुल सही, हमारे श्रोता ने लिखा है, आज की इबारत में कई फिल्मों के डायलॉग शामिल किया गया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिन फिल्मों के डायलॉग शामिल किए गए हैं उन्हीं फिल्मों के गाने शायद बच सकते हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैंने जिन फिल्मों के संवादों को पहचाना है उनके नाम है दो बदन, डॉन, पाकीज़ा, वक्त, शोले, दामनी, खाली अमर, प्रेम, आनंद, मेरे महबूब। हो सकता है और भी कुछ फिल्मों के डायलॉग हों, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बिल्कुल सही, जितना आपने पहचाना उतना अच्छा है। कितनी बढ़िया बात है कि आप पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं, आज की इबारत पर यह शब्द हो सकते हैं मोहब्बत, डॉन, हसीन।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हरियाणा के नगर निकाय चुनाव में भाजपा की शानदार विजय के लिए राज्य के मेरे परिवारजनों को बहुत आभार। इस जीत से एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि जनता जनार्दन है। यह विजय राज्य की डबल इंजन सरकार पर हरियाणा के लोगों के भरोसे का भी प्रतीक है। इस अवसर पर पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने भाजपा की इस जीत में अहम भूमिका निभाई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
1: जींद के संत शिरोमणि श्री सैन भगत राजकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के बीच पठन पाठन की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से एक भव्य पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 11 मई से शुरू हुई यह प्रदर्शनी 18 मई तक चलेगी। प्रदर्शनी का समय प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रखा गया है। इस प्रदर्शनी की सबसे बड़ी विशेषता पुस्तकों पर दी जा रही भारी छूट है। प्रदर्शनी की समन्वयक एवं महाविद्यालय की रजिस्ट्रार ऋतु रानी ने बताया,
3: इसमें बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स की किताबें हैं, हिस्ट्री की, बायोलॉजिकल, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और अलग अलग स्टोरीज और नॉवल्स हैं। इसमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट रेट पे किताबों को बेचा जा रहा है। ये 75% ऑफ पे हैं किताबें। किताबें जीवन का सार होती हैं। आजकल के बच्चे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते रहते हैं, किताबें नहीं पढ़ते, जबकि किताबें ही ऐसी चीजें हैं जो इंसान, जो एक व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाती है।
1: हरियाणा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देशानुसार योग ओलंपियाड 2026 प्रतियोगिता के अंतर्गत पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पलवल, होडल, हथीन व

हसनपुर ब्लॉक के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने भाग लिया। सहायक शिक्षा अधिकारी जसवीर सिंह तेवतिया ने बताया कि खेल विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच योग अभ्यास, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए योग ओलंपियाड 2026 का आयोजन किया गया है। यह प्रतियोगिता पहले खंड स्तर पर, फिर जिला स्तर पर और अंत में राज्य स्तर पर आयोजित की जाएगी। चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय योग ओलंपियाड में भाग लेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मुलाकात कर राज्य के विभिन्न कृषि चुनौतियों से अवगत कराया तथा मूल्यवर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगी। उन्होंने संकर धान के बीजों के मुद्दे की जांच करने और राज्य में सुचारू खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष समिति का गठन करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित बीज विधेयक 2025 के तहत केंद्रीय बीज समिति में पंजाब के प्रतिनिधित्व की भी मांग की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मंगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, हरियाणा निवासी यश यादव और विकास के रूप में हुई है। चारों को जयपुर से गिरफ्तार कर कल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। बाद में उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पूछताछ के लिए दिल्ली भेज दिया गया। जांच अधिकारियों के अनुसार आरोपी यश यादव और विकास ने पहले राजस्थान के सीकर जिले में एक कोचिंग सेंटर में साथ पढ़ाई की थी। सीबीआई अब कोचिंग संस्थानों, बिचौलियों, छात्रों और आरोपियों से जुड़े अन्य व्यक्तियों के बीच संभावित संबंधों की जांच कर रही है। इस बीच जांच का दायरा और बढ़ गया है। एजेंसियां उन आरोपियों के परिवारों और सदस्यों और रिश्तेदारों की भूमिका की भी जांच कर रही है जिन्होंने हाल ही में नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

हाय कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला हाँ अरे कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में

0: ने डॉन फिल्म की एक झलक सुनी। ऐसे कई गीत आए पान बनारस के ऊपर, जिनमें से सबसे बेहतरीन हम सबका पसंदीदा गीत है किशोर कुमार का गाया हुआ अनजान। फिल्म अनजान के बड़े प्यारे से बोल हैं कल्याण जी, आनंद जी ने इसे संगीतबद्ध किया है। और हम बात कर रहे हैं सुरीला सफर कार्यक्रम में बड़े सुंदर से गीतों के बारे में और बड़े सुंदर से डायलॉग्स के बारे में। तो आपने हमें बहुत सारे डायलॉग्स भेजे हैं, कौन कौन से आपको पसंद हैं या क्या आप सुनना पसंद करते हैं तो या कहना पसंद करते हैं और कहते कहते लोगों को रिझा लेते हैं। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं, उन दिनों की याद आती है जब टेप रिकॉर्डर में मनपसंद फिल्मों के डायलॉग सुना करते थे और दोहराते थे। और हमारे श्रोता ने हमें बड़ी अच्छी सलाह लिखी है कि आपके पाँव बहुत हसीन है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ डॉन। जीवन जीने का भी बहुत हसीन बनाया जा सकता है, बस आपको आत्मविश्वास होना चाहिए और हम सफर का साथ हमेशा बहुत मायने रखता है। हमारे श्रोता लिखते हैं, आई हेट टियर पुष्पा, आई हेट टियर पुष्पा, इन्हें यह लिखना था। और पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्त अपने फ्रेंड से मिलते थे, कुछ बात हो जाती थी तो हम बोलते थे पिक्चर अभी बाकी है, और हमारी फ्रेंड हमारा दिल दिखाई देते थे एंड कहते थे आई हेट टीयर्स, मतलब मैं जी, हम स्कूल में जो थे वो सारे डायलॉग्स बोला करते थे, मर जावा गुड़ खा के। हाँ, ये डायलॉग सभी लोग बोला करते हैं ना, मर जावा गुड़ खा के, गुड़ खा के कैसे मर सकते हैं, गुड़ खा के तो खुशियाँ होती हैं, ये बात भी ये डायलॉग भी हमारे श्रोता बोला करते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिल्म शक्ति का संवाद, इनकी बातों में आकर किसी ऐसे रास्ते पर मत चले जाना जहाँ से चाहो तो भी वापस ना आ सको, यह संवाद दिलीप कुमार ने अमिताभ को समझा कर कहा था। ये भी बात सही है। और हमारे एक और श्रोता ने पसंदीदा डायलॉग लिखा है, जिनके मकान शीशे के होते हैं दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। ऐसे कितने सारे डायलॉग्स हैं ना जो हमें पसंद हैं। अभी इन डायलॉग्स के बारे में हम और चर्चा करेंगे, पर सुनते हैं ये संदेश।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
4: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है सुरीला सफर। और सुरीले सफर में हम चल रहे हैं डायलॉग्स के साथ, वो डायलॉग्स जो कहीं ना कहीं आपके जेहन में, मेरे जेहन में कहीं ना कहीं बस गए हैं और बस ऐसे गए हैं कि चाहे जब चाहे में ही निकल आते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि हम बहुत अच्छा सफ़र इसमें चल रहे हैं और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि आज की इबारत महज शब्दों का समूह नहीं बल्कि बॉलीवुड के सुनहरे दौर और हिंदी फिल्मों के कालजयी संवादों के माध्यम से बुनी गई जीवन के प्रति एक दार्शनिक और बेबाक अभिव्यक्ति है। यह इबारत एक ऐसी शख्सियत को बयां कर रही है जो मजबूत है पर भावुक भी, निडर है पर संवेदनशील भी, और जो जीवन की हर परिस्थिति में एक सिनेमैटिक अंदाज में जीती है। यह हार ना मानने की एक खूबसूरत दास्तान रचती है। कितनी अच्छी बात आपने लिखी है। और हमारे श्रोता इसी बात में एक और बात लिखते हैं कि आप हमारे एक मेडिकल स्टोर की शॉप है, जब भी कोई हमारे बहुत पुराने ग्राहक शॉप पर आते हैं तो हम उन्हें शोले फिल्म का डायलॉग आओ ठाकुर ऐसा बोल देते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। कितनी अच्छी बात है ना, हमारे शब्दों से ही अगर किसी के जीवन में खुशियाँ आ जाएँ तो क्या कहना है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, कई पुरानी फिल्मों के डायलॉग हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर है, जैसे हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं। कितने आदमी थी, बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा, ऐसी सारी बातें हमारे श्रोताओं ने बताया है। और हमारे श्रोता ने लिखा है, कभी कभी यह डायलॉग हम उपयोग में लाते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते और जेब में फूटी कौड़ी नहीं और चला महलों के ख्वाब देखने, ये सारी बातें हैं और बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे संवादों के लिए लिखा है कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं कुछ फिल्मी संवाद को अपने जीवन में इस्तेमाल किया है, जिनमें एक संवाद है, तुमने सपने देखे हैं सपनों को टूटते नहीं देखा। दूसरा है, जिनके घर शीशे के हों वो पत्थर नहीं फेंका करते। और तीसरा है, मैं फेंके हुए पैसे आज भी नहीं उठाता। क्या बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, जरा सी परेशानी आती है तो हम कहते हैं साला ये तो काहे को खत्म नहीं होता। मतलब अगर हर बार भोजन यानी खाना पकाते हुए भी LPG खत्म हो जाए तो भी यह डायलॉग दे ही देते हैं। क्या बात है। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और शायद कुछ संदेश मैं पढ़ पाऊँ या ना पढ़ पाऊँ मुझे क्षमा कीजिएगा, पर ये जो अगला गीत है ना, इसके लिए हमारे श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है कि मोहब्बत में तारीफ नमक के माफिक होनी चाहिए, ज़रूरी भी है और ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं। तारीफ पार्टनर को उसकी खूबसूरती अहमियत का एहसास दिलाती है। हम अक्सर अपनी खूबियों को नहीं देख पाते पर जब कोई चाहने वाला तारीफ करता है तो हम उसकी नज़र से देखने लग जाते हैं, जिससे स्वयं आत्ममूल्य बढ़ता है और रिश्ते में सुकून आ जाता है। अगर तारीफ झूठी हो तो प्रेम नहीं बल्कि सौदाबाजी बन जाती है। सच्ची तारीफ भरोसा और अपनेपन को गहरा करती है। अक्सर प्रेम में पुरुष स्त्री की आंखों की और स्त्री पुरुष के मन की तारीफ करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन वही पुरुष स्त्री की आंखों को और स्त्री पुरुष के मन को पढ़ने की कोशिश करे, ये पढ़ ले तो मोहब्बत किसी बाहरी सुंदरता की तारीफ की मोहताज नहीं रह सकती बल्कि मोहब्बत की ही तारीफ हो जाती है। और एक बहुत खूबसूरत सा डायलॉग है जो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, राजकुमार का बेहतरीन संवाद है कि आपके पैर बहुत हसीन हैं। ये राजकुमार जी का जरा बताइएगा। आपके पैर बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत रखिए मैले हो जाएंगे। ये डायलॉग पाकीज़ा फिल्म का है और उसका ही ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। हो सकता है ये आपकी पसंद और मेरी पसंद दोनों का मिलान हो रहा हो। बताइएगा, अगर आपकी पसंद और मेरी पसंद दोनों की पसंद मिल गई है तो ज़रूर हमें सूचना दीजिएगा और इतना सा बस बता दीजिएगा कि इस गीत के गीतकार कौन है। और साथ में ये बताइएगा, जो प्रश्न में चल रहा है उसको तो चलने ही दीजिए, कि आपका पसंदीदा डायलॉग कौन सा है। और उसके साथ ये बताइएगा कि कभी कोई डायलॉग किसी मित्र ने, किसी शिक्षक ने, कभी माँ ने आपको ऐसे ही अनजाने में सुना दिया हो और आप हंस हंस के लोटपोट हो गए हो जहां पर आपकी पिटाई हो रही थी या डांट पड़ रही थी, जरूर बताइएगा। सुनिए ये खूबसूरत सा नगमा, बताइएगा इसके गीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे पाकीज़ा फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में गुलाम मोहम्मद के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के संगीतकार कौन है, तो हमारे श्रोताओं से कहाँ क्या छुपा है। बहुत अच्छे से उन्होंने उत्तर दिया कि कैफ़ी आज़मी ने इस गीत को बोल दिए हैं। और गुलाम मोहम्मद ने कितना खूबसूरत संगीत दिया है ना। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, रेलगाड़ी की सीटी आकर्षण का केंद्र है, गाने के अंत में सुनाई देती है। हाँ

आपने भी सुनी इन्हीं हेडफोन्स के जरिए विविध भारती के स्टूडियो से, आपने भी सुनी होगी अपने अपने रेडियो हैंडसेट पर, और हमारे श्रोताओं को बड़ा पसंद आ रहा है ये गीत, तो बहुत खुशी की बात है। और हमारे श्रोता लिखते हैं, गीत रूह को छू लेने वाला एक एहसास है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो जब हमारे पसंद के गीत हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं, शबे आखिरी शबे इंतज़ार आखिर कभी होगी मुख्तसर भी, ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलती जलती। क्या बढ़िया शेर उठाया है आपने गीत से। हमारे श्रोता लिखती हैं, हमने पूछा था आपसे कि आपको कौन सा ऐसा डायलॉग है जो आपके घर वाले आपको देते हैं तो आप मार खाते खाते या डांट खाते खाते हंसने लगते हैं। तो हमारे श्रोता लिखते हैं, मेरी मम्मी हमेशा मुझे डांटती है, कभी कभी जब मारने लगती है तो मैं कह देती हूँ डांट को ना, कभी दर्द नहीं होता। तो मम्मी हंसती है, फिर क्या ना एक और डायलॉग बोल देती हूँ, हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। फिर हम और वो और उनकी माँ दोनों बहुत हंसते हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपकी माँ आपके साथ आपको बहुत पिटाई करती हैं और बहुत सारा प्यार भी करती हैं। इन दोनों को संभाल कर रखिएगा। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे लिखे हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के इस सुरीले सफ़र में डायलॉग की बात हो रही है तो उन्हें जो डायलॉग पसंद है उन्होंने लिखे हैं, चल तनु बसंती आज चल धनो, यहाँ तनु नहीं यहाँ धनो होना चाहिए, चल धनो आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। तुम्हारा क्या नाम है बसंती, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठा था, मेरे पास गाड़ी है बंगला है पैसा है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है, आओ महारथी आओ। ये सारे डायलॉग ये बहुत प्यार से बोलते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बोला कि आज का मेरा खुद का डायलॉग है कि अपुन सफ़र के साथ सफ़र यानी डबल सफ़र करता है, हम विविध भारती मुंबई के सुरीला सफ़र के साथ साथ ट्रेन के सफ़र का भी आनंद ले रहे हैं, आपकी यात्रा शुभ हो, हम ये बात आपसे कहते हैं। और हमारे श्रोता लिखती हैं कि हमारी आदत है शांति तुम नहीं जानती ये बोलने की। हाँ, ये बड़े प्यारे से डायलॉग थे ना, मीठे मीठे सुरीले सुरीले। और हमारे श्रोताओं ने जब बहुत सारे डायलॉग्स के बारे में लिखा तो हमारे एक श्रोता ने तो ढेर सारे सारे डायलॉग्स ही पहचान करके लिख दिए, और उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन सारे डायलॉग अभी हम नहीं बोल सकते। हमारे श्रोता लिखते हैं, जंजीर फिल्म का एक संवाद है, जब तक बोला ना जाए चुपचाप खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं। और हमारे श्रोता कहते हैं, अक्सर मेरे मित्र पूछते हैं कि आपके स्वस्थ और खुश रहने का राज क्या है, उनसे मेरा यही कहना है मैं विविध भारती सुनता हूँ। बहुत बढ़िया बात है, सुनते रहिए, ये डायलॉग बड़े काम का है। हमारे श्रोता ने लिखा, हमने कल रात को ही प्रोमो देखा फिल्मों के डायलॉग के गीत पर, सभी को नमस्कार, लेकिन आज उन्हें गोधड़ी सिल के भेजनी है तो गाने सुनेंगी, तो सुनते रहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में जब हम घर पर बच्चे शैतानी करते थे, माँ हम सब की शिकायत पापा से करती थी तो हमारे पिताजी पूछते थे कितने आदमी थे, और अब तो हंसी आती है यह सोचकर। हाँ, लेकिन उस समय तो हम सबकी हालत पिटाई और डांट के डर से देखने वाली होती थी। ऐसे ही खुश रहिए क्योंकि ये डायलॉग जो है ना बड़े प्यारे प्यारे हैं। और हमारे अगला जो डायलॉग है वो बहुत खूबसूरत सी हीरोइन का डायलॉग है, तो ये गाना आप सुनिए और उस डायलॉग का जिक्र कीजिए, और उसके साथ ही एक जिक्र और कर दीजिएगा कि वो अभिनेत्री कौन है, उनका वो डायलॉग कौन सा है और ये फिल्म कौन सी है। ये तीन प्रश्न मैं आपके पास रख रही हूँ, अभिनेत्री, वो डायलॉग और साथ में फिल्म का नाम। सुनिए।

हम सुन रहे थे ये गीत अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये गीत किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, और बता दीजिएगा जल्दी से, और यह भी बता दीजिए कि इसके साथ में डायलॉग कौन सा है। तो हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छे से इसका उत्तर दिया है कि जानी ये चाकू है, लग जाता है तो खून निकल आता है, श्रीदेवी, और फिल्म का नाम भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, चालबाज। हमारे श्रोता लिखते हैं, चुलबुली अभिनेत्री श्रीदेवी का असामयिक निधन हुआ, वो अफसोस की बात है, हम सभी उन्हें सच में याद करते हैं। और बड़ा खूबसूरत सा ये जो डायलॉग का सफ़र चल रहा है, हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब भी स्कूल के दिन अपने दोस्तों के साथ छुट्टी लेते थे या घर जाते थे तो लिखते थे कि अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगी, जब तुम कहोगी, ये डायलॉग इनके बीच में चलता था। और हमारे श्रोताओं ने इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने कई सारे डायलॉग्स के बारे में बड़े प्यार से बताया है, और श्रोता अपनी बड़ी प्यारी प्यारी कहानियाँ भी लिख देते हैं, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि घर बच्चे छोटे थे, जब भी घर पर मैगी बनाते थे तो बच्चे कहते थे माम हो गए, वो खुश हुआ, और इस बात से हमारे श्रोता भी खुश हो जाते थे ये डायलॉग सुनकर। हमारे श्रोता लिखते हैं कि शाहरुख काजोल का वो डायलॉग है पलट पलट, वो भी उन्हें बहुत पसंद है। बिल्कुल सही बात है, ये कई लोग ट्राई करते हैं इस डायलॉग को। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमें ये डायलॉग अच्छा लगता है, आपकी इबारत में भी है कि बाबू मशाई जिंदगी पड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, और सही भी है। और शोले फिल्म का डायलॉग, बसंती का डायलॉग, हाँ बाबू जी कहाँ जाओगे, बेलापुर फतेहपुर, ये डायलॉग भी उन्हें बहुत पसंद है। पर ये डायलॉग पूरा याद करना बड़ा मुश्किल है, कैसे उस अभिनेत्री हेमा मालिनी ने उसे याद किया होगा। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं, तो एक फिल्म धमाल का एक डायलॉग है, प्रेम चोपड़ा साहब डब्ल्यू वाली बात पर बताते हैं, तो जावेद जाफरी कहते हैं कि हम कोई उसके बाप के नौकर हैं जो उसका काम कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत सा डायलॉग है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें मुगले आजम का डायलॉग बड़ा पसंद है, मेरा दिल आपका हिंदुस्तान नहीं है जिस पर आप राज कर सकें। क्या बढ़िया बात है, ब्लैक एंड वाइट मूवी का ये डायलॉग। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, और अब हम आपको अगला जो प्यारा सा गीत है वो सुनवा रहे हैं। और इस फिल्म के जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डायलॉग आप लिखकर भेज सकते हैं, ज़रूर भेजिएगा, और बस इतना ही बता दीजिएगा, वैसे आपको गाना सुनते ही पसंद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा इसके गायक कलाकार कौन है और फिल्म कौन सी है और किस सन में आई थी, ये बताएंगे।

हम सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार मन्नाडे की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल राहुल देवर्मन के संगीत के साथ। और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, शोले 1975 की फिल्म है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, उस समय वह 8वीं कक्षा में थे, यानी आपने अपनी 8वीं कक्षा में ही शोले देख ली थी, कितने सौभाग्यशाली हैं। चलिए हम हमारे श्रोताओं से हमने कुछ प्रश्न पूछे थे, उन सबके उत्तर हमारे पास आ रहे हैं। आज का सुरीला सफर में जुड़कर मुगैम्बो खुश हुआ क्यों मिस्टर इंडिया, ये हमारे श्रोता लिखते हैं। और हमने पूछा था आपसे कि इस फिल्म के कई सारे डायलॉग शायद आपको पसंद होंगे तो जरूर भेजिएगा। मौसी जी तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं, ये हमारे श्रोता कह रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि असरानी का डायलॉग, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं क्या, आप सही बात है, शंभू का दिमाग दोधारी तलवार है, प्रेम चोपड़ा का ये डायलॉग उन्हें बड़ा पसंद है, एक हाथ का पंजा कटा हुआ है तो उसके ऊपर धातु का ग्लव यानी कवच पहना हुआ है। और हमारे श्रोता लिखते हैं, यूं तो हमें बोलने की आदत तो है नहीं, चल बसंती आज धनु की इज्जत का सवाल है, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं ही। और हमारे श्रोता ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, ठाकुर ये हाथ हमको दे दे, नहीं ये डायलॉग थोड़ा अलग है, ठाकुर हमका ये हाथ दे दे, क्या था सही डायलॉग आप जरा भेजिएगा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मरते दम तक साथ चलना है चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये गीत के साथ बोला आपने लिखा है। पार्टनर अब बोल दिया है तो देख लेंगे, ये मेरा फेवरेट है, कितना बढ़िया डायलॉग है ना। तुम क्या लाए हो धोलिया, ये मुट्ठी भर ज्वार, बाकी क्या अपनी लड़की के बरातियों के लिए रख छोड़ा है। और श्रोता लिखते हैं कि उन्हें पुष्पा 8 ईयर्स मुगैम्बो खुश हुआ बड़ा पसंद है। हमारे एक और श्रोता ने बड़ा अच्छा डायलॉग दिया, मेरा नाम सुरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है, अरे वो सांभा कितने आदमी थे, ये हमारे श्रोता लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, हमारी इतनी बदलियों के बाद जब हम नहीं बदले तो तुम क्या बदलोगे। ठाकुर साहब गब्बर सिंह क्या कोई बकरी का बच्चा है तो जो दौड़ा और पकड़ लिया। बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है और आपने लिखा है कैसे हो सुरमा भोपाली। ये डायलॉग भी बड़ा अच्छा है, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये सही डायलॉग है और ये डायलॉग हम कई बार याद भी करते हैं। हमारे एक श्रोता ने बसंती उनके सामने नहीं नाचना ये भी लिखा है, इतनी खामोशी क्यों है भाई, ये डायलॉग भी यहाँ पर आया है। और इसके साथ ही बहुत सारे डायलॉग्स के साथ में हमारे श्रोता ने लिखा है, कितना इनाम रखे हैं सरकार ने, ये बात भी, कितने आदमी थे, ये सारे डायलॉग आपके रिपीट हो रहे हैं, कई सारे लोगों ने भेजे हैं। और इसके साथ बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग हमारे बीच में आ रहे हैं और इसमें हमारे श्रोता ने लिखा है, जानते हो संसार का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है, बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा। ये बड़ा बड़ा खूबसूरत सा है और बड़ा दिल को कुछ कलेजे में कुछ करने वाला ये डायलॉग है। शोले फिल्म पुराने ज़माने के जेलर मूवी जितनी बार देखी उन्हें अच्छी लगी, हेमा मालिनी का सीन बहुत अच्छा है, जब कहते हैं प्रभु आप बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं क्या कन्या यूके यूके, वो सारी बात जो चलती है उनमें बड़ा मज़ा आता है। तो कालिया कहता है कि दो हैं कहाँ रे फौजी नंबर दो, ये कई सारे डायलॉग जो हैं लोगों को पसंद आते हैं। तो चलिए ऐसे ही सुंदर गीत आप सुनते रहिए और अगला जो गीत है वो हम आपको सौंप रहे हैं, बस यही करना है।

उस गीत के गायक को पहचान लेना है और जरा सा पहचानिए कि ये डायलॉग कौन सा हो सकता है। डायलॉग के साथ में आप पहचान लीजिए जल्दी से वो डायलॉग कौन सा होगा और ये फिल्म कौन सी होगी।

इस गीत का एक ही अंतर हम आपको सुनवा रहे हैं क्योंकि हमें सुनवाने हैं बाकी डायलॉग के गीत भी। और इसके साथ में हमने आपसे पूछा था कि ये गीत जो है वो किस फिल्म से है और बता दीजिए जल्दी से, तो आपने हमें बता दिया कि दामिनी फिल्म से है और बहुत अच्छे से बताया कि ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है, और उसके साथ तारीख पे तारीख शायद इसी फिल्म का डायलॉग है। बिल्कुल सही। चलिए, ये सारे डायलॉग तो आपने बताया, आपने लिखा कि तारीख पर तारीख मिलती रही लेकिन इंसाफ नहीं मिला। माय लॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। बिल्कुल सही। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं और खाली आ कितने आदमी थे ये डायलॉग भी हमारे श्रोता ने दिया है। और इसके साथ मैं आपको अलग अलग गीतों की कई सारी बातें बनाऊंगी।

पर अब हम चल रहे हैं आज के कार्यक्रम की अंतिम डायलॉग के साथ में, और वो डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा है। अगर आप बताएंगे कि वो डायलॉग कौन सा बचा है तो जरूर बता दीजिएगा। बाकी हम तो आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि बाबू शाही जिंदगी पड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और ये फिल्म कितनी खूबसूरत थी ना, किस किस ने देखी, कब कब देखी जरूर बताइएगा। मैंने अभी 2 दिन पहले ही इस फिल्म को देखा है, हर रोज मैं इस फिल्म को देख सकती हूँ, जीने की एक ताकत देती है। सुनते हैं यह खूबसूरत सा नगमा, और आपको जो थोड़े थोड़े गीत सुनवाए हैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कभी और किसी और रोज वो जो गीत रह गए हैं उन्हें पूरा सुनाऊंगी।

आनंद फिल्म का ये गीत हम सभी सुन रहे थे और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी, उन्होंने वह पूरी कविता लिख डाली। मौत तो एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, वो पूरी कविता पढ़ने का समय तो नहीं है। जिंदगी की डोर ऊपर वाले के हाथ में किसकी डोर कट जाए, ये बात है। और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं और लिखा है कि आनंद फिल्म उन्होंने दूरदर्शन पर देखी थी और कई सारे और डायलॉग्स हम तक आए हैं। और हमारे एक श्रोता ने लिखा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छा डायलॉग दिया है और उसके साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में कार्यक्रम सुरीला सफर में आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: ये तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है।

0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजय नेता नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की यह यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में यह वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
3: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: हम सुन रहे थे ये गीत 12 o'clock फिल्म से मोहम्मद रफ़ी गीता दत्त की आवाज़ों में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ. आइए सुनते हैं ये संदेश.
1: मिलती हैं धाराएं 3 विचार स्वर और संगीत.
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा.
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून.
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है.
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना. विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ.
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा.
1: वो है कार्यक्रम.

0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बहारें खिली पहनी।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं अगला गीत। डिटेक्टिव फिल्म से गीता दत्त हेमंत कुमार की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और मुकुल रॉय के संगीत के साथ।

0: चले गए हम।
1: हम सुन रहे थे ये गीत काला पानी फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव वर्मन के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे ये गीत आखिरी दांव फिल्म से आशा भोसले की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला नगमा जो कि है फिल्म अनाड़ी से। लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत।

हम सुन रहे थे मधुमति फिल्म का यह गीत मुकेश की आवाज में शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अंतिम गीत और इस गीत के साथ आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप सबका कल्याण हो ये प्रार्थना करती हूँ। और सुनिए ये गीत मालिक फिल्म से, सुरैया शमशाद बेगम और साथियों की आवाजें हैं, शकील बदायूनी के बोल हैं और गुलाम मोहम्मद का है संगीत।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी साथियों को, सभी सखियों को, प्यारे प्यारे जितने साथी बैठे हैं सभी को नमस्कार। और आज मेरे साथ इस मंच पर हैं दीपा, आपको भी दीपा प्यार भरा नमस्कार।
2: चंचल, आपको और साथ में हमारी सारी सखियों, सहेलियों और हमारे श्रोता भाइयों को हमारा हेल्दी नमस्कार।
1: तो आपने पिछली बार भी हेल्दी नमस्कार किया, उसकी वजह बताई थी, और आज भी हेल्दी नमस्कार है, ये तो आज भी वजह बताइए
2: भाई। एक बार जब भी आते हैं ना, तो अपने श्रोताओं को याद दिला दो, हेल्थ का ध्यान रख रहे हो ना।
1: हाँ,
2: सेहत का ख्याल है या नहीं,
1: इसीलिए भाई दीपा जी जब भी आएंगी ना, वो स्वास्थ्य से भरा नमस्कार करेंगी।
2: और आपको ये बताना है कि आपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा है या नहीं।
1: हाँ, तो भाई हमारे कौन से साथी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं, हमारी सहेलियां अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य का ख्याल रख रही
2: हैं। जी बिल्कुल,
1: वो हमसे साझा कर सकती हैं, लेकिन विषय जिन पर हम बात करेंगे वो हम साझा कर लेते हैं।
2: स्वास्थ्य का ख्याल रखना देखो ना, इसलिए भी बहुत जरूरी है, इन दिनों बहुत गर्मी हो रही है, तो ये एक जायज सी बात है कि पसीना आता है, लेकिन कई लोगों के पसीने से दुर्गंध आती है।
1: हाँ,
2: है ना।
1: कुछ लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि जब हम किसी के पास बैठे हों तो दूर से भी उसे नाक भौं सिकोड़ने की जरूरत ना पड़े, या उसे भी अच्छा महसूस हो, तो अपने आप को साफ सुथरा और स्वच्छ हाइजीन के पर ध्यान रखते हुए वो जो रखते हैं, तो इस बात का सभी ख्याल रखें। और इसमें क्या उपयोगी टिप्स हो सकते हैं, थोड़ी हम मदद करेंगे, थोड़ी हमारे जो सुनने वाले हैं वो उपयोगी टिप्स लेकर बताएंगे।
2: जी बिल्कुल। और फिर मुझे तो देखो आज उसके बाद ना खरीदारी करने भी जाना है प्रोग्राम के बाद।

0: तो क्या खरीदने वाली हो और कैसे खरीदना है तुम्हें ये बताओ।
1: देखो मैं सोच रही हूँ एक बहुत अच्छा सा ना फोन आया, स्मार्टफोन, और किश्तों पर भी मिल रहा है, तो सोचा कि चलो आज जाकर के देखते हैं कितना किश्त है, क्या है, हम भर सकते हैं या नहीं। तो बड़ा मन है कि फोन खरीद लें।
0: देखो
1: फोन वो स्मार्ट वॉच वाला साधारण नहीं।
0: क्या होता है ना, आसानी से वो चीज हमारे हाथ में आ जाती है जब हम किश्तों पर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाई जो चीज 15,000, 20,000, 50,000 तक की भी हो सकती है उसे हम कुछ 2,000, 4,000, 5,000, 8,000 देकर भी उसे अपने हाथ में ले सकते हैं, यानी कि बहुत कम रकम में आसानी से वो चीज आ सकती है। लेकिन हर चीज के कुछ अगर फायदे हैं तो नुकसान भी।
1: बिल्कुल। तो हमारी सखियां कहीं इस तरह से ये फोन लेना या स्मार्ट वॉच लेना या कोई और चीज के लिए किश्तों के उस जो सुंदर से दुनिया है उसमें कितना जा चुकी है, या उनको लगता है कि हाँ कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए,
0: और क्या इसके साथ जुड़े उनके अनुभव भी होंगे कि उन्होंने जब किश्तों पर कोई चीज ली तो उनके साथ में अच्छा क्या हुआ या उसका खामियाजा क्या उन्हें भुगतना पड़ा। तो अच्छे बुरे सभी तरह के अनुभव वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और अनुभव तो बहुत सारे तरीके के होते हैं ना। देखो दोस्ती में भी कितने अनुभव मिलते हैं, कहीं अच्छे दोस्त मिलते हैं, कहीं ऐसी दोस्ती होती है जो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती, कहीं बहुत लंबी दोस्ती होती है, और जो बचपन की दोस्ती भी रहती है जहाँ पर हम KG-1 KG-2 के जब पढ़ते थे बिल्कुल छोटे, और आज तक दोस्ती। तो क्या ऐसी वाली दोस्ती भी आपके साथ है, या कहीं कुछ ऐसा आपका अनुभव रहा है कि कोई बहुत प्यारा दोस्त है और अभी उससे कहीं दूरी बन गई है, तो कुछ अगर आप बता सके तो कारण बताइएगा, तो कहीं हम शायद आपकी मदद कर सके दिल को हल्का करने में या अपने उस दोस्त के पास जाने में।
0: एक और दोस्त, यानी कि रेडियो को भी कई लोग अपना दोस्त बना लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं, तो वो लोग दोस्त बनाते हैं, कोई मोबाइल को अपना दोस्त बना लेता है, कोई किताबों को अपना दोस्त बना लेता है, कोई रेडियो को अपना दोस्त बना लेता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चित्रकारी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं, बस अपने शौक में वो इस तरह डूब जाते हैं। मान लीजिए आपको अगर रंगों से प्यार है, चित्रों से प्यार है, तो चित्रकारी जैसे अगर और भी कला आपके भीतर है, चाहे वो गायन की हो, किसी वादन की हो, तो रंगों की जब मैंने बात की तो मुझे याद है कि आज जिस पद्मश्री महिला की हम बात कर रहे हैं, जो पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं, वो रंगों की दुनिया से ही तो जुड़ी हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और उनका सफ़र अगर हम उनके बारे में जानेंगे ना, जानना है या हमें क्या करना है, बहुत कुछ जानकारी तो
0: भाई जानकारी बहुत सारी है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई दोस्त जब हम रेडियो को बनाते हैं, गीत संगीत को बनाते हैं, तो पहले गाना सुनवाना बनता है।
1: अरे ये तो नियम भूल ही गई थी।

0: बहुत सुंदर गीत था और जिस तरह से इस गीत में खनक थी ना, वैसे ही कुछ खनक रंगों में होती है और रंग भी मन को मोह लेते हैं। और आज हम जिस महिला की बात कर रहे हैं जो चित्रकार हैं, जो अपने रंगों का जादू ना जब वो चलाती है ना रंगों की अपनी कलम, तो वो नजर आता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और भूरी बाई, ये उनका सफर हमें यही बताता है चंचल कि कला छुपाए नहीं छुपती है, वो दुनिया तक एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। इसलिए घर में कोई बच्चा हो या आप स्वयं हमारी सखी खास तौर पर, वो क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की कला अगर आपके अंदर है तो उसे कहीं भी रोकिएगा नहीं, कभी दबाइएगा नहीं।
0: और ये जो अवसर है जब स्कूल के बाद बच्चों की छुट्टियां होती हैं, यही मौका उन्हें मिलता है कि उनके अंदर कोई कला है तो उसे आप उभारें और उन्हें कोई ऐसी क्लासेस में एक्टिविटी के लिए भी आप भेज सकती हैं, ताकि उन्हें खुद को जानने का अवसर मिलेगा इन चीजों से।
1: और बच्चों के साथ खुद भी क्यों नहीं, अगर आपको अब लगता है कि हाँ थोड़ा सा वक्त है
0: जी,
1: और अगर आपको मान लीजिए कि 40 पार या 45 की उम्र के पार आपको लगता है कि मैं कोई डांस क्लासिक हूँ, लेकिन मन में एक पहला ख्याल क्या आता है, अरे अब कहाँ, तो ये ख्याल आने भी मत दीजिएगा। जरूर अपने पास की किसी कोई क्लास कहीं पे कुछ सिखाया जा रहा हो तो जाकर एक बार देखिएगा जरूर कि आप कर पा रहे हो या नहीं।
0: और 40-50 के पार तो मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा अच्छा समय होता है, उस वक्त अधिकतर महिलाएं या पुरुष बच्चों की जिम्मेदारियों से काफी हद तक मुक्त हो चुके होते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख कर अपने नौकरी के लिए या बड़ी किसी पढ़ाई के लिए वो विदेश चले गए होते हैं या कहीं और किसी अन्य शहर में चले गए हैं, या अपने ही शहर में वो व्यवस्थित शादी ब्याह करके या नौकरी करके सेटल हो चुके होते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: तो आपको जब अपने लिए समय निकालने का अब वक्त आया है तो बिल्कुल पीछे ना हटें, अपने उस शौक को पूरी तरह से जी लीजिए।
1: बिल्कुल।
0: तो आज हम बात कर रहे हैं चित्रकार भूरी बाई के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक छोटा सा गाँव है पिटौल, वहां पर इनका जन्म हुआ 1968 में। और उनके माता पिता बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आते थे और मेहनत मजदूरी का काम वो किया करते थे, पढ़ाई लिखाई भी उनकी हो नहीं पाई ज्यादा, क्योंकि उनका जो कह सकते हैं ना कि पृष्ठभूमि जो उनकी रही वो इस तरह की थी कि उन्हें पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिल पाया। और जब छोटी सी थी वो तो चित्रकारी का बड़ा शौक था उन्हें, और मिट्टी और गेरू, जो आमतौर पर हम देखते हैं कि घरों में गेरू से कुछ रंगोलियां अल्पना बनाई जाती है, तो उन्हीं से बस उन्हें भी खेलने का शौक लगा। और खेलते खेलते रंगों से कभी हाथी कभी घोड़ा और कभी पेड़ों के जंगलों से जो चीजें मिल जाती थी उन्हें लाकर वो चित्रकारी का अपना शौक है उसे पूरा किया करती थी
1: जी। अब क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र थी उनकी तो पड़ोस के ही गाँव में उनका ब्याह हो गया, पति पत्नी दोनों आस पास के गाँव शहरों में मजदूरी करके अपना जीवन चला ही रहे थे बस इसी तरीके से। और भूरी बाई भील आदिवासी समुदाय की भित्ति चित्र परंपरा में बहुत प्रशिक्षित भी थी और घर की कच्ची दीवारों पर गेरू से या कभी कोई दूसरे प्राकृतिक रंग से चित्रकारी

0: चित्रकारी वो करती थी और ये हुनर कहीं कुछ ऐसा रहा कि राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक ले आया। तो 1982-83 की बात थी, भोपाल में भारत भवन का निर्माण चल रहा था चंचल, तो प्रदेश के अलग अलग अंचलों से आदिवासी कलाकारों को बुलाकर यहाँ के निर्माण में मदद लिया जा रहा था उस वक्त। तो भूरी बाई के पति को भारत भवन में बगीचे की देखभाल का काम मिल गया, तो उनके साथ वो भी भोपाल चली आई।
1: और बिल्कुल, क्योंकि उस कच्ची मिट्टी से गेरू से खेलने का शौक तो उनको था ही, इन प्राकृतिक रंगों की चित्रकारी से जो हुनर उनको मिला था, तो बस जब उनके पिता आए तो वो भी चली आई। और उनके पिता जो कि बगीचे की देखभाल का काम किया करते थे
0: जी, उनके पति चले आए। हाँ, पति के साथ,
1: पति के साथ वो चली आई और उन्होंने भी भारत भवन में मजदूरी का काम करना वहां शुरू किया। और यहाँ उनकी मुलाकात हुई उनके जो गुरु थे जे स्वामीनाथन, उनसे हो गई। और उनकी जो संस्कृति थी, वहां के जो देवी देवता थे, उनको समझने के लिए भूरीबाई और उनके पति से उन्होंने बात की। इसी दौरान उन्हें यह भी पता लगा कि देवी देवताओं के चित्र घर की दीवारों पर बनाने की बहुत पुरानी परंपरा रही है देश में। तो जे स्वामीनाथन ने पहली बार भूरीबाई से देवी देवताओं के चित्र कागज पर बनाने को कहा, यानी कि दीवारों पर तो बनते ही थे लेकिन ये चित्र उन्होंने कागज पर किस तरह उकेरे जाएंगे ये उनको कहा।
0: ये उनको कहा, तो वे तो उंगलियों से बनाती थी, अब उन्हें कैनवास पर बनाने के लिए जब कहा तो बड़ी समस्या उनके सामने आन पड़ी कि जीवन में कभी कलम को तो हाथ ही नहीं लगाया। घर पर उन्होंने लेकिन क्या था, थोड़ी प्रैक्टिस की और फिर पहुंची अपने कला गुरु के जे स्वामीनाथन के पास। भूरीबाई ने 5 दिनों में यह काम करके दिखाया जिसके लिए उन्हें उस वक्त 50 रुपए मिले। यहां जी
1: भाई, उस समय की जब आप बात कर रही हैं तो 50 रुपए मिलना अपने आप में बड़ी बात हुआ करती थी। और यहीं से जो उनकी कला की यात्रा है ये भी शुरू हो गई और ये ऐसी शुरू हुई कि फिर आगे चलकर विश्व स्तर तक पहुंची है। और भूरीबाई भी अपने बारे में बताती हैं कि उन्हें चित्रों में जो जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर हैं, जंगल हैं, पशु पक्षी हैं और त्यौहार, ये उनके मुख्य विषय थे जिनको वो चित्रकारी में उकेरा करती थी। और इन चित्रों को छोटे आयताकार वो बनाया करती थी जिनमें उंगलियों से बिंदी बिंदी लगाकर उसे वो बिल्कुल जीवंत बना दिया करती थी। हर कलाकार का चित्रकारी करने का जो एक अंदाज होता है तो वो उनका अंदाज था।
0: भूरीबाई कहती हैं कि उनको कला का पहला सम्मान 1986 में मिला और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी देवी अहिल्या सम्मान उन्हें दिया। 2018 में उनके चित्रों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी लगी जो कि अमेरिका में लगी। बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और जापान जैसे देशों में भी अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। हर जगह उनकी चित्रकारी को इतना पसंद किया गया कि उसके बाद मतलब उन्हें हर साल बुलाया ही जाता था कि आप आकर के एग्जीबिशन लगाइए।
1: बिल्कुल, हम अगर देखें कि उनकी क्या पृष्ठभूमि रही, किस तरह के परिवार से वो आती हैं, उन्हें पढ़ने लिखने को स्कूल जाने को नहीं मिला, किसी बड़े स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं है उनके पास में, लेकिन जिस तरह के सम्मान उन्होंने पाए सिर्फ अपनी उस कला के जरिए, तो अगर आप शिद्दत से कोई भी काम करें तो वो छोटा बड़ा नहीं, वो आपको कहीं एक जगह ले जाकर वो सम्मान दिलवा सकता है।
0: बिल्कुल, वे कहती हैं कि अपने समुदाय में वो पहली महिला है जिन्होंने कागज और कैनवास का इस्तेमाल किया है और पेंटिंग करने के लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती है। एक मजदूर से लेकर विश्व स्तर तक अपने समुदाय के पेंटिंग को पहचान दिलाने वाली वे पहली महिला बनी जिसके लिए उन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला।
1: और भूरीबाई का ये मानना है कि आप चाहे गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, किसी भी महिला को अपने क्षेत्र में हुनर को आगे ले जाते हुए जीवन में आगे जरूर बढ़ना चाहिए। और हम भी यही शुभकामनाएं देते हैं अपनी सभी सखियों को और अपने सभी साथियों को कि आप उम्र को एक सिर्फ नंबर मान के चलिए और उम्र को किसी भी चीज़ में आड़े मत आने दीजिए, आप आगे बढ़िए, अपने शौक को पूरी तरह से जी लीजिए। और अब एक गाना सुन लें।
0: चलिए।

0: पानी पता कैसा होता है कि जिस रंग में मिल जाए वैसा ही बन जाता है.
1: बिल्कुल.
0: और दोस्ती भी ऐसी थी, अगर आपको दोस्त कोई बहुत अच्छा मिल जाए ना, आपके रंग में वो रंग जाए, तो बस ऐसा अगर दोस्त एक भी आपके पास है ना, तो वो 100,000 दोस्त के बराबर है.
1: बिल्कुल सही कहा. और देखिए, यही एक संदेश हमारी सखी ने लिखा है, दोस्ती से ही तो प्रेरणा लेकर सखी सहेली का नामांतरण हुआ.

0: होगा, हम सब आपस में अच्छे दोस्त हैं। सोचो अगर सखी सहेली ना होती तो हमारी दोपहर कितनी सुनी होती भाई। सखी सहेली के रहते आपकी दोपहर कभी सुनी नहीं होगी।
1: और पता है दीपा, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे रिश्तों से हम घिरे हुए होते हैं, जिनमें से अधिकतर या तो हम कहें सभी रिश्ते जन्म से संबंधित होते हैं। और जन्म से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं, इन्हें बदल पाना भी हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन इन जन्म से जुड़े रिश्तों के अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है, वो होता है दोस्ती का। और ये वो रिश्ता है जिसे हम अपनी सोच समझ के साथ में खुद चुनते हैं और खुद इस रिश्ते से जुड़ते हैं।
0: बिल्कुल सही।
1: और जीवन के हर कदम पर अलग अलग लोग हमें मिलते हैं, कुछ से अच्छी जान पहचान हो जाती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोस्त कह पाते हैं। और मुश्किल समय में जो व्यक्ति हमारे लिए मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाता है, वही सच्चा दोस्त होता है।
0: लेकिन चंचल, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में दोस्ती नाम का कोई रिश्ता नहीं होता। सोशल नेटवर्किंग के जमाने में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई दोस्त नहीं है। तो क्या हो ऐसा है कि उन लोगों को दोस्ती करने का सही तरीका मालूम नहीं है?
1: ऐसा तो नहीं हो सकता।
0: समय के साथ साथ दोस्ती के मायने भी बदल रहे हैं। आज जहां ज्यादातर लोग अपना मतलब और स्टेटस देखकर दोस्ती करते हैं, वहीं पुराने समय में दोस्ती का संबंध सिर्फ पहले कैसा होता था, बिल्कुल दिल से दोस्ती हुआ करती थी,
1: दिल से जुड़ जाते थे।
0: अब जो थोड़ा सा एक मॉडर्न जमाना कह लो या आधुनिकता कह लो, स्वार्थ की चकाचौंध कह लीजिए, आज दोस्ती को एक माध्यम की तरह बना दिया गया है, जबकि ऐसा कतई होना नहीं चाहिए।
1: इसीलिए तो हमारे साथी लिख रहे हैं कि दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा और सूना सा लगता है, क्योंकि दोस्त ही हर खुशी और जश्न और गम को हल्का बनाते हैं। वे भरोसे, ईमानदारी और बिना शर्त के हमारे सपनों को सहारा देते हैं। एक सच्चा दोस्त जीवन में सुकून, मस्ती और निस्वार्थ साथ लेकर आता है। दोस्ती के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो हमारे साथी ने हमें लिखकर भेजी हैं। खुशी का एहसास, दोस्तों के बिना जिंदगी बेरंग है, वो हर पल को खुशी से भर देते हैं। सच्चे दोस्त की पहचान होती है कि अपनी कमियों को स्वीकार करें और मुश्किल समय में हौसला बढ़ाए, भावनात्मक सहारा देते हैं। दोस्त सिर्फ हंसी मजाक नहीं करते बल्कि रोते हुए को भी सहारा देते हैं, कड़वे सच बताने वाले भी होते हैं। और दोस्ती एक ऐसा बंधन है जिसे हम अपनी पसंद से चुनते हैं, उसमें स्वार्थ, अहम, इन चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं होती।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक हमारी सखी कह रही हैं कि दोस्ती पर कोई बात की जाए जिसमें कृष्ण, सुदामा और कर्ण, दुर्योधन की मित्रता की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्त एक दूसरे दोस्त के चेहरे का भाव समझकर उसके लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं। और दोस्ती यही मांगती भी है, अपना स्वार्थ नहीं होता उसमें, भाव यह रहता है कि हमें ये वापस मिल जाएगा, लेकिन तू जो मतलब दोस्त है वो तू बस मेरे साथ रहे, बाकी सब कुछ हो जाएगा। आज के युग में बनावटी दोस्त तो मिल जाएंगे, लेकिन आपके पास भले अकुल संपत्ति हो, हिचकते नहीं है, कभी कम होगा और कभी मांगते रहेंगे, जिनसे आप वापस कुछ पाने की उम्मीद बिल्कुल ना करें। यानी कि वो बनावटी दोस्त के बारे में बता रहे हैं।
1: तो चलिए अब सिर्फ बातें नहीं करते हैं, कुछ सुन भी लेते हैं अच्छा सा।
0: चलिए,
2: बाकी रह गए दोस्ती यारी रद्द हो गई है, प्यार में दुनियादारी कैसी मुफ्त की चीज नगद हो गई है, छी छी यार की ये पहचान, दोस्ती में कैसा एहसान जब दोस्ती होती है तो।

का जब तक जोड़ सलामत साथ सलामत छोटी और बड़ी है तो क्या पांचों है तो हाथ सलामत एक एक के है पांच मुकद्दर तकलीफों से घबराना मत साझे जोड़ जवानी बचपन पांच से पांच मिले।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ आपकी सखी चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी।
0: तो भाई हम बात कर रहे थे दोस्ती की। देखो दीपा, हम दोनों भी बड़े अच्छे दोस्त हैं ना
1: और हमारी सखियां भी तो सारी दोस्त हैं
0: जी।
1: तभी तो ये लिख रही हैं कि दोस्ती बिना जग सूना होता है। जैसे सखी सहेली प्रोग्राम में सब सखियां दोस्त हैं। हर रोज एक घंटा हमें मिलता है, सखियों के सुख दुख की बातें करते हैं हम सब। सखियों को जीवन के अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन मिलता है और सखियां भी इस दोस्त से कमेंट करके बेझिझक बातें करती हैं। तो भाई यही तो होना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास जरिया यही है कि हम कमेंट करके एक दूसरे से अपने हर मन की हर बात का को हम साझा कर सकें।
0: बिल्कुल। और देखिए अगले संदेश में भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि दोस्ती अमूल्य होती है, जिसे धन से खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्ती के बिना जग सूना है। यदि जीवन में दोस्त ना हो तो दुनिया सूनी सूनी और बेरंग लगने लगती है। मित्र हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं और उदासी को दूर करते हैं। ये जीवन का सबसे सुंदर और अनमोल रिश्ता है। ये एक ऐसा बंधन है जहाँ बिना किसी स्वार्थ के ये दिलों को जोड़ता है। सच्चा मित्र हमारे सुख दुख का साथी होता है। जीवन में कठिनाइयाँ जब भी आती हैं तो दोस्त हमारा हौसला बनते हैं। दोस्ती में अपनापन, विश्वास और समझदारी होती है। एक अच्छा दोस्त हमें सही राह दिखाता है, गलतियों से बचने की सीख देता है। तो जहाँ इन्होंने लिखा ना कि दोस्ती अनोखा बंधन है, तो दोस्ती वो बंधन है जहाँ कोई बंधन नहीं होते।
1: सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और हमारा एक संदेश आया हमारे, ये तो श्रोता भाई हैं, ये कहते हैं जैसे मेरी ज़िंदगी में विविध भारती सखी सहेली एक सच्चे दोस्त के रूप में आया, वैसे ही महसूस होता है कि एक सच्चे और प्यारे दोस्त के बिना जग सूना है। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब अपनी हमें हमारी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन एक सच्चा मित्र बिना कहे मन की बात समझ जाता है। सखी सहेली ने सिर्फ साथ नहीं दिया बल्कि हर दिन अपनापन, मुस्कान और भावनाओं का एक सुंदर रिश्ता दिया है। ये कहते हैं सच कहूँ तो जैसे दोस्ती बिना जग सूना लगता है, वैसे ही सखी सहेली के बिना जीवन का एक हिस्सा अधूरा लगता है। तो क्या बात है, हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ये साथ यूं ही चलता रहे, ये इसी बात की हम कामना भी करते हैं।
0: और भी बता दें कि जो आने वाला महीना है यानी जून, 2 जून को सखी सहेली की वर्षगांठ है, तो आप अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए अपनी सहेली के लिए, इस दोस्त के लिए।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो अगला संदेश पढ़ते हैं। इसको हमारे श्रोता जो भी लिखने वाले हैं संदेश को, उन्होंने एक गीत की पंक्ति से शुरुआत की है कि दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा है और सूना है। दोस्त केवल साथ रहने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वे खुशियों को दुगना करने वाले, दुखों को आधा करने वाले हिस्सेदार होते हैं। उनके बिना हंसी, यादें, मुश्किल समय में डारस बंधाने वाले ये लोग होते हैं। सुख दुख बांटने के लिए दोस्त सबसे बड़ा सहारा होते हैं। दोस्तों के साथ बिताया हर पल जिंदगी की असली कमाई है और इसी दोस्ती के बिना जीवन में एक गहरा सूनापन आ सकता है। तो बिल्कुल आप दोस्त बनाइए। अगर आपको अकेले रहने की आदत है या आपको लोगों से मिलना जुलना कम पसंद है, तब तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप दोस्त बना रहे हैं तो लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको धोखा देने वाले दोस्त मिल सकते हैं।
1: और एक हमारा हमारे साथी ने संदेश दिया है कि रेडियो तो हमारा बचपन से साथी रहा है। एक समय था एक बार के लिए खाना भूल जाते थे पर सखी सहेली सुनना नहीं भूल पाते थे, पर आज व्यस्तता के चलते बस सखी सहेली सुन पाते हैं। परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ हम आपको सच्चा दोस्त मानते हैं। तो भाई हमारे लिए आप हमारे सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि श्रोताओं के बगैर, हमारी सखियों और सहेलियों के बगैर तो ये प्रोग्राम पूरा अधूरा है। इसका ये जो रिश्ता है, इसकी डोर अगर एक तरफ स्टूडियो है तो दूसरी तरफ आप सब हैं। आप ही सबसे इसकी सुंदरता है।
0: बिल्कुल। अगर सोचिए हम दोनों ही मिलकर सारी बातें करेंगे तो, और इनके कमेंट्स नहीं होंगे, तो प्रोग्राम कितना खाली खाली सा लगेगा ना।
1: बिल्कुल, इनके बिना तो सब वैसे ही सब कुछ सूना है।
0: हाँ, तो भाई चलिए सूनापन दूर करें, एक और संदेश पढ़ते हैं। दोस्ती की मिसाल देखना है तो हमारे विविध भारती के फेसबुक के मित्रों को देखिए, वहाँ हर रोज मिलते हैं और पर्सनल मुलाकात भी करते हैं।
1: क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही सुंदर बात है।
0: तो अब दोस्ती की बातें बहुत हुई, क्यों ना एक दोस्ती से भरा गीत सुन ले।
1: चलिए।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: हम भी ये अनुरोध करते हैं कि अगर आप मुंबई में रहते हैं तो सृजन भारती के इस अगले अंक में आप जरूर हिस्सा बनिए इसका। और अब हम बात करते हैं हमारे अगले विषय पर, जिस पर हमने बताया था कि भाई किश्तों में अगर आपको कोई सामान लेना है तो वो कितना सही है या कितना गलत है। क्योंकि किश्तों पर खरीदारी करना यानी कि कितना आसान ईएमआईज पर किसी चीज को ले लेना जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन गया है और ये दो धारी तलवार की तरह होता है ना दीपा?
2: बिल्कुल सही कहा। अगर समझदारी से इस्तेमाल किया गया तो ठीक, न किया जाए तो ये कर्ज के जाल में भी आपको फंसा सकता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि ये दो धारी तलवार है। अगर आसान है तो आपके लिए मुश्किल का सबब भी बन सकता है। और इस पर इतनी सारी बातें संदेश के रूप में हमें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं। तो इनका कहना है कि किश्तों पर खरीदारी कितनी सही है। भाई आजकल ईएमआई और यूपीआई का जमाना है और समूची दुनिया ही नहीं ये बल्कि हर कोई इसी तरह से खरीदारी करने में चाहता है, लेकिन कहीं से कोई भी एक भी गलत क्लिक हुआ तो फिर लेने के देने पड़ जाया करते हैं। इसीलिए इसके उपयोग के पक्ष में हम इसलिए भी नहीं हैं क्योंकि इससे पहले ऋण लेकर घी पीने की आदत बन जाती है और हम लोग उसके अधीन होकर अपने चैन सुकून को खोते रहते हैं और तनाव भरी जिंदगी जीते हैं, फलस्वरूप तनाव अलग से झेलते हैं। तो ये बात सही है, जब महीने का वो समय आता है किश्त चुकाने का तो वो एक तलवार की तरह आपके सर पर वो लटका रहता है कि किश्त देनी है किश्त देनी है, और उस चक्कर में कई बार आपका सुख चैन नींद खाना पीना सब कुछ हराम हो जाता है। इसीलिए कोई बहुत बड़ी चीज़ इसके लिए आपको बड़ी किश्त चुकानी पड़ रही है और आपको लगता है कि आपकी आमदनी से बाहर वो चीज़ें फिर जा रही हैं।
2: लेकिन चंचल ये बताओ, देखो महंगी वस्तुएं हैं जैसे कि घर हो गया, कार है या महंगे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, अगर उनको लेना हो तो एक साथ थोड़ी ले सकते हैं। कितना आसान हो जाता है किश्तों में चीज़ों को लेना।
1: लेकिन आपको अपनी आमदनी को देखते हुए अपनी किश्त बनानी होगी ना। आपने कहा घर लेना है तो घर इतनी बड़ी कहते हैं कि रकम वाली चीज़ होती है जिसे एक मुश्त लेना बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं है। तो आप ये देखिए कि आप ज़रूरी नहीं है आपको बहुत बड़ा बंगला बहुत बड़ा घर लेना है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप कितने सदस्य हैं घर में या आपकी आमदनी कितनी है इसको देखते समझते हुए आप अपने बजट में घर लीजिए और फिर जो किश्त बनानी है वो भी इतनी ही बनाइए। मान लीजिए अगर आप अभी आप एक किराए के घर में रहते हैं तो जितना किराया अभी आप दे रहे हैं उतना देने की क्योंकि आपको बरसों से आदत है तो उतनी किश्त आप आसानी से निकाल कर दे पाएंगे। लेकिन उससे दुगना रकम अगर आपके पास में आ गया देने के लिए तो कहीं ना कहीं वो मुश्किल का सबब बन जाएगा।
2: ये बात तो सही है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई ज़रूरी चीज़ है जैसे आजकल लैपटॉप है या ये कहें कि फ्रिज, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो इनको लेना कितना आसान हो जाता है। हम एक साथ नगद नहीं भी हो हमारे पास, अगर जैसे इन दिनों बहुत गर्मी चल रही है अब हमें लगता है कि नहीं भाई फ्रिज हो जाए एक छोटा ही ले लें, नगद नहीं है तो किश्त में तो हम ले ही पाते हैं ना।
1: मैंने फिर वही कहूँगी कि किश्त अगर आपको लेनी है तो बहुत सारी किश्तें जब आपके समय समय पर जाती हैं ना तो आप या तो उन्हें कहीं लिख कर रखें, अगर आप भूल जाते हैं उन किश्तों के बारे में लिखना। अब मान लीजिए हर हफ्ते आपकी कोई ना कोई किश्त भरने का समय है, आपने कार भी ले रखी है, आपने बड़ा टीवी भी लिया, लैपटॉप भी लिया और मोबाइल भी ले लिया कोई अच्छा महंगा वाला, तो किश्त अगर आप भूल गए तो जो वसूली के लिए जब उनका जो रवैया होता है वसूली करने वाली कंपनियों का वो आपके साथ बहुत सख्त हो सकता है और फिर आपको ही बुरा लगेगा कि अरे ये चीज़ हमारी वापस से मांगी जा रही है या इसके पीछे जो हमें जो भुगतान करना पड़ता है जुर्माना भी हो सकता है सजा भी हो सकती है। उन चीज़ों से अगर बचना है तो या तो समय पर किश्त देनी है, उतनी आमदनी आपको रखनी, या तो फिर किश्तों से ही बचना है।
2: बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना, लगता क्या है, अरे सिर्फ 2,000 या 3,000 की किश्त है, तो वो हम वो जो सिर्फ जो 2,000 या 3,000 दिख रहा है ना महीने का, सिर्फ उतना ही दिखता है, इसके पीछे जुड़ने वाला ब्याज या कहीं कोई ऐसी छिपे हुए कोई शुल्क हो जाते हैं ना, जैसे 0% के नाम पर अब कई बार हो जाते हैं कि फाइल चार्ज हो जाता है, प्रोसेसिंग फीस बाद में लग जाती है, या इंश्योरेंस के नाम पर भी कई बार वो कुछ एक अमाउंट, कुछ अतिरिक्त पैसा उसमें और जोड़ दिया जाता है। बाद में हमें समझ में आता है कि नहीं भाई, ये 2 या 3 हजार की नहीं, ये तो जुड़ जुड़ के 4 या 5 हजार तक पे चली।
1: और वो जो 20,000 की चीज आपको खरीदनी थी, वो आपको 20 की जगह हो सकता है कि 30,000 या 35,000 तक की वो पड़ जाए।
2: बिल्कुल,
1: तो इसीलिए आप किश्तों में खरीदने का जो एक कहते ना कि वो लुभावना, जो एक प्रलोभन होता है, उससे बचने का प्रयास कीजिए। और इसके बारे में हमारे साथी लिखते हैं कि किश्तों में खरीदारी अच्छी है, चूंकि आपने आपके पास ज्यादा रकम चुकाने की स्थिति नहीं है, तो अक्सर लोग अब किश्तों में खरीदने को अच्छा महसूस करते हैं। हालांकि ये नकद खरीदने से महंगा पड़ता है, लेकिन इस चलन के लिए सबके पास फ्लैट, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आसानी से उपलब्ध होते जा रहे हैं। मासिक भुगतान का ये आइडिया ज्यादा लोगों को पसंद आता है। हाँ, आप हर महीने ईएमआई दे सकते हैं, तो वही चीजें आप खरीदें, क्योंकि 2 या 3 किश्तों की लेट लतीफी फिर ब्याज बढ़ने की महंगी पड़ जाती है, और लोग अन्य कामों में उलझ जाते हैं। किश्त बाकी होने पर कंपनी वाले आते हैं और गाड़ी उठाकर ले जाते हैं, और पैसा भी डूब जाता है।
2: बिल्कुल, ये सही कहा। देखिए, इन्होंने तो हमें बताया कि किश्तों के फायदे क्या हैं, नुकसान भी क्या है, लेकिन हमारे एक और साथी वो कहते हैं भाई किश्तों से खरीदारी के कई नुकसान हैं। जैसे वो कहते हैं कि फिजूल खर्च को बढ़ावा मिल जाएगा, छिपे हुए शुल्क जैसे अभी हमने बात करी वो भी हो सकती है, जीएसटी कहाँ लग सकता है हमें पता ही नहीं चलता, फिर भविष्य की जो एक आय है उस पर भी बोझ आता है, यानी कि हर महीने की कमाई का एक हिस्सा पहले से ही आप ब्लॉक कर देते, क्योंकि हमें पता है ना कि ये इतनी किश्त तो हमें जानी ही है। फिर कर्ज का जो एक जाल है, एक साथ कई सारे ईएमआई चालू हो जाएंगे, फिर देखिए आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, डिफॉल्ट का भी खतरा हो जाता है कई बार, कि किस्त बाउंस होने पर भारी पेनल्टी लगती है चंचल, और फिर क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है।
1: इसी तरह से हमारे एक साथी ने लिखा है कि किश्तों पर खरीदारी करना सही है जब आपको बहुत ज्यादा वैसा लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि इससे आपकी आदतें बिगड़ जाएंगी और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। इसलिए किश्तों पर खरीदारी तभी करें जब क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करनी हो, या कभी कभार ही आप ऐसा करें तो इससे आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी, और मेरे हिसाब से तो ये खरीदारी ना ही करें तो अच्छा है, ऐसा हमारे जो साथी हैं जिन्होंने संदेश लिखा है उनका कहना है।
2: अच्छा, एक हमारे साथी ने कहा है कि 10% का नियम आपको, अगर आप ईएमआई के पक्ष में है तो 10% का नियम अपनाना चाहिए। वो क्या है कि आप सभी ईएमआई का कुल योग आपकी मासिक इनकम के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब जितना आपका है इनकम आपकी, उसका 10% ही सिर्फ ईएमआई में जाना चाहिए। सामान सस्ता लगने के कारण कई बार क्या होता है कि हम गैर जरूरी चीजें भी खरीद लेते हैं, तो इस नियम को अगर आप पालन करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे, तो शायद हम बेफिजूल की चीजों से खरीदने से बच सकते हैं।
1: बहुत सही बात कही, लेकिन हम गाना सुनने से बिल्कुल नहीं बचेंगे। सुनवा दें?
2: बिल्कुल सुनवाइए।

0: देखो भाई, ये जो गाने हैं ना, ये कई बार मन को बड़ी शीतलता देते हैं, लेकिन वातावरण में जब हम बाहर निकलते हैं देखते हैं गर्मी बहुत है।
1: सही
0: और
1: बात,
0: ऐसी गर्मी जो है ना, इसमें पसीने छूट जाते हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही कि अब कभी कभी ऐसा होता है हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है भाई कब अपने स्टॉप पर आएंगे और वहाँ उतरेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है कि सामने वाला भी शर्मिंदा तो हो रहा होता है, लेकिन
0: जी
1: बाकी सब लोगों के लिए उतनी देर बैठना एक दुभर और कठिन काम हो जाता है।
0: बिल्कुल दीपा, और शरीर से निकलने वाली जो तीखी गंध है, ये शरीर की गंध है, आम भाषा में लोग पसीने की बदबू के रूप में इसे जानते हैं। और बहुत से लोग शरीर की दुर्गंध की समस्या से प्रभावित भी होते हैं, और लोग अधिकतर यही सोचते हैं कि शरीर से बदबू या दुर्गंध पसीना उत्पन्न होने के कारण होती है। हालांकि इस बात में आधी सच्चाई तो है। और हमारे शरीर से बदबू आने का जो कारण है, शरीर की गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया है ना, उनकी मौजूदगी होती है।
1: बिल्कुल, और हमारे शरीर की त्वचा में रहने वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो पसीने में जो प्रोटीन और फैट होता है ना उसे खाते हैं। शरीर के बाल वाले और नम हिस्से में लाखों जीव और बैक्टीरिया होते हैं जो पसीने के यौगिकों के बदबूदार को यौगिक उनको यौगिकों को बदबूदार गंध में बदल देते हैं।
0: जी।
1: शरीर से दुर्गंध कई कारणों से भी आ सकती है, जैसे खराब खान पान, बढ़ती उम्र, अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं, और खराब साफ सफाई, ये भी सब शामिल है। और शरीर की दुर्गंध के आसान उपाय और आसान घरेलू नुस्खों से हम इसे दूर भी कर सकते हैं।
0: तो उसके लिए सबसे अच्छा तो यही है कि जो सल्फर युक्त भोजन होता है वो आप थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि उससे भी पसीने में दुर्गंध आती है। जैसे प्याज लहसुन ज़्यादा सेवन अगर आप करते हैं, या मांसाहार का सेवन अगर ज़्यादा करते हैं, तो उससे भी पसीने में दुर्गंध उत्पन्न होती है। इसके अलावा आप ये हो सकता है कि शरीर को हमेशा स्वच्छ रखिए, गर्मियों में नियमित रूप से 2 बार स्नान करिए, त्वचा पर पसीने को ज़्यादा जमा ना होने दीजिए, और सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले ढाले आरामदायक कपड़े पहने, शरीर के जो अंतरंग हिस्से हैं उनकी साफ सफाई अच्छे तरह से रखिए, कॉफ़ी या चाय इनका सेवन थोड़ा कम करिए।

0: या टमाटर को मैश करके उसका रस निकाल लें, सफेद जिस सिरके के रस को आपको अपने जहाँ जो प्रभावी हिस्सा है जहाँ दुर्गंध ज़्यादा आती है पसीने में वहाँ रगड़ कर धो लेना है, टमाटर है। इसी तरह से फिटकरी का जो पानी है वो भी पसीने की दुर्गंध को दूर करता है। नीम के पत्ते हैं उनसे आप स्नान कर सकते हैं, नीम के पत्तों को उबालकर नींबू का रस निचोड़कर इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर शलजम के जो टुकड़े हैं उनको कुचलकर उसके रस से भी दुर्गंध को दूर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखा है कि टी ट्री ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पानी में कुछ बूंदे डाल के नहाने से शरीर की दुर्गंध दूर होती है। साथ में उन्होंने कहा है नींबू का रस भी आप नहाने के पानी में थोड़ा सा रस मिला दीजिए और नींबू को आप रगड़ भी सकते हैं शरीर पे आप अंडर आर्म्स में, ताकि जो जितने भी एसिडिक बैक्टीरिया मौजूद हैं वो सब खत्म हो जाएंगे।
0: नींबू को इस्तेमाल करने के बाद उसका बचा हुआ छिलका है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। और अब चलते चलते एक गाना सुन लें।
1: चलिए।

0: कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं सखी सहेलियों से इजाजत। सभी को चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी का
0: नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी। और दोस्तों, हर हफ्ते हमें रहता है इंतजार एक ऐसी शख्सियत से मिलने का इस कार्यक्रम में, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर उन्होंने अपना जीवन सेना के लिए समर्पित कर दिया और साथ ही साथ हम सबके लिए अनुभवों की एक मिसाल बन गए। और इस कड़ी में आज हमारे साथ हमारी अतिथि हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे, जिन्होंने लगभग 1.5 दशक तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दी है। रिटायरमेंट के बाद वे कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रही हैं, साथ ही साइबर सुरक्षा इंफोसेक से जुड़े कार्यों में भी आप योगदान दे रही हैं। प्रतीक्षा ठाकरे का नाम विशेष रूप से उन महिला सैन्य अधिकारियों में लिया जाता है जिन्होंने भारतीय वायुसेना में नेतृत्व, अनुशासन और तकनीकी दक्षता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपकी विशिष्टता और विशेषज्ञता रक्षा सेवाओं, नेतृत्व, सुरक्षा और तकनीकी प्रबंधन में रही है। हम आपका स्वागत करते हैं प्रतीक्षा जी, और संदेश टू सोल्जर्स में आज आपने समय निकालकर जो यहाँ शिरकत की इस कार्यक्रम में, उसके लिए आपके हृदय से आभारी हैं।
1: धन्यवाद विनीता जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का हिस्सा बनना वास्तव में मेरे लिए सम्मान और गर्व की बात है, जहां मुझे पूरे भारत के सैनिकों तक अपना संदेश पहुंचाने का अवसर मिल रहा है।
0: जी शुक्रिया, इसलिए भी कि आपने आकाशवाणी में ना केवल आकर हम लोगों को अनुभवों का खजाना सौंपा है, बल्कि इसलिए भी कि आप इसके लिए हमारे ही आभार जता रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही आपसे कहना चाहती हूँ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, आप इतनी यंग हैं, और ऐसे में जब हम आपके साथ रिटायर्ड शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा समझ नहीं आता, क्योंकि रिटायर्ड तो आमतौर पे व्यक्ति 60 साल की उम्र के बाद होता है, तो आप इतनी छोटी सी उम्र में रिटायर्ड कैसे हैं?
1: बात आपकी

0: भी है क्योंकि मैं भी रिटायर्ड ये शब्द थोड़े से बुजुर्ग लोगों के साथ एसोसिएट करती थी, बट क्योंकि मैंने अपने लाइफ के प्राइम 14 साल एयरफोर्स को समर्पित किए हैं और उसके बाद मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ, इसी वजह से वो रिटायर्ड शब्द है और वो मेरे लिए है पक्का, और डेफिनेटली इट इज नॉट फॉर द रैंक बट इट इज फॉर मी फ्रॉम द एयरफोर्स.
1: That's so so beautiful. अच्छा एक बात बताएं, आपको कैसे लगा कि आपको एयरफोर्स में आना है, कौन था इसके पीछे या किससे आपको प्रेरणा मिली?
0: विनीता जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, बट ये ऐसी एक चीज है जो मुझे विरासत में मिली है
1: जी.
0: क्योंकि अगर मैं शुरुआत करूं तो मेरे दादाजी स्वतंत्र सेनानी थे जो भारत के आजादी के लिए लड़े. उसके बाद परंपरा बढ़ाई गई मेरे फादर ने जो इंडियन आर्मी में भर्ती हुए और 25 साल की सेवा जो उन्होंने देश के लिए की, उसके बाद वो रिटायर्ड हुए एज कर्नल. और परिवार की मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जिसने सिर्फ यूनिफॉर्म वर्दी पहनने का सपना ही नहीं देखा बल्कि उसको जीने का सपना भी देखा.
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. इसीलिए दोस्तों मैंने आप सभी से ये बात कही कि आज की हमारी अतिथि अनुभवों का खजाना है और इतना कुछ है इनके पास हमें बताने के लिए, क्योंकि आपके परिवार में प्रारंभ से ही फोर्सेस के लिए बहुत रुझान रहा है ना. तो भारतीय वायुसेना में यानी इंडियन एयरफोर्स में जब आप आई तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था?
0: अच्छा विनीता जी मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगी
1: जी,
0: मेरे बचपन की तरफ जहाँ पे मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का था. जैसे उस टाइम पे जब मैं छोटी थी उस टाइम मेजरली दो प्रोफेशन ज्यादा नामचीन हुआ करते थे, एक था डॉक्टर दूसरा था इंजीनियर, की ये दो प्रोफेशन है तो आपने जिंदगी में कुछ पा लिया है नहीं तो नहीं. जो मैं अभी सोचती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, और भी बहुत अच्छे प्रोफेशन हैं. बट हालांकि उस टाइम मेरा सपना था डॉक्टर बनने का. और जैसे मैंने आपको बताया मैंने घर पे एक ही प्रोफेशन देखा था, वो था देश सेवा का
1: जी.
0: तो तब मैंने ठाना कि अच्छा डॉक्टर बनूंगी तो डिफेंस फोर्सेस में ही डॉक्टर बनूंगी ताकि मेरे दो सपने पूरे हो सके, एक तो देश की सेवा और देश के नागरिकों की सेवा. तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी, पढ़ाई करती चली गई, अच्छा किया. बायो में मेरा काफी रुझान था, काफी इंटरेस्ट था, तो बायो लिया. जब मैंने प्री मेडिकल एग्जाम दिया तब मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए कि मैं MBBS कर पाऊं, हालांकि इतने नंबर थे कि मुझे डेंटल में एडमिशन मिल सकता था, लेकिन उस टाइम ऐसा लगा कि नहीं करना है तो MBBS ही करना है. तो जब मैं कॉलेज में एंटर होने वाली थी उस टाइम मेरा 12th होने के बाद, मेरे फादर तब तक रिटायर्ड हो चुके थे और वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे.
1: अच्छा.
0: हालांकि उन्होंने और मेरी मम्मी ने कभी भी मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला कि तुमने ये करना है या वो प्रोफेशन चुनना है, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे फादर के मन में था कि मेरी बेटी भी इंजीनियर बने उन्हीं की तरह. तो उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूं, तो उन्होंने बोला मेडिकल की तरफ अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंजीनियरिंग कर लो, ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, वहां से भी तुम कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लोगी. इतना विश्वास उनको मेरे ऊपर था. सो वहां से शुरुआत हुई कि ठीक है, इंजीनियरिंग की एग्जाम दी, मुझे एडमिशन मिला नागपुर यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिला, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच उस टाइम की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मुझे एडमिशन ली, एंड फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इन इंजीनियरिंग. तब तक लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता था कि आधा सपना तो मेरा रह गया है जो है डॉक्टर बनने का. लेकिन जो बचा आधा था शायद वो भी कहीं छूटता नजर आ रहा था मुझे. लेकिन एक और बात बताना चाहूंगी विनीता जी कि ये हम जो कहते हैं कि हमने सपना छोड़ दिया, वो बात नहीं होती, सपना हमें नहीं छोड़ता, ये बात होती है.
1: सो ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी बात कही है आपने.
0: सो कहीं ना कहीं वो सपना मुझे ही चेस कर रहा था कि नहीं, तुम अगर डॉक्टर नहीं बनी हो तो डिफेंस फोर्सेस में तो पक्का जाओगी. सो दैट वॉज द पॉइंट जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहां पे एयरफोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर में रिक्रूटमेंट के लिए आए. मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे थे तो मैं भी गई उनके साथ कि चलो जाते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर तक हमारा प्लेसमेंट हो चुका था वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनीज में. सो लाइफ तो सेट थी. एज अ यंग पर्सन मुझे लगता था लाइफ में और क्या चाहिए, आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आपकी नौकरी लग चुकी है, पैसे कमाना है एंड लाइफ में मजे ही मजे हैं, ये होता था उस टाइम. एंड अभी भी काफी यंग लोगों का दिमाग में माइंडसेट ये होता है. बट स्टिल जैसे मैंने आपको बताया कि वो सपना था मेरे मन में कि वर्दी तो पहननी है, यूनिफॉर्म वॉज माई ड्रीम. सो वैसे करके देन रिक्रूटमेंट के लिए हम गए, एयरफोर्स ने एग्जाम्स कंडक्ट की. उस टाइम फास्ट ट्रैक एग्जाम एक होता था, उसमें एग्जाम हुई, क्लियर किया. एंड द नेक्स्ट थिंग जो मेरे ध्यान में है, मेरे जहन में है कि हम मैसूर पहुंचे, मैं और मेरे फ्रेंड्स, एसएसबी देने के लिए. और आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, एसएसबी के जो वो 5 दिन होते हैं, मतलब वो लाइफ के आर द बेस्ट डेज, दैट इज द गोल्डन पीरियड. और एक संदेश जो मैं अभी देना चाहूंगी देश के सब यंग बच्चों को कि रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन यू शुड एंजॉय, यू शुड एक्सपीरियंस दोज 5 days ऑफ एसएसबी. वो आपको आपके खुद के बारे में इतना सिखाता है जो और कहीं आपको सीखने नहीं मिलेगा.
1: अमेजिंग. और ना सिर्फ सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बल्कि ये आपका वो सपना पूरा करता है कि आपके तन पर यूनिफॉर्म हो, मन में जज्बा हो और हमेशा आगे बढ़ने के लिए कदम उठें.
0: जी बिल्कुल.
1: और साथ के साथ आपके आपके कदम तो जमीन पर नहीं, आपके कदम तो आसमान के लिए है ना. तो आपने डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का सपना ही नहीं देखा, बल्कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन भी की. इसके आगे की यात्रा की बात आपसे बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके इस आसमानी यात्रा की शुरुआत के लिए ये गाना विशेष रूप से आपके लिए समर्पित है.

0: कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और प्रतीक्षा जी, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस गाने के बाद पर्टिकुलरली, कि क्या कभी कोई ऐसा है जिसने ये गाना आपको डेडिकेट किया है या कोई आपके लिए ये गाना गाता है?
1: जी हाँ बिल्कुल, ये है मेरे हस्बैंड जो खुद एयरफोर्स में है।
0: ओह नाइस, अच्छा अच्छा, वो भी एयरफोर्स में?
1: जी हाँ, वो अभी सर्विंग है, विंग कमांडर अभिषेक लूथरा मेरे हस्बैंड है। एंड बिल्कुल ये गाना वो कभी हमारे लिए गाते हैं, कभी हम उनके लिए गाते हैं।
0: बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बात बताएं, आप एयरफोर्स ने आपके पर्सनालिटी को कैसे बदल दिया, क्या उसका क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव तो नहीं ही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आपकी पर्सनालिटी पे आया? क्योंकि आपने अभी तक जो कुछ भी अपने बारे में बताया प्रतीक्षा जी, मुझे लगता है कि आप तो पहले से ही काफी फोकस्ड और डेडिकेटेड रही, तो एयरफोर्स ने भी कुछ आप में बदला?
1: बिल्कुल, लेकिन एयरफोर्स जाने से पहले जो एक एडवाइस मेरे फादर ने मुझे दिया था, मतलब जस्ट मैं निकल रही थी एयरफोर्स अकेडमी डुंडिगल के लिए, और एक चीज जो आखिरी में उन्होंने मुझे जाते वक्त कही थी कि बेटा ये वर्दी है, ये कोई कपड़ा नहीं है, इसकी इज्जत करना, बिकॉज ये तुम्हें सम्मान और एक पहचान देगी।
0: वाह।
1: और उस लास्ट थॉट्स, लास्ट सेंटेंसेस के बाद जब मैं एयरफोर्स अकेडमी पहुंची, सो एक वो अलग दुनिया थी। जैसे मैंने आपको बताया मेरे फादर आर्मी में थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बताया कि ट्रेनिंग में होता क्या है। और जब मैंने उनको वापस जाके पूछा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला वो एक्सपीरियंस तुम्हारा खुद का था और मैं चाहता था कि वो एक्सपीरियंस तुम लो और उसको अपनी तरीके से ढालो, ना कि कोई पहले से दिमाग में कोई चीज लेके चलना, वो ठीक बात नहीं है।
0: सो अमेजिंग। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपने ये जो बात कही है ना, ये उन सभी फादर्स को सुनना चाहिए जो अपने बच्चों के स्कूल बैग्स अपने कंधों में रखकर उनको बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए आते हैं। दे शुड लर्न कि प्रतीक्षा जी के फादर ने कहा था कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग खुद अपनी नजरों से अपने एक्सपीरियंस के साथ समझनी है, वही तुम्हारे काम आएगी। ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत बात। अच्छा, अब ट्रेनिंग की बात आपने कही है, तो ट्रेनिंग के दौरान सबसे कठिन चुनौती, सबसे मुश्किल घड़ी आपके लिए कौन सी रही?
1: वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एज एक्स फौजी अगर मैं ये बोलूं तो कुछ लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम जो सबसे मुश्किल चीज थी मेरे लिए थी, वो थी रनिंग।
0: रनिंग?
1: जी हाँ। ऑल्दो मैं स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलती थी, मैं बास्केटबॉल खेलती थी, लेकिन जो अकेडमी में जिस लेवल की रनिंग होती है, क्रॉस कंट्री होती है, उससे मैं डर जाती थी शुरुआत में। बहरहाल ट्रेनिंग होती ही इसके लिए कि आपको पहले ट्रेनिंग में मेंटली टफ बनाया जाता है, उसके बाद आप फिजिकली टफ तो बन ही जाते हो। तो वो एक शुरुआत की चुनौती थी जो मैंने कर ली थी, वो पार कर ली थी मैंने। लेकिन हाँ जी, अगर आप पूछेंगे तो एक रनिंग एक मेरा बहुत बड़ा खौफ था।
0: इसीलिए आपने जमीन छोड़कर आसमान चुना।
1: हो सकता है।
0: अच्छा एक बात और बताइए, विंग कमांडर बनने की जो आपकी जर्नी थी, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन्स रहे आपके लिए?
1: जी, विंग कमांडर की जर्नी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, बिल्कुल भी आसान नहीं है। डिफेंस फोर्सेस में जाना ही आसान नहीं होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये एक और चीज बताना देश के सैनिकों को और जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कि डिफेंस केवल एक नौकरी नहीं है, ये एक जीवन शैली है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो आपको पूरी तरह अपने में ढालनी पड़ती है। बिल्कुल, आपको आपकी पास्ट लाइफ जो आप एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले जो चल रही थी, जो आपको लाइफ, आपको पूरी तरह छोड़नी पड़ती है। क्योंकि एक वे ऑफ लाइफ का कहने का मतलब ही ये है कि एक डिसिप्लिन लाना, डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट जो आपको आपके काम की तरफ देनी पड़ती है। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं उस जर्नी में टू बिकम अ विंग कमांडर, स्टार्टिंग विद पोस्टिंग्स, आपको अलग अलग जगह पोस्टिंग जाना होता है, आपके फ्रेंड्स छूट जाते हैं और आपको एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करना होता है, आपको बंदूक चलानी होती है, आपको फिजिकल फिट रहना पड़ता है, तो सारी चीजें आपके लाइफ में एक साथ हो रही होती है। सो दैट इज, दैट कम्स फ्रॉम योर मेंटल फिटनेस एज वेल एज फिजिकल फिटनेस। तो ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में ही आपको तैयार किया जाता है, ताकि आगे के लाइफ में आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें।
0: अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, हम डिफेंस फोर्स

0: फोर्सेस की बात कर रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस में डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है आपकी नजर में क्या है? वैसे तो मुझे लगता है कि हमारी सबकी जिंदगी में, चाहे वो फोर्सेस में हो या सिविलियंस हो, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन तो सबकी लाइफ में होना ही चाहिए। लेकिन जब हम फोर्सेस की बात करते हैं तब हम इसे बहुत हाईलाइटेड रूप में देखते हैं, तो एज पर यू इसकी क्या इंपॉर्टेंस है?
1: जी देखिए, डिसिप्लिन, आपने जैसा बोला कि डिसिप्लिन हर एक की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट डिसिप्लिन आप, मुझे नहीं लगता आप कभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। एंड सक्सेस का पैरामीटर हर एक के लाइफ का अलग होता है। सो डिसिप्लिन आर्म फोर्सेस में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए आर्म फोर्सेस बना ही इसलिए ताकि वॉर टाइम में हम काम कर सके और देश को प्रोटेक्ट कर सके। सो उसके लिए पहला स्टेप ही, पहला कदम ही डिसिप्लिन है। अगर आप अपने काम में, आप अपने लाइफ में हर एक चीज को लेके डिसिप्लिन है तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी आएगा, और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सेकंड सेकंड का भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप वॉर टाइम सिनेरियो देखेंगे तो हर एक सेकंड का बहुत बहुत मेजर इंपॉर्टेंस होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन, ऑन ग्राउंड, इन एयर, फ्लाइंग, एवरीथिंग, हर एक जगह पे टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सो इसीलिए जैसे आपने कहा बहुत हाईलाइट किया जाता है क्योंकि डिफेंस फोर्सेस चलती ही इन दो चक्कों पे है, वो है डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट। कोई भी एक चीज अगर खराब हुई तो आपकी गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाएगी।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, आप उन खास लोगों में से हैं, या कहना चाहिए कि उन महिला सैन्य अधिकारियों में से हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में लीडरशिप, डिसिप्लिन और टेक्निकल एक्सीलेंस का एग्जाम्पल दिया है। तो इस नजरिए से मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपने लीडरशिप का सबसे बड़ा पार्ट खुद क्या सीखा है, मतलब आपकी नजर में लीडरशिप की कौन सा ऐसा लेसन है जिसने आपकी पर्सनैलिटी को वो बनाया है जो आज आप हैं और बड़े फक्र से सब आपका नाम लेते हैं।
1: जी, लीडरशिप में मैं तीन चीजें आपको बताना चाहूंगी। एक है पेशेंस एंड पेशेंटली लिसनिंग, खुद धैर्य रखना और धैर्य के साथ सामने वाले की बात सुनना, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात आती है ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल। आप अपनी टीम को अगर आप बोल रहे कुछ करने के लिए, पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे इंटेग्रिटी होनी चाहिए तो आपको इंटेग्रिटी दिखानी होगी, आपको एथिकली एक्ट करना पड़ेगा, वो होता है लीड बाय एग्जांपल। और तीसरी चीज है आपकी टीम। आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, तो आपकी टीम का ख्याल रखना ये आपकी जिम्मेदारी होती है। दैट इज व्हाट इज लीडरशिप फॉर मी।
0: अमेजिंग, इतनी खूबसूरत डेफिनेशन आपने लीडरशिप की दी है। तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी लीडर ना सिर्फ डिफेंस फोर्सेस में या इंडियन एयरफोर्स में रही हैं, बल्कि अब जो आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं, आपने वहां भी लीडरशिप की एक मिसाल कायम की होगी, मैं ऐसा मान के चलती हूँ। तो ये तो खैर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई आपने, ये कहकर कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की क्या इम्पोर्टेंस रही है। बट अदरवाइज अगर आपसे ये कहा जाए कि डिफेंस की फील्ड में महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखती हैं, ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं कि ना सिर्फ एक महिला होने का गौरव आप रखती हैं बल्कि एक बेहतरीन ऑफिसर के रूप में आप जानी जाती हैं। आप रिटायर्ड हुई हैं लेकिन आज भी लोग आपका नाम बहुत सम्मान से लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की क्या भूमिका है इस फील्ड में, रक्षा सेवाओं में खासकर?
1: जी देखिए, महिला या मर्द, मुझे लगता है दोनों में कोई फर्क नहीं है। फॉर दैट मैटर इवन डिफेंस फोर्सेस में कोई जेंडर बायस नहीं है जी, क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर मैं आपको मेरी ट्रेनिंग के डेज में लेके जाऊं तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक महिला होके मैंने नहीं की है, या किसी और मेल ऑफिसर ने हमारे साथ जो थे ट्रेनिंग में उन्होंने ज्यादा की है या हमने कम की है। तो अगर ट्रेनिंग में भेदभाव नहीं है तो आगे भी कोई भेदभाव नहीं होता है। सो एज ए वुमन अगर आप मुझे पूछे तो बहुत जरूरी है कि आप आपके मेल काउंटर पार्ट्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चले, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो बंधन होता है वो हमारे दिमाग में होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। वो जो एक सेल्फ डाउट होता है वो हमारे अंदर होता है ना कि बाहर। बाहर सबको दुनिया एक समान देख रही है और स्पेशली डिफेंस फोर्सेस सबको एक समान ही देख रही है. तो एज अ वुमन मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि आपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए, आप उतनी ही केपेबल हो जितना एक मेल ऑफिसर होते हैं.
0: जी बेहतरीन. मुझे लगता है कि कोई जेंडर बायस एटलीस्ट डिफेंस फोर्सेस में नहीं है, ये बात आपके इस स्टेटमेंट ने तो साबित कर ही दी है. तो अगर किसी के मन में ये वहम हो कि औरत है ये कैसे कर पाएगी, या महिलाएं कैसे इस फील्ड में जा सकती हैं, या आर्मी नेवी एयरफोर्स ये औरतों के लिए नहीं है, उन सब की बात का एक बहुत ही करारा जवाब आपने अपने इस स्टेटमेंट के द्वारा दिया है. हैट्स ऑफ टू यू, आई रियली गिव यू अप्लॉज फॉर दिस आंसर. और मुझे लगता है कि जिस तरह आपने इंडियन एयरफोर्स को अपनी भूमिका से बहुत गौरवान्वित किया है, तो ये बादलों का गाना तो आपके लिए बनता ही है.

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता बेदी। मैं बहुत सारी बातें कर रही हूं प्रतीक्षा जी से, बहुत कुछ अच्छा जानने को भी मिल रहा है और काफी कुछ आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो एक बात जो मैं आप सबकी तरफ से प्रतीक्षा जी से पूछना चाहती हूँ वो ये है कि आपके लिए अब तक अगर पूछा जाए तो आपकी जिंदगी का सबसे गौरव भरा पल कौन सा था, आपका प्राउडेस्ट मोमेंट ऐसा कौन सा था जिस पर आपको लगे कि ये वो पल है जो मैं सपना देख रही थी जिसका।
1: विनीता जी, वैसे तो काफी है। पहला तो था और अभी भी है, जो जिस दिन मैंने यूनिफॉर्म पहली बार पहनी वो पक्का मेरा एक प्राउडेस्ट मोमेंट था। बट उसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि हर सैनिक के जीवन में एक ऐसा पल होता है जो सिर्फ याद नहीं रहता लेकिन उनके रूह में बस जाता है। और मेरे जीवन में एक ऐसा पल आया था 26 जनवरी 2015 में। 26 जनवरी 2015 में जो आरडी परेड हुई थी,
0: रिपब्लिक डे परेड,
1: हां जी, उसमें आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स का इंडिविजुअल ऑल वुमेन कंटिंजेंट बना था। और मैं उस कंटिंजेंट का पार्ट थी एयरफोर्स की तरफ से।
0: ओह, वंडरफुल।
1: अब आप सोचिए, एक लड़की जिसका बचपन का सपना था यूनिफॉर्म पहनना, देश सेवा करना, अब वो देश के सबसे बड़े मंच पे खड़ी थी, वो था राजपथ। और पहले तो उसका सिलेक्शन हुआ, पहले तो 2 महीने की उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर, क्योंकि जनवरी एंड में होता है, 26 जनवरी को होता है पूरा परेड। तो पहले तो जैसे मैंने आपको बताया वो मेंटल टफनेस से स्टार्ट होती है, फिर फिजिकल टफनेस पे जाती है, बिकॉज वो आसान नहीं होता है। वो परेड होती है लगभग 14 किलोमीटर लंबी परेड, जो आपको पूरे कंटिंजेंट के साथ ताल में ताल मिला के रिदम में आपको मार्च करते हुए जाना होता है
0: पूरे 14 किलोमीटर।
1: बिल्कुल। तो वो सिर्फ एक मार्च नहीं होती, वो एक गौरव होता है और एक अनुशासन होता है कि आप आपकी पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चले। और वो भारत की एक शक्ति का प्रदर्शन होता है पूरे विश्व के सामने।
0: ट्रू।
1: सो जब हम राजपथ पे चले तब मार्च किया कंटिंजेंट के साथ, और फिर वो पल आया जहां हमने भारत के सुप्रीम कमांडर जो राष्ट्रपति थे उस समय के, श्री प्रणब मुखर्जी जी, और उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी थे श्री नरेंद्र मोदी जी, और भारत के इतिहास में पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में एज चीफ गेस्ट फॉर दैट ईयर, मिस्टर बराक ओबामा। सो एक वो जो सलामी थी
0: जी,
1: वो सिर्फ हमारी ट्रेनिंग नहीं थी, वो एक हर लड़की की मेहनत थी, हर महिला का सपना था, और उसके साथ हमको पता था पूरे देश का विश्वास है हमारे साथ। बट आज भी मैं उस पल को याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि वो एक सिर्फ पल नहीं था बट वो एक हर महिला, हर लड़की, इस देश की हर लड़की का एक वो सपना था कि उस राजपथ पे मैं चलूं। क्योंकि उस दिन मैंने एक और बात सीखी थी कि सीमाएं बाहर नहीं होती, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारे दिमाग में होती है। और जब आप वर्दी पहनते हैं तो आप खुद को प्रूव नहीं करते लेकिन आप आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं। तो मुझे लगा वो उस तरफ हमने एक छोटा सा योगदान दिया था।
0: कितनी सुंदर बात आपने कही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक मिसाल बनते हैं, आप उनके लिए एक रास्ता तैयार करते हैं जिस पर चलकर वो आपसे भी आगे निकल पाएं, आपके सपनों को और अधिक बुलंदियों पे पहुंचा सकें। बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत सुंदर विचार हैं आपके। प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, ये जब आपने अपना अनुभव बताया रिपब्लिक डे परेड पर, तो उस वक्त जब आप राजपथ पर थी, आपको अपने बचपन के उस सपने को पूरा होते देखने की खुशी तो होगी ही, साथ में ये भी फीलिंग थी कि आपने अपने पापा को प्राउड किया है आज।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं फिर से उस चीज पे जाना चाहूंगी जहां मैंने बोला कि आप सपना छोड़ सकते हो लेकिन सपना आपको नहीं छोड़ता है। क्योंकि एक और चीज मैं बताती हूँ आपको, जब मैं स्कूल में थी तब मैं एनसीसी में थी और तब भी मुझे मौका मिला था रिपब्लिक डे परेड पे जाने का। लेकिन तब दिमाग में था कि मेरी स्टडीज मिस हो जाएंगी, मेरी पढ़ाई

0: मिस हो जाएगी, क्योंकि तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी. तब मैंने दिल पे पत्थर रख के अपनी मैम को बोला था कि मैम मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी. तो वो सपना मेरा शायद अधूरा रह गया था जो एयरफोर्स ने पूरा किया है.
1: हाउ स्वीट, कितनी प्यारी बात है ये कि आपने बचपन के सपने को बड़े होकर जिया, और ना सिर्फ जिया बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बना दिया. बहुत ही सुंदर. अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात बताइए, आप तो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा रही हैं, तो बहुत थ्रिल माना जाता है इस डिफेंस फोर्स को, तो आपका भी कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा जो आज आप हमारे साथ बांटना चाहेंगी?
0: जी बिल्कुल, और थ्रिलिंग तो डेफिनेटली है. एयरफोर्स इज फुल ऑफ थ्रिल, और उस थ्रिल में मैंने एक जो काम किया था वो था पैरा जंपिंग का. पैरा जंपिंग एक ऐसा अनुभव रहा है मेरी लाइफ में जिसने मुझे बाहर से तो बदला ही है, जैसे एयरफोर्स ने मुझे बाहर से बदला है, लेकिन पैरा जंपिंग ने मुझे अंदर से बदल दिया.
1: क्या बात है.
0: उसका अनुभव ऐसा रहा कि Mi-17 हेलीकॉप्टर से आपको 5 जंप्स करनी होती है, तब आप ट्रेन्ड पैरा जंपर बनते हैं.
1: और ये जो 5 जंप करनी होती हैं, ये किसी टाइम पीरियड में करनी होती है?
0: जी ये 2-3 दिन के पीरियड में करनी होती है, क्योंकि मॉर्निंग जंप्स होती है, आपकी नाइट जंप्स होती है, सो वो सब मिला के 2-3 दिन में आपको कंप्लीट करनी होती है.
1: 2-3 दिन में?
0: जी हाँ. और उसके पहले अगेन हर एक चीज की ट्रेनिंग तो होती ही है, तो ट्रेनिंग के बाद फिर आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप जंप करें, और वो लगभग 3,000 से 5,000 फीट की ऊंचाई से जंप की जाती है. और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वो सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं होता है, वो अपने अंदर का जो डर है वो निकालने के लिए होता है. और आपको मैं एक और चीज बताऊंगी, उस टाइम तक मुझे ऊंचाई का डर था, थोड़ा सा तो डर रहता था मुझे. और जब मेरी पहली जंप थी, मैं इतनी एक्साइटेड थी उस पहले जंप के लिए, क्योंकि वो होता है ना, इट्स एन अननोन टेरिटरी, आपको पता नहीं है क्या होने वाला है. तो पहली जंप तो बहुत मजेदार थी, और इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस, इतना खूबसूरत अनुभव था वो, कि आपको पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है, बस एक एड्रेनलिन रश होता है, एक एक्साइटमेंट होती है
1: जी.
0: क्योंकि जैसे कहते हैं, कभी कभी अनजानी चीज भी डराती नहीं है लेकिन आपको उड़ना सिखाती है. लेकिन दूसरा जंप जो था वो थोड़ा अलग था, क्योंकि तब तक मुझे पता चल चुका था कि पहले जंप में हुआ क्या था. तो दूसरी जंप में मुझे ऑनेस्टली बताओ डर लगा था, और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी सुसाइड मिशन पे निकली हूँ.
1: ओह माय गॉड.
0: बट तीसरे जंप के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी, और एक मैजिकल फीलिंग थी उस टाइम पे. क्योंकि आप जब जंप कर जाते हो, आप वहां पे होते हो जहां पे और कोई शोर नहीं है, कोई नहीं है आपके आसपास, सिर्फ आप हो, चारों तरफ सन्नाटा है, और आपकी अपनी सांस से आप सुन पा रहे हो.
1: इनर स्ट्रेंथ.
0: वो एक ऐसा पल है जब आपको लगता है कि एक पक्षी होना कैसे लगता है. दैट इज एक्चुअल फ्रीडम. एंड वो एक पॉइंट होता है जहां आप खुद से कनेक्ट करते हो.
1: Awesome. कितना सुंदर एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, और सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं अगर आप देख सकें तो मतलब ऐसा, जब आप ये अभी एक्सप्लेन कर रही थी, ये बता रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम आपके साथ खड़े हुए और आपके साथ ही जंप करने के लिए नीचे झांक रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं. तो ये आपका डिस्क्रिप्शन तो बहुत ही खूबसूरत है. आई मस्ट से कि आप बताती बहुत अच्छा है अपने अनुभव. और एक और बात बताइए, देखिए अभी आपने अभी तक जो भी बात बताई वो आपकी सक्सेस स्टोरीज थी
0: जी.
1: क्या ऐसा कभी हुआ कि आपको किसी असफलता का सामना करना पड़ा हो, और अगर ऐसा हुआ तो फेलियर का डर और फेलियर से उबरना, मतलब उस डर को पीछे छोड़ना या उस डर से बाहर निकलना, ये आपका तरीका क्या है इसके लिए?
0: एक कहीं मैंने ये बड़ी अच्छी चीज पढ़ी थी कि असफलता अंत नहीं होता, ये बस एक नया रास्ता दिखाना और उसका दिखाने का तरीका होता है
1: जी.
0: सो फेलियर्स तो बिल्कुल आए हैं लाइफ में, बहुत फेलियर्स है, और वो जिंदगी ही क्या जहां पे फेलियर्स ना हो. लेकिन आपको लाइफ सिखाती है कि आप गिरिए, आप उठिए, आप अपने कपड़े झाड़िए, साफ कीजिए और आगे बढ़िए, ये जिंदगी है.
1: बहुत सुंदर.
0: तो आप जैसे बता पूछ रही हैं कि फेलियर्स काफी आए हैं, लेकिन हाँ इनिशियली एक जो सेटबैक लगता है आपको, एक थोड़ा सा धक्का सा लगता है, आपने उस पीरियड से जल्दी उबर जाना चाहिए। अगर आप उस फेज में ज्यादा दिन तक रहे या ज्यादा टाइम तक रहे, फिर वो फेलियर आपको खा जाएगा। एंड वही मेंटल टफनेस डिफेंस फोर्सेस हर एक इंसान को सिखाती है, रादर डिफेंस फोर्सेस तो सिखाती है, लेकिन एक संदेश जो मैं सबको देना चाहूंगी कि ये आपने खुद में भी डेवलप करना चाहिए कि फेलियर्स तो आएंगे। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबके लाइफ में फेलियर्स तो आए हैं, लेकिन कितनी जल्दी आप उन फेलियर से उभर के आगे बढ़ना सीख लेते हैं, वो एक्चुअल लाइफ है।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मुझे लगता है कि जो भी आपके साथ थोड़ी देर भी बैठ जाता होगा ना प्रतीक्षा जी, वो एक बेहतर इंसान बनकर ही बाहर निकलता होगा। आई एम श्योर फॉर दैट, बिकॉज यू हैव सच पॉजिटिव वाइब्स, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है आप में, जो हर किसी को जो भी आपके संपर्क में आता है उसको प्रेरित ही करता है, मोटिवेट ही करता है। अच्छा, आपकी इस जब भी हम आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो आपकी सेवा काल के दौरान ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा जिसने आपको बहुत इमोशनल किया हो और मोटिवेट किया हो?
0: इमोशनल किया हो
1: जी,
0: ऐसे तो काफी इंसिडेंट हुए हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूंगी कि कुछ चीजें, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, जो स्टार्ट किए हैं बहुत ज्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके, और फिर कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अलग अलग उसके रीजंस हैं, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट सर्विस है, आपका बजट होता है, काफी सारी चीजें होती है, तो किसी भी रीजन के वजह से शायद वो आगे ना बढ़े, तो तब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपने मतलब मेरे नजरिए से मैंने उसमें अपनी लाइफ झोंक दी थी, लेकिन अगर उसका जो आउटकम मैंने एक्सपेक्ट किया था वो अगर नहीं मिला तो बुरा तो लगता है
1: जी।
0: लेकिन ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड वही सेटबैक्स है जिसको आपको पीछे छोड़ देना है और आगे बढ़ते चले जाना है।
1: इसी बात पर हम एक गाना सुनते हैं जो मोटिवेट भी करता है और इमोशनल भी कर देता है, केसरी फिल्म का गाना जो आपको बेहद पसंद है, संदेश टू सोल्जर्स में आज आप हैं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी के साथ।

0: संदेश टू सोल्जर्स सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ, और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी, जिनकी बातें ना केवल मोटिवेट करती हैं बल्कि सुनकर ऐसा लग रहा है, ऐसा जज्बा पैदा हो रहा है कि आज ही एयरफोर्स ज्वाइन कर ली जाए। तो मेरे मन में जब ये विचार आ रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि जितने युवा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे उनके मन में किस तरह के विचार आ रहे होंगे। तो मैं अब आपसे यही पूछना चाहती हूँ प्रतीक्षा जी कि अगर युवा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, पहली बात, और दूसरा एफकैट और सीडीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आपकी क्या सजेशन है युवाओं के लिए।
1: जी विनीता जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम, ये मंच उसी के लिए है ताकि हम जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो फौज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हम उनको अच्छा संदेश दें ताकि वो ज्वाइन कर सके। सो तैयारी के हिसाब से देखिए, मैं एक चीज़ शुरुआत में कहना चाहूँगी कि अगर आपका लक्ष्य नौकरी है तो डिफेंस फोर्सेस आपके लिए सही जगह नहीं है, लेकिन अगर आपका सपना देश सेवा है तो इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। सो तैयारी के हिसाब से पहले तो पक्का आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, पढ़ाई में मन लगाइए, क्योंकि आपने ये चीजें सुनी होंगी कि फौज में पढ़ाई नहीं है, जबकि मैं बताना चाहूंगी फौज में बहुत ज्यादा पढ़ाई है, और जो सीनियर ऑफिसर्स भी हैं जो जनरल ब्रिगेडियर बन जाते हैं वो भी पढ़ाई करते रहते हैं। तो पढ़ाई का कोई पीछा नहीं छूटता है अगर आपने फौज ज्वाइन कर लिया, तो ये एक दिमाग में जरूर रखिए कि पढ़ाई तो रहेगी रहेगी। तो आप पहले से खुद को प्रिपेयर कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अच्छे से आप अपना ट्वेल्थ पास कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ग्रेजुएशन में भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आजकल जो अलग अलग तरीके के एग्जाम्स हैं, एफकैट है, जैसे एयरफोर्स के लिए एफकैट है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, और तो इसमें इनिशियली आपके जो ग्रेजुएशन है उसके बेसिस पे एग्जाम होता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हैं या इंजीनियरिंग ब्रांच में आप आना चाहते हैं एयरफोर्स में, सो आपकी इंजीनियरिंग का जो बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे आपको सवाल पूछे जाते हैं, प्लस थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान होता है उसके बारे में भी आपने थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप डिफेंस फोर्सेस में जा रहे हैं एंड उसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पेपर होता है, एक एग्जाम होता है। तो ऑल एंड ऑल पूरी तरीके से आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, उससे आपका कोई निजात नहीं है। उसके अलावा एक आपको मेंटल टफनेस आपको खुद में करना पड़ेगा, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इमोशनल लोगों की जगह नहीं है, नहीं, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं, आप इमोशनल हो सकते हैं लेकिन आपको मेंटली टफ रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ है तभी आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे जो मोस्टली फिजिकल होती है। जो इनिशियल 6 महीने की ट्रेनिंग होती है वो ज्यादातर फिजिकल और कम पढ़ाई, और उसके बाद जब आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तब उसमें ज्यादा पढ़ाई होती है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपकी कभी नहीं रुकती। मेरे लास्ट डे तक भी, जहां मैंने 14 साल कंप्लीट किए एयरफोर्स में, आखिरी दिन तक फिजिकल एक्टिविटी चल रही थी, पीटी, परेड, रनिंग, जिससे मैं बहुत डरती थी, वो मैंने आखिरी दम तक किया है एयरफोर्स के, और अभी भी करती हूँ, और इसीलिए फिजिकली फिट रहती हूँ। तो ये कुछ प्रिपरेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको अगेन डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपकी लाइफ में आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको खुद को कमिट करना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे करना है। अगर आपने वो सपना देखा है तो आप वो सपना जिएंगे।

0: क्योंकि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
1: कलाम साहब ने ये बात कही
0: जी,
1: बहुत सुंदर। और ये जो आपने एक संदेश दिया है सभी युवाओं को, मुझे लगता है कि हालांकि अभी बहुत कुछ मुझे आपसे बात करनी है, जानना है, लेकिन एक ये छोटा सा गाना मैं जरूर चलाना चाहूंगी आपकी इस बात पर कि जब आप कह रहे हैं कि मेंटल फिटनेस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है एंड वाइस वर्सा, तो ये एक गीत सभी युवाओं के लिए प्रतीक्षा जी की तरफ से।

0: संदेश टू सोल्जर्स का लास्ट सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए, आपका यहां पर होना प्रतीक्षा जी। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे आज हमसे संदेश टू सोल्जर्स में बात कर रही हैं। बहुत कुछ सजेशन उन्होंने दी, बहुत कुछ मोटिवेशन दिया, लेकिन एक बात जाने बगैर भला हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं। आप स्वयं एक महिला हैं और महिला होने के नाते आपने विशेष प्रयास किए हैं अपनी जगह बनाने के लिए। तो सेना में करियर बनाने के लिए युवतियों के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं को तो सभी संदेश देते हैं, बट विशेष रूप से युवतियों को आप क्या कहना चाहती हैं?
1: युवतियों को मैं एक चीज जो मेरे जहन में बसी है और जो मैंने भी सीखी है, ऐसा नहीं है कि मैं सीख के आई थी, लेकिन मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या वो लड़का कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी। नहीं, आप सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ। आप अभी देखिए, हर दुनिया में हर फील्ड में लड़की है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पे लड़की नहीं है।

0: सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को जो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, इस बात से डेफिनेटली प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, आप अब क्योंकि रिटायर हो चुकी हैं, क्या आपके लाइफ में रिटायरमेंट के बाद कोई चेंजेस आए हैं क्या?
1: जी, सबसे बड़ा चेंज तो वो है जो सुबह उठते से ही जो मैं यूनिफॉर्म पहनती थी, वो एक बहुत बड़ा चेंज है और वो मैं बहुत मिस करती हूँ क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि रोज वो यूनिफॉर्म पहन के यूनिट जाते हैं, तो वो एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। उसके अलावा देखिए, वर्क वाइज तो अभी भी मैं वर्किंग हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है आर्म्ड फोर्सेस से, जितना मैं वहाँ अप्लाई कर सकती हूँ करती हूँ, तो कमिटमेंट में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन एक जो ऑरा होता है, और आजकल की जो जेंजी लैंग्वेज में कहते हैं वाइब, वो थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगती है, क्योंकि बाहर कॉर्पोरेट में काफी लोग अकेले अकेले से काम करते हैं, जबकि डिफेंस फोर्सेस में इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। सो आई जेन्युइनली मिस दैट टीम वर्क एंड द वाइब ऑफ डिफेंस फोर्सेस।
0: ओह स्वीट, ये जो वाइब आपने बताई है ना, मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में जब सब मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं तो अपने आप वो काम भी बहुत अच्छा होता है, और एक वाइब तो पॉजिटिविटी की रहती ही है। अच्छा, महिला अधिकारियों के लिए इंडियन एयरफोर्स में क्या क्या ऐसे अवसर हैं कि वो भी आपकी तरह अपने आप को एक प्राउड ऑफिसर कह सकती हैं?
1: पहली बात होगी, किसी चीज के लिए मना मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप अनकंफर्टेबल हो किसी चीज कोई काम करने के लिए और तब भी आप हाँ बोल रहे हैं, नहीं, लेकिन आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटी को भापे
0: जी,
1: और किसी भी चीज के लिए मना मत कीजिए, किसी भी चीज से डरिए मत कि ये होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलिए आप काम करिए, और आप में वो कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। तो वही कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो बाधाएं होती है, जो हम बाउंड्रीज बनाते हैं, वो हमारे दिमाग में होती है, बाहर कोई नहीं बना रहा हमारे लिए वो बाउंड्रीज, हम खुद ही बनाते हैं। तो अगर आपने वो बाउंड्रीज पार कर ली, आपने वो जो लक्ष्मण रेखा आपने पार कर ली, तो वर्ल्ड इज ऑन योर फिंगर टिप्स, आप दुनिया, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकती हैं। वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत छोड़िए अपना।
0: तो आपको ये लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी, स्पेशली जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, वो अगर कॉन्फिडेंस का गहना पहन ले तो उन्हें फिर किसी और गहने की जरूरत नहीं पड़ेगी?
1: बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, बिल्कुल वही गहना पहनना है हमने, और कोई पहने ना पहने, लेकिन कॉन्फिडेंस का गहना हमेशा होना चाहिए हमारे पास।
0: थैंक यू सो मच प्रतीक्षा ठाकरे जी, आज आप संदेश टू सोल्जर्स में आई हैं और आपने अपने इतने खूबसूरत अनुभव और उससे भी बढ़कर प्रेरक विचार हम सबके साथ बांटे हैं। मुझे लगता है कि डिफेंस फोर्सेस का इससे खूबसूरत उपहार हमारे श्रोताओं के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। तो समय निकालने के लिए आपका आभार, अपनी पॉजिटिविटी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका आभार, और चलते चलते एक सल्यूट तो आपके लिए बनता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम सभी को प्रेरित करने के लिए। आई होप आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा होगा आज यहाँ।
1: धन्यवाद विनीता जी, यहाँ पहली बात तो मुझे बुलाने के लिए और ये बातचीत करने के लिए, और आखिरी में बस एक लाइन कहूंगी कि देश सेवा सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, ये एक ऑनर है, और जो ये ऑनर पा लेता है वो जिंदगी में कभी नहीं हारता। धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। और दोस्तों, सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स, हम सभी दिल से सलाम करते हैं अपने सोल्जर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से प्रतीक्षा ठाकरे जी का। धन्यवाद। जय हिंद।
1: जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। 5 बजने को हैं। आइए आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा बता दें।

5:30 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम युवाणी। युवाणी कार्यक्रम में भेंटवार्ता करवाएंगे हम लोग श्रीमती ज्योति रानी और कोऑर्डिनेटर महिला एवं बाल विकास लाडवा कुरुक्षेत्र से, जो कि विषय हमारी संस्कृति हमारी धरोहर पर बातचीत करेंगे।

6:20 पर सुनिए गीता संदेश। आज आप सुनेंगे अध्याय 3 के श्लोक 7-9 की व्याख्या कर रहे हैं डॉक्टर सी डी एस कौशल।

7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जय जवान और 7:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम ऑर्गन इंडिया की कड़ी संख्या नंबर 2।

साथियों, ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। शाम के 5:05 होने को है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गाने नए पुराने।

अभी आप सुन रही थी फिल्म निकाह का ये गीत। फिल्म निकाह जो 1982 में रिलीज हुई थी, इसके निर्माता और निर्देशक रहे बीआर चोपड़ा और ये एक प्रसिद्ध हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों, तीन तलाक और विवाह की जटिलताओं पर बातचीत या इस कहानी पर ये फिल्म थी। इस कहानी में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी सलमा आगा, राज बब्बर और दीपक प्राशर ने। कहा जाता है कि यह फिल्म अपने समय से आगे की मानी जाती थी। इसने मुस्लिम पर्सनल लॉ और महिलाओं के भावनात्मक संघर्षों को बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ पर्दे पर उतारा था। आइए सुनते हैं फिल्म का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बॉर्डर से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म बॉर्डर का ये गीत, जिसमें जेपी दत्ता द्वारा ये निर्देशित फिल्म थी और 1971 की बनी। इन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई की सच्ची घटनाओं पर आधारित ये फिल्म रही। इस फिल्म में राजस्थान के थार रेगिस्तान में स्थित लोंगेवाला पोस्ट पर आधारित ये फिल्म थी, और जहां भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट के केवल 120 सैनिकों ने रात भर टिककर पाकिस्तान के लगभग 2000 सैनिकों और 40 से अधिक टैंकों वाली विशाल सेना का बहादुरी से सामना किया था। इस फिल्म में दिग्गज कलाकारों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी, जिनमें सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ, पूजा भट्ट और तब्बू शामिल थे। इस फिल्म को संगीत दिया था अनु मलिक ने और गीत जावेद अख्तर ने लिखे थे। उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म यह साबित हुई थी और दर्शकों और समीक्षकों ने इस फिल्म की जबरदस्त सराहना की थी। इसे 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। बॉर्डर केवल युद्ध और एक्शन पर आधारित नहीं, बल्कि यह फिल्म सैनिकों के परिवारों के बलिदान, उनके आपसी भाईचारे और देशभक्ति की सच्ची भावनाओं को भी खूबसूरती से दर्शाती है। आइए आपको सुनाते हैं फिल्म हिना का गीत, जिसे 1991 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और ये एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक रहे राज कपूर जी और उनके निधन के बाद उनके बेटे रणधीर कपूर जी ने इसका निर्माण और निर्देशन किया। फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी ऋषि कपूर और जीबा बख्तियार, उनके साथ थी अश्विनी भावे।

इस फिल्म की कहानी प्रसिद्ध लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा लिखी गई थी और यह फिल्म पाकिस्तान की जानी मानी अभिनेत्री ज़ेबा बख्तियार की पहली बॉलीवुड फिल्म थी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए पुराने, एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। 5:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवाणी।

0: युवाणी कार्यक्रम सुन रहे सभी युवा साथियों को आपके दोस्त विशाल का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज कार्यक्रम में आपको सभी को जानकारी दी जाएगी रोजगार समाचार के बारे में। इसके साथ ही एक भेंट वार्ता प्रस्तुत की जाएगी जिसका विषय है हमारी संस्कृति हमारा धरोहर। विशेषज्ञ रहेंगी श्रीमती ज्योति रानी, कोऑर्डिनेटर महिला एवं बाल विकास लाडवा कुरुक्षेत्र से। प्रस्तुत है ये भेंट वार्ता।
1: आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि हमारी जो संस्कृति है वो किस तरह की है। अगर हम बात करें कि किसी भी समाज की जो पहचान होती है उसकी संस्कृति होती है, तो इस सांस्कृतिक परंपरा की अगर हम बात करते हैं, किसी भी समाज की जो पहचान होती है वहाँ की संस्कृति उसकी मुख्य पहचान होती है, और उससे ही पहचाना जाता है कि इसके विचार, इस सभ्यता के विचार, इस समाज के विचार कैसे हैं। आज इस बारे में जानकारी देने के लिए कि हमारी संस्कृति और हमारी धरोहर क्या है, तो हमारे साथ हैं ज्योति रानी जी। ज्योति जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि संस्कृति और धरोहर है क्या।
2: हमारी संस्कृति और धरोहर भारत की आत्मा है, जो हजारों वर्षों की परंपराओं, कला, ज्ञान और मूल्यों का संगम है। यह वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के विचार को अपना कर इतिहास, स्मारकों, भाषा और जीवन शैली के माध्यम से हमें एक विशेष पहचान देती है।
1: क्या मुख्य पहलू क्या है संस्कृति के?
2: हमारी संस्कृति और धरोहर के मुख्य पहलू अमूर्त धरोहर। इससे हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, कला, संगीत, नृत्य, भाषा और ज्ञान शामिल होते हैं। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। और है मूर्त धरोहर, इसमें ऐतिहासिक इमारतें, स्मारक और पुरातात्विक स्थल शामिल होते हैं। और है हमारी प्राकृतिक धरोहर, देश की विविध प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण भी हमारी धरोहर का हिस्सा होते हैं।
1: बहुत अच्छी आपने बात बताई कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसमें कई चीजें हैं। तो सांस्कृतिक धरोहर का महत्व क्या है?
2: यह हमारी जड़ों को जीवित रखती है। इसकी पहचान यह कि हमारी जड़ों को जीवित रखती है। गौरव और प्रेरणा, यह हमें अपने इतिहास पर गर्व करने और नई पीढ़ी को प्रेरित करने का मौका देती है। सह अस्तित्व, भारतीय संस्कृति विविधता में एकता, सहिष्णुता और उदारता सिखाती है।
1: तो मैडम बताइए कि संस्कृति की बात करें, संस्कृति और विरासत यानी कि धरोहर का अर्थ क्या है मुख्य तौर पर?
2: कल्चर शब्द को लैटिन भाषा के शब्द कल्ट अथवा कल्टस से लिया गया है, जिसका अर्थ मेहनत या कृषि करना, शुद्धिकरण और पूजा करना इत्यादि है। सारांश में इसका अर्थ किसी वस्तु को इतना शुद्ध एवं परिकृष्ट करना है कि अंतिम उत्पाद हमारे भीतर सम्मान और प्रशंसा को जगा सके।
1: जी।
2: सामाजिक समूहों का सदस्य होने के नाते मानव की सारी उपलब्धियों को संस्कृत कहा जा सकता है। कला, संगीत, साहित्य, वास्तुकला, मूर्तिकला, दर्शन, धर्म और विज्ञान को संस्कृति के विभिन्न पक्षों के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि संस्कृति में रीति रिवाज, परंपराएं, त्यौहार, जीवन शैलियाँ और जीवन के विभिन्न मुद्दों पर लोगों के दृष्टिकोण भी सम्मिलित होते हैं।
1: जी।
2: अतः संस्कृति मानव निर्मित उस वातावरण के रूप है जिसमें एक पीढ़ी द्वारा सभी भौतिक और गैर भौतिक उत्पाद आगामी पीढ़ी को सौंपे जाते हैं। हमारे जीने और सोचने के तरीकों से हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति ही संस्कृति है। इसको हमारे साहित्य, धार्मिक व्यवहारों, मनोरंजन, आनंद में देखा जा सकता है। संस्कृति के दो विलग साहित्य, धार्मिक व्यवहारों, मनोरंजन और आनंद में देखा जा सकता है। संस्कृति एक स्थान से दूसरे स्थान में तथा एक देश से दूसरे देश में बदल जाती है। इसका विकास स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संदर्भ में काम कर रही ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए हम दूसरों का स्वागत करने के तरीका, वेशभूषा, खान पान की आदतों, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और व्यवहार में पश्चिम से अलग हैं। दूसरे शब्दों में किसी भी देश के लोगों की पहचान उनकी अपनी अलग सांस्कृतिक परंपराओं से होती है।
1: तो ज्योति जी, हम बात करें अपने देश की, भारत की,
2: हाँ,
1: तो इसकी क्या परंपराएं हैं, क्या विशेषताएं क्या हैं भारतीय संस्कृति की?
2: भारत के मानचित्र पर देखिए, आप पाएंगे कि भारत एक विशाल देश है जिसके भौतिक और सामाजिक परिदृश्य में अनेक प्रकार की विविधता है। हम अपने इर्द गिर्द लोगों को भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते, भिन्न भिन्न धर्म के लोगों को भिन्न भिन्न अनुष्ठान करते हुए देखते हैं। आप इन विविधताओं को उनके खान पान की आदतों और वेशभूषा के स्वरूपों में भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपने देश में तथा संगीत और नृत्य के अनेक रूपों को देखिए, परंतु इन सारी विविधताओं में एकता निहित है जो सबको आपस में जोड़ती है। लोगों का धीरे धीरे आपस में मिलना सदियों से चला रहा है। अलग अलग जातियों, वंशों और धार्मिक विश्वासों के लोग यहाँ बस गए हैं
1: जी।
2: अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करते हैं तो उसमें देखिए निरंतरता और परिवर्तन भी है। इसमें एक प्रमुख ऐतिहासिक परिवर्तनों और उथल पुथल के बावजूद निरंतरता के मजबूत सूत्र को पूरे भारतीय इतिहास में वर्तमान समय पर खोजा जा सकता है। एक और इसका है अनेकता और एकता। इसमें देखिए आप ये बात अच्छे से, विश्व की कुछ संस्कृतियों में ही भारतीय संस्कृति जैसी विविधता है। शायद आप इस बात से हैरान हो कि केरल के लोग खाना बनाने के लिए नारियल का तेल और उत्तर प्रदेश के लोग सरसों का तेल का प्रयोग करते हैं। यह इस कारण है कि केरल तटीय राज्य है जहाँ नारियल की पैदावार अधिक होती है तथा उत्तर प्रदेश मैदानी क्षेत्र है जो सरसों की खेती के अनुकूल है। पंजाब के भांगड़ा अथवा तमिलनाडु के पोंगल और असम के बिहू नृत्य में क्या समानता है? सभी त्योहार फसलों की कटाई के बाद मनाए जाते हैं। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि हम बंगाली, तमिल, गुजराती अथवा उड़ीसा जैसी भिन्न भाषाएं बोलते हैं। भारत अनेक प्रकार के नृत्यों और संगीत का घर है जिन्हें आमतौर पर शादी अथवा बच्चे के जन्म के अवसर पर प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं जिससे साहित्य समृद्ध हुआ है। विश्व के 8 बड़े धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। वास्तुकला, मूर्तिकला तथा चित्रकला की अनेक शैलियों का यहाँ विकास हुआ है। संगीत और नृत्य की विभिन्न शैलियाँ, लोक संगीत और शास्त्रीय दोनों का यहाँ अस्तित्व है। इसी प्रकार अन्य त्यौहार और प्रथाएँ हैं। यह व्यापक विविधता भारतीय संस्कृति को संयुक्त और समृद्ध बनाने के साथ सुंदर भी बनाती है। हमारी संस्कृति में इतनी विविधता क्यों है? इसके अनेक कारण हैं। देश की विशालता और इसके भौतिक और जलवायु लक्षणों में भिन्नता इसका एक स्पष्ट कारण है
1: जी।
2: हमारी संस्कृति में अनेकता का दूसरा महत्वपूर्ण कारण विभिन्न जातीय समूहों के बीच अंतर्मिलन है। बहुत पहले से दूर दराज और नज़दीक के लोग यहाँ आते रहे हैं और बसते रहे हैं। हम विभिन्न प्रजातीय समूहों को भारत में रहते हुए देखते हैं। विभिन्न प्रजातीय समूह जैसे ईरानी, यूनानी, कुषाण, शाक्य, हून, अरबी, तुर्की, मुगल और यूरोपीय जैसे लोग भी भारत में आए, यहाँ बस गए और यहाँ के लोगों के साथ घुल मिल गए। अन्य संस्कृतियों के लोग यहाँ अपनी सांस्कृतिक आदतों, सोच और विचारों को अपने साथ लेकर आए जो यहाँ की संस्कृति के साथ घुल मिल गए। जैसे उदाहरण के लिए रोटी एक तुर्की शब्द है तथा समोसा मध्य एशिया से आया है। भारतीय उपमहाद्वीप में विवाह के समय दूल्हे द्वारा पहनी जाने वाली शेरवानी मध्य एशिया के शैनवान लोगों द्वारा पहना जाने वाला परिधान है। अतः भारत ने युगों से विभिन्न आदतों और विचारों को समाहित करने के उल्लेखनीय क्षमता का प्रदर्शन किया है। इससे हमारी संस्कृति को विविधता और समृद्धि प्रदान करने में योगदान दिया है। हमारी संस्कृति का एक और कारण है धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण। उसके विषय में बात करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में सोच और आदतों की बहुत विविधता है। ऐसी विविधता में किसी एक विशेष चारधारा का प्रभुत्व संभव नहीं है। स्मरण रहे कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और यहूदी रहते हैं। संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। भारत के लोगों ने एक दृष्टिकोण बना लिया है कि जियो और जीने दो। इसका एक और कारण सार्वभौमिकता। सह अस्तित्व के सिद्धांत को केवल भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं रखा गया। भारत का दृष्टिकोण सार्वभौमिक रहा है और यह पूरे विश्व में शांति और समरसता के संदेश को बढ़ावा देता रहा है।
1: ये तो आपने संस्कृति की विशेषताएं बताई, धरोहर की क्या विशेषताएं हैं?
2: धरोहर उसको कहते हैं जो हमारे पूर्वजों से मिला है। धरोहर वह है जो किसी विशेष स्थान, क्षेत्र, धर्म और देश के लिए बहुत विशिष्ट और खास होती है। तो दूसरी ओर किसी परिवार, समुदाय,

0: अथवा लोगों के लिए अलग होती है। यह प्राकृतिक और व्यक्ति द्वारा निर्मित हो सकती है अथवा इतिहास के विकास के लिए विकसित हो सकती है। भारत के गौरवशाली इतिहास ने सुनिश्चित किया है कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों के पास गर्व करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत है। हमारे देश में चिताकर्षक स्मारक और धरोहर स्थल आज पर्यटकों के सामने अपने आनंद, साहस और त्याग की गाथाएं सुनाने के लिए मौजूद हैं। सभी कहानियां इनकी चमत्कारिक हैं। प्रत्येक कथन के बाद पर्यटक में और सुनने की चाह बनी रहेगी। इसलिए सदियों तक भारत ने अपनी सांस्कृतिक और परंपराओं के साथ आने वाले लोगों में, जो बाद में यहाँ की सांस्कृतिक और परंपराओं के साथ घुल मिल गए, एक नई धरोहर और संस्कृति को जन्म दिया। संस्कृतियों के इस मिलन ने धीरे धीरे लगातार भारतीयों के विश्वास और मूल्यों को और अधिक समृद्ध किया है।
1: अंत में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं अंत में कहना चाहूंगी कि हमारे भारत की संस्कृति बहुत महान है, हमारी धरोहर, हमारी पहचान है। हमें इसे यूं ही सहेज कर रखना है और अपनी आने वाली पीढ़ियों को और हमारे युवा अपनी इस सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व कर सकते हैं।
1: ज्योति जी, आप हमारे स्टूडियो में और बड़े विस्तार से आपने बताया कि हमारी संस्कृति और धरोहर की पहचान क्या है, किस तरह से है वो, कैसे हम उसमें काम कर सकते हैं, तो इन सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, विषय था हमारी संस्कृति हमारी धरोहर, जिसमें विशेषज्ञ थे श्रीमती ज्योति रानी, जो कि कोऑर्डिनेटर है महिला एवं बाल विकास लाडवा कुरुक्षेत्र से। प्रश्नकर्ता थे श्री महेंद्र मोहन जी। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम युवाणी को बढ़ाए चलते हैं इस गीत के साथ। उसके बाद आप सभी को जानकारी दी जाएगी कुछ रोजगार व प्रवेश संबंधी सूचनाओं के बारे में।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आइए दोस्तों, आप सभी को कुछ रोजगार समाचार से अवगत कराए चलते हैं। दोस्तों, यूजीसी नेट के लिए आवेदन आरंभ हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मई 2026 है। इसके साथ ही आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 11,127 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 30 वर्ष मांगी गई है। इसके साथ ही जिन विद्यार्थियों ने केवीएस, एनवीएस व ईएमआरएस के एग्जाम दिए थे, उनकी आंसर की एनटीए की तरफ से जारी कर दी गई है। वे अपने उत्तर मिलान कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी पीजीटी 2022 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आप वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ रोजगार व प्रवेश संबंधी सूचनाएं। आइए युवाणी कार्यक्रम में सुनवाई चलते हैं आप सभी को अगला गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक आवाज जो बचपन में सुनी थी,
2: एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी,
1: एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है,
2: हम सबकी अपनी आकाशवाणी।

0: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवानी FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने को है, समय है हिंदी में समाचारों का। इन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार और प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। ब्रिटेन ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर एक जहाज को जब्त कर लिया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य के पास फुजैराह बंदरगाह के करीब इस जहाज पर अनाधिकृत कर्मियों ने कब्जा कर लिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए गांवों में एक अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi today met foreign ministers attending the BRICS foreign ministers meeting in New Delhi. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, South African Foreign Minister Ronald Lamola, and Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira, among others, today called on Prime Minister Narendra Modi. The meetings took place on the sidelines of the BRICS Foreign Ministers meeting underway in New Delhi. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov briefed the Prime Minister on progress in bilateral cooperation since the meeting with the President Vladimir Putin and Mr. Modi during the 23rd India-Russia annual summit in December. The two leaders also discussed regional and global issues, including the situations in Ukraine and West Asia. Prime Minister Modi reiterated India's position that dialogue and diplomacy remain the best way forward and asked Mr. Lavrov to convey his greetings to President Putin. Earlier in his opening remarks, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar said that peace and security remain central to the global order. He said many countries continue to face challenges on energy, food, fertilizer and health security, and BRICS can help them respond more effectively.
3: We meet at a time of considerable flux in international relations, ongoing conflicts, economic uncertainties, and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions today are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation.
2: Dr. S. Jayashankar said recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy.
3: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
2: The Election Commission today announced Special Intensive Revision SIR Phase 3, which will be conducted in a phased manner in 16 states and 3 union territories. This phase will cover Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Uttarakhand, Haryana, Punjab, Jharkhand, Odisha, Maharashtra and all northeastern states except Assam. 3 UTs will also be covered in this phase, NCT of Delhi, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. With this, the SIR of the electoral rolls will cover the entire country in Phase 3, except Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh. Putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days, Congress today announced the name of V.D. Satishan as the new Chief Minister of Kerala. With the announcement, the Congress-led UDF will proceed to form the government in the state. In Tamil Nadu, AIADMK General Secretary Idappadi Palaniswamy today met the State Governor Vishwanath Arlekar and gave him a petition regarding the faction of AIADMK MLAs led by SP Velumani. The former Chief Minister appealed to the Governor to take up the issue with Speaker J.C.D. Prabhakar. The issue is that 25 AIADMK MLAs in the faction led by SP Velumani voted for the TVK government, not heeding the whip issued by O.S. Manian to vote against the TVK government. Delhi government will start the Mera Bharat, Mera Yogdan campaign from tomorrow in line with Prime Minister's appeal. Addressing the media in Delhi, Secretariat Chief Minister Rekha Gupta said, under the campaign, all Delhi government offices except essential services will operate on a work from home for 2 days in a week. US President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping today held talks in Beijing. Both leaders stressed on cooperation over confrontation, despite tensions over trade, technology and regional security. The meeting marked Trump's first visit to China during his second stint of presidency. According to the White House, the two sides agreed that the Strait of Hormuz must remain open to support the free flow of energy. Benchmark domestic equity indices surged over 1% today, led by broad-based buying across most sectors. The Sensex gained 790 points to close at 75,399. And that is the end of this news bulletin.

0: राजनीति को स्वीकार किया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सेकेंडरी की शैक्षिक एवं मुक्त विद्यालय परीक्षा का परिणाम घोषित किया। सेकेंडरी शैक्षिक का परिणाम 89.60% रहा। और हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने गुरुग्राम जिले में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी करीब 2,86,00,000 रुपए की विकास परियोजनाएं जनता को समर्पित की। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है। इसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। इन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ शामिल हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी पत्रकार वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में घरेलू LPG आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, LPG और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और LPG प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: उन्होंने कहा कि रिफाइनरियां अधिकतम क्षमता पर चल रही हैं और LPG कनेक्टिविटी में भी वृद्धि हुई है। सुश्री सुजाता शर्मा ने कहा कि वाणिज्यिक LPG की बहाली में लगभग 70% तक पहुंच गई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि 20 से अधिक चालक दल के सदस्यों सहित 90,000 मीट्रिक टन से अधिक LPG ले जा रहे 2 जहाज कल रात हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर गए। उनके शनिवार को देश पहुंचने की उम्मीद है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की जनता ने विकास, सुशासन, पारदर्शिता और राष्ट्रवाद की राजनीति को खुले दिल से स्वीकार किया है। निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक और एकतरफा जीत इस बात का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने इस ऐतिहासिक विजय के लिए प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री आज पंचकूला में भाजपा मुख्यालय में नगर निकायों के नवनिर्वाचित महापौरों, प्रधानों एवं पार्षदों के सम्मान में आयोजित समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की परिवारवाद, झूठ, भ्रम और नकारात्मक राजनीति को पूरी तरह से नकार दिया है।
2: देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और कांग्रेस लगातार झूठ फैलाने का काम कर रही है, लोगों के अंदर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। आज कांग्रेस को उसके झूठ का, चाहे उन्होंने लोकसभा के अंदर फैलाया कि मोदी जी आगे तो संविधान को खतरा हो जाएगा, कभी ये लोकतंत्र को खतरा बताते हैं, कभी EVM के अंदर गड़बड़ बताते हैं, कभी ये वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। और जब अभी राहुल बाबा हरियाणा के अंदर आए, कहने ये तो घुसपैठियों की सरकार, इस प्रकार का ट्वीट दुर्भाग्यपूर्ण है, ये लोकतंत्र का अपमान है।
0: उन्होंने भाजपा के समर्पित कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों से गरीब और किसान सशक्त हुए हैं तथा महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। मुख्यमंत्री ने निकाय चुनाव में विजयी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए उनसे जनता की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह जनादेश सत्ता नहीं बल्कि सेवा का संदेश है। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान जारी किए गए घोषणा पत्र को अक्षरतः लागू किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक एवं कई कैबिनेट मंत्री व राज्यसभा सदस्य मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आज सेकेंडरी की शैक्षिक एवं मुक्त विद्यालय परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। परीक्षार्थी अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट व results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। सेकेंडरी शैक्षिक के नियमित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम 89.60% तथा स्वयं पाठी परीक्षार्थियों का परिणाम 70.02% रहा। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने बताया,
3: 89.60 यानी 89.60% रहा है। बेटियों ने सेकेंडरी परीक्षा में भी बाजी मारी है। जो प्रथम स्थान पूरे प्रांत में जिस बेटी ने अचीव किया है उसका नाम है दीपिका। बधाई है भिवानी को कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट ने पूरे प्रांत में जो आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलान है इसमें प्रथम स्थान छात्रा ने प्राप्त किया है।
0: उन्होंने कहा कि परीक्षा में छात्राओं की पास प्रतिशतता 91.64% रही जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 87.69% रहा। छात्राओं का पास प्रतिशत छात्रों से 3.95% ज्यादा रहा। उन्होंने बताया,
3: मतलब मैं तो ये कहूँगा कमाल की बात है कि ठीक वही जिले अब भी अपने पास प्रतिशतता में उसी रैंक पर पूरे प्रांत में रहे हैं। चरखी दादरी जिला प्रथम रहा है, जेम जिला द्वितीय रहा है, इसके साथ साथ तीसरे स्थान पर महेंद्रगढ़ जिला रहा है और साथ साथ में पानीपत भी तीसरे स्थान पर रही है। दोनों की पास प्रतिशतता जो है एक बराबर रही है और सबसे निचले पायदान पर रहा है।
0: उन्होंने शहरी और ग्रामीण स्कूलों के परिणाम को लेकर बताया,
3: यदि हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र वाइज इस परीक्षा परिणाम की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की जो पास प्रतिशतता है वह 90.25% रही है और शहरी क्षेत्र की पास प्रतिशतता 87.94% रही है। यदि हम प्राइवेट और जो सरकारी विद्यालय की भी बात करें, प्राइवेट विद्यालयों की पास प्रतिशतता जो है वह 92.45% रही है और जो सरकारी विद्यालय है उनकी पास प्रतिशतता जो है वह 87.23% रही है।
0: उन्होंने आगे बताया कि सेकेंडरी परीक्षा में बैठे 4,556 स्वयं पाठी परीक्षार्थियों में से 3,190 पास हुए हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि सेकेंडरी मुक्त विद्यालय की परीक्षा में 5,772 परीक्षार्थी प्रथम बार प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 645 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। पास प्रतिशतता 11.17 रही। उन्होंने बताया कि सेकेंडरी मुक्त विद्यालय रीअपियर का परिणाम 47.64% रहा। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आज गुरुग्राम जिले में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी करीब 2,86,00,000 रुपए की विकास परियोजनाओं जनता को समर्पित की। इस अवसर पर पाटौदी की विधायक श्रीमती बिमला चौधरी भी मौजूद रही। स्वास्थ्य मंत्री ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें उपमंडल नागरिक अस्पताल हेली मंडी में लगभग 50,00,000 रुपए की लागत से बनाया गया ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, गाँव चंदू में लगभग 89,45,000 रुपए की लागत से नूरगढ़ में निर्मित सामान्य उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन और नहचाना गांव में 64,83,000 रुपए की लागत से निर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट पटौदी खंड के लिए डायग्नोस्टिक हब के रूप में कार्य करेगा, जहाँ विभिन्न लैब जाँच सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा। सुश्री आरती सिंह राव ने बताया कि गुरुग्राम में आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई नई विकास परियोजनाएं भी प्रस्तावित हैं। उन्होंने कहा कि जिले के बागनकी क्षेत्र में एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और धामरोज गांव में नया उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाना प्रस्तावित है। जिले में 8 नए उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसके अतिरिक्त रणसीका, रिठौज तथा सिधारवाली में 3 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण की घोषणा की। देश में घरेलू LPG की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी। भारत के 2 जहाजों ने 90,000 मीट्रिक टन से अधिक LPG के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नगर निकाय चुनाव में ऐतिहासिक विजय के लिए प्रदेशवासियों का आभार जताया। कहा, जनता ने विकास, सुशासन, पारदर्शिता और राष्ट्रवाद की राजनीति को स्वीकार किया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सेकेंडरी की शैक्षिक एवं मुक्त विद्यालय परीक्षा का परिणाम घोषित किया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
4: FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। 6:20 हुए हैं। समय है गीता संदेश का। आज आप सुनेंगे श्लोक 7-9 की व्याख्या, अध्याय रहेगा 3। प्रस्तुति डॉक्टर चितरंजन दयाल सिंह कौशल की।

0: श्रोताओं सादर नमस्कार। गीता संदेश कार्यक्रम में आज गीता के तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक से व्याख्या सुनिए। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मसक्तः सविशिष्यते। जो रोक मन से इंद्रियां आसक्ति बिन हो नित्य ही कर्मेंद्रियों से कर्म करता श्रेष्ठ जन अर्जुन वही। हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। अर्जुन ने यही प्रश्न किया था, यही जिज्ञासा की थी कि ज्ञान मार्गी श्रेष्ठ है या कर्मयोगी श्रेष्ठ है। तो उसकी शंका का निवारण करते हुए बहुत स्पष्ट शब्दों में भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म योग का जो आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। और कहा भी गया है ज्ञानम भारह क्रियाम विना। ज्ञान बड़ा अच्छा है, पवित्र है, ज्ञान की आवश्यकता है, किंतु ज्ञान भार रूप हो जाता है यदि कर्म न किया जाए। आडंबर से वहां बाहरी रूप से विहित कर्मों का त्याग करने वाले से तो इंद्रियों को मर्यादित रखकर विहित कर्मों को करने वाले कर्मयोगी को श्रेष्ठ बताने के लिए तू पद का प्रयोग किया गया है। पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां, इन दसों से ही कर्म करना संभव है। ध्यान रखने वाली बात है कि इंद्रियों को मर्यादित रखा जाए, इंद्रियां गलत व अनुचित दिशा की ओर न ले जाएं। संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में व भोगों में राग द्वेष से ऊपर उठकर सिद्धि असिद्धि अर्थात सफलता व असफलता में समभाव रखते हुए यज्ञ दान तप स्वाध्याय सेवा आदि कार्य करना ही सही मायनों में कर्म योग को अपनाना है। इसी से सुख शांति व संतोष की प्राप्ति संभव है, इसी से समाज में समरसता आ सकती है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्ञायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। बिन कर्म से नित श्रेष्ठ नियमित कर्म करना धर्म है। बिन कर्म के तन भी न सधता कर नियत जो कर्म है। हे अर्जुन, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। व्यक्ति भय व भ्रम के वशीभूत हो किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, वहां कर्तव्य पथ से विमुख हो निराशा व हताशा का मार्ग पकड़ लेता है, यह किसी प्रकार भी किसी के लिए श्रेयस्कर नहीं है। अर्जुन की तो भावना थी कि भगवान कृष्ण कह दें कि वे युद्ध मत कर, किंतु ये संभव नहीं, और यदि भगवान कृष्ण ऐसा कह देते तो अधर्म का ही आधिपत्य हो जाता। जो ये उनका एक प्रतिज्ञा वचन है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, ये फिर कैसे सिद्ध होता। अतः भगवान कृष्ण ने बार बार अपने कर्तव्य कर्म को करने पर ही बल दिया है। शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म का अवश्यमेव आचरण करना ही चाहिए। एक सैनिक योद्धा को अपना कर्म थोड़ा क्रूर भी लग सकता है, किंतु फिर भी वह त्याज्य नहीं, अपितु देश रक्षा रूप कर्म होने से, सबका हित करने वाला होने से अवश्य करणीय है। कई लोग कर्म करने की अपेक्षा कर्म न करने को ही श्रेष्ठ मान बैठते हैं, यह सब अप्राकृतिक व अत्यंत अहितकर है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास, प्रत्येक आश्रम की अपनी महत्ता व मर्यादा है, उसके अपने अपने शास्त्रोक्त कर्तव्य सर्वदा पालनीय ही हैं। सकाम भाव से भी कर्तव्य कर्मों का करना भी अपेक्षाकृत लाभदायक ही है, और निष्काम भाव की दृष्टि विकसित हो जाए तो फिर कहना ही क्या। सत्कर्म का सत्फल तो अवश्य मिलना ही है, फिर फलाशक्ति रखकर सर्वदा मन को क्यों व्याकुल व परेशान रखा जाए। आजकल अनेक युवा उत्तरदायित्व से बचने के लिए विवाह आदि से भी डरने लगे हैं, यह प्रवृत्ति बिल्कुल भी ठीक नहीं। प्राकृतिक रूप से ब्रह्मचर्य के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश सर्वविध मांगलिक व स्वाभाविक है, यह सब आश्रमों का आधार है। शास्त्रों में इसकी बड़ी महिमा वर्णित है। भय से इससे भागना ना तो इस लोक में श्रेयस्कर है और ना ही परलोक में कल्याणकारी है। कर्मों का स्वरूप से त्याग करके तो मनुष्य जीवन ही संभव नहीं, मर्यादित कर्तव्य कर्म ही करणीय है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। तद यज्ञ के शुभ कर्म सारे कर्म बंधन पार्थ हैं, अतएव तज आसक्ति सब कर कर्म जो यज्ञार्थ है। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों में बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। अपने स्वार्थ से व सकाम भाव से कर्म करना सामान्य रूप से सबका स्वभाव होता है, प्रकृति है। स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, किंतु निष्काम भाव से कार्य करना, परोपकार के लिए कार्य करना, ये संस्कृति है। स्वार्थ से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, स्वार्थ में अंधा होकर व्यक्ति अनुचित पापाचरण भी कर बैठता है, काम क्रोध का तांडव भी होता है। दुनिया में सारा कदाचार, भ्रष्टाचार, सारी समस्या इसी से कारण तो है कि हम स्वार्थ के घोर कूप में डूबे हुए हैं। उसी से बाहर निकालना गीता का कार्य है। सफलता में फूलकर कुप्पा व लोभी हो जाता है व्यक्ति, असफलता में निराशाग्रस्त होकर आत्महत्या तक कर बैठता है। लोक तो बिगड़ता ही है, पर लोक भी बिगड़ जाता है। कर्म बंधन जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ता। अनासक्त भाव से यज्ञ निमित्त अर्थात परोपकार व निस्वार्थ रूप किए गए कर्म मनुष्य के लिए बंधन कारक न होकर पाप क्षय कारक हो जाते हैं। निष्काम से अभिप्राय है, तुच्छ स्वार्थमा आसक्ति को त्याग कर निर्लेप बुद्धि से, मैं मेरा के घमंड को छोड़कर कर्तव्य बुद्धि से उत्साह पूर्वक कर्म किए जाना। अब कई कहते हैं कि आप निष्काम निष्काम करते हैं तो यदि कोई कामना नहीं होगी तो कोई व्यक्ति कार्य के लिए प्रेरित कैसे होगा। कार्य के लिए हम धन के लालच में, यश के लालच में, वित्तेषणा लोकेषणा से जो कार्य करते हैं वो एक सकाम कर्म की श्रेणी है, उसका उतना महत्व नहीं है, उसकी उतनी पवित्रता नहीं है, वो बंधन कारक है। और जो समत्व बुद्धि से कर्तव्य बुद्धि से किया जाता है वो एक उत्तमोत्तम श्रेणी का, हमें सत्व गुण की ओर ले जाने वाला कार्य है। और यज्ञ भावना को समझना, भारतीय संस्कृति यज्ञमय संस्कृति है और यज्ञ कर्म का जो उपदेश दिया गया वो यही है कि हम सबको कुछ दें, देवों को भी दें, भूतों को भी दें, पितरों को भी दें और सबका तर्पण करें। ऋषि ऋण से उऋण हों, देव ऋण से उऋण हों, पितृ ऋण से उऋण हों, ये जो भावना है, अतिथि यज्ञ करें, नृयज्ञ करें, बांट कर खाएं, यही यज्ञ भावना है। यज्ञ धातु से ये बना है, यज्ञ दिव्य पूजा संगतिकरण। यज्ञ ही विष्णु है, सच्चिदानंद व्यापक रूप है, विश्व नारायण के निमित्त सत्य सेवामय अनासक्त कर्म को यज्ञार्थ कर्म कहा जाता है। और विवेकानंद जी कहते थे, वी मस्ट ऑलवेज वर्क, वी कैनॉट लिव ए मिनट विदाउट वर्क। तो सार रूप में आज गीता के तीसरे अध्याय के 7वें, 8वें और 9वें इन 3 श्लोकों की व्याख्या आपने सुनी।
1: अभी आप सुन रहे थे गीता संदेश FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 होने को हैं। समय है कार्यक्रम किसान वाणी का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: कार्यक्रम किसान वाणी सुननी सब बन भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी और भाई इस दिन जो है ना हम खेती बाड़ी न लेकर अपने पशुधन न लेकर और भाई सरकार की जो है ना योजना है, क्योंकि सरकार भी नहीं चाह है कि जो हमारे किसान भाई हैं ज़्यादा से ज़्यादा भाई अपनी खेती में आगे बढ़ें और देश की उन्नति में अपना योगदान दें। पर भी इसी डाल जो है ना सरकार भी जो है ना कई बार नहीं देखा है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनका जो वित्तीय प्रबंधन है वो किस डाल होना चाहिए, जो किसान अपनी आमदनी को अपनी खेती में से जो है ना काट कर भाई किस तरह बचा कर रखा है। और एक बात का जरूर ध्यान रखें कि भाई जो आमदनी करी है उसका ज़्यादा जो है ना फजूल खर्चा भी ना हो। तो क्यों ना भाई इस बात ने लेकर आज हम बात भी कर रहे हैं कि भाई अपना बेहतर वित्तीय प्रबंधन किसान भाई किस तरह करें। किसान भाई ये सोचे हैं कि हमारी जो आमदनी है या भाई हम जो है ना आमदनी में तो पैसे की कुर बचावेंगे, इन बातों ने लेकर जो है ना किसान भाई सोचता रहा है। पर भाई एक किसान के लिए यह बढ़िया बात रहेगी कि भी जो उसका वित्तीय प्रबंधन है या उसके जो पैसे हैं किस डाल जो है ना अपनी खेती में उनका प्रबंध कराए और किस तरह छोटी छोटी सी बचत करके बड़ा धन कमा सके। तो इसी तरह जो है ना किसान भी अपनी खेती का जो काम कर रहा है उनका भी एक तरह का व्यवसाय है, जिस तरह जो दूसरे आदमी हैं वो अपना काम धंधा शुरू करके रखें, तो किसान भाई अपनी खेती में जुड़ा रहा है और अपने व्यवसाय को भाई चलाने के लिए हर आदमी ने सोचा है कि भाई किस तरह पैसे बचावें। और किसान का जो व्यवसाय है उसमें यह है कि भाई उसकी जो आमदनी है वो क्यों बढ़े, किस तरह जो दूसरे फजूल खर्ची है किस तरह उसको कम करें। तो एक किसान के रूप में भाई आप अपने वित्तीय प्रबंधन का भी भाई अच्छी डाल जो है ना कर सको हो। एक तो बात न्यू याद रखें कि भाई जो आय है और भाई कितनी आमदनी हुई कितना खर्चा होगा इसका रिकॉर्ड जरूर बना कर रखें, क्योंकि भाई दिन भर दिन ये सोचे हैं कि जो छोटी छोटी सी आय है वो बड़ी भी हो जाएगी। और भाई खर्च के बारे में जिक्र करें, किसान भाई क्या पर खर्च कर सका है, ज़्यादातर वो न्यू देखा है कि हमारी जो खेती है उसमें एक तो बीज पर खर्च कराए, दूसरा भाई खाद पर खर्च करेगा और तीसरा भाई जो खेत में मजदूर लगा रहे हैं उनके ऊपर भी खर्च करेगा, साथ साथ में भाई जो ट्रैक्टर चलावेंगे ट्रैक्टर में भाई तेल पानी पड़ेगा उसका भी भाई वो बचाने का पूरा हिसाब किताब रखना पड़ेगा। जब जाकर छोटी छोटी सी बचते हैं तो इनसे जो है ना बड़ी आमदनी आप रख सको। एक बात को और ध्यान रखें साथ ही साथ, क्योंकि जो साल शुरू हुआ है और किसान भाई ने सोचा है कि भाई ईव जो है ना हमने के काम करने पड़ेंगे साल भर, उनका सब का जो है ना लेखा जोखा अपने हिसाब से रखा है, जिस तरह के भाई जमीन है ट्रैक्टर है या भाई कोई लोन लेना है खेती के लिए या और जमीन लेनी है भाई किसी डाल का जो ऋण लेना है आपने उसका विवरण भी आपने तैयार करना है। और कई बार ने सोचा किसान भाई थोड़ा सा जो है ना आमदनी कम रह जाए और भाई देनदारी थोड़ी बढ़ जाए तो नहीं सोचा है कहीं ना कहीं तो भाई लोन ले लें, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि वो कहाँ से लोन लेगा। और कई बार तो जो अनावश्यक खर्चे हैं उनमें भी कटौती करनी पड़ेगी और इसी तरह भाई कृषि बजट भी आपने बनाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि खेती के सीजन में पहले बजट में यूँ देखना है कि कितने पैसे का भाई बीज आवेगा और कितने पैसे की खाद आवेगी और भाई कितना मजदूरों पर खर्चा करना पड़ेगा, इस डाल जो है ना छोटा मोटा के हिसाब किताब जोड़ लेना चाहिए जब ही जाकर भाई वो अपना वित्तीय प्रबंधन कर सका है। और इसी के अनुसार भी अपने जो खेत है उसका उसमें कौन सी फसल ले ताकि जो आमदनी है वो ज्यादा हो सके। और ऋण संबंधी या भाई कोई क्रेडिट कार्ड लेना है तो नहीं सोचा है कि भाई के कराएं, अगर लोन भी लेना है तो भाई ऐसी जगह ते लें जड़ा जो है ना कम ब्याज पर ऋण मिल सके। और एक तो बात याद रखें कि जो किसान भाई हैं किसान क्रेडिट जो कार्ड है वो ले लें, इससे जो है ना किसान भाइयों का बड़ा फायदा भी रहेगा, क्योंकि जो किसान क्रेडिट कार्ड है उससे जो है ना किसान को पैसे मिल सका है। भाई ये नहीं कि भाई ऋण लेना लेना है, उसको चुकाना भी है। अगर भाई आपने ऋण ले भी लिया तो भाई उसकी जो किस्तें हैं उसको समय समय पर भाई उनका भुगतान करना चाहिए, नहीं तो भाई जहाँ तक ऋण लिया आपने लोन लिया है उड़ा जो है ना ज़्यादा जो आपको पेनल्टी लावेंगे जुर्माना लावेंगे तो भाई कह कर फिर ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। और भाई जो आपने ऋण लिया है उसका आपने सही तरीके से उपयोग करना है खेती बाड़ी में, या कोई आपने भाई खेती संबंधी मशीनरी लेनी है, या भाई पानी के ऊपर कई बार देखा है कि भाई जो ट्यूबवेल वगैरह ख़राब हो जाए तो उस पर जो ना पैसे खर्च हुआ, तो भाई इस डाल की जो छोटी मोटी जरूरतें आपने करनी है तो उनके ऊपर करें। और भाई एक बात और ध्यान रखें किसान भाई, एक फसल के ऊपर कभी निर्भर न रहें। ये सोचे हैं कि भाई जो एक फसल है, अब देखा है खास करके जो है ना ज़्यादातर किसान भाई गेहूं के ऊपर या धान के ऊपर जोर देकर रखा है, तो उनमें हम तो ये कहें कि भाई मिश्रित खेती अगर करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि भाई ऐसी फसलें जिस तरह की जो दलहनी फसलें हैं उनकी ज़्यादा खेती करें, क्योंकि भाई आप देख भी रहे हैं जो दलहनी फसल हैं उनकी पैदावार कम ही रहा है। और भाई खेती के साथ साथ जो है ना दूसरा जो साथ में व्यवसाय भी कर सके हैं, जिस तरह के जो मछली पालन है सहायक धंधे के रूप में इसको ले सके हैं, या मधुमक्खी पालन है, या डेयरी उत्पाद करने आपने या डेयरी खोलनी है भाई, तो ये छोटे छोटे से काम जो है ना आप बराबर में कर सको हो, इससे भी जो है ना खेती के साथ साथ आमदनी अच्छी हो सका है। और भाई कई बार तो न्यू देखा है कि जो आपातकाल में कई बार फसल खराब हो जाए तो भाई संकट आ जाए, कोई बात नहीं भाई, तो आप थोड़े बहुत पैसे बचा कर रखो, क्योंकि भाई अगर थोड़े बहुत पैसे आप बचा कर रखेंगे तो भाई उस संकट की घड़ी में आपके काम आ सके हैं। और भाई एक बात और है, सरकार भी जिक्र कर दे रहा है, हम भी कहें कि भाई सरकार ने भी एक योजना चला रखी है कि भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भाई वो जरूर करवा लें, क्योंकि कई बार जो है ना पानी का संकट आ जाए, बाढ़ आ जाए, या कोई और दूसरी भाई समस्या आ जाए, खेती में नुकसान हो जाए, तो उससे जो है ना आपकी जो थोड़ी बहुत भरपाई है वो हो सके। और साथ साथ में भाई जो सही समय पर आपने बिक्री करनी है, जब भी भाई बाजार में फसल के दाम कम हो तो अपनी उपज को थोड़ा बहुत बचा कर रखें, क्योंकि भाई कई बार देखा है जब सीजन आवा है तो कोई फसल सस्ती बिक जाए, पर थोड़ी बचा कर रखेंगे, थोड़े समय के बाद बेचें तो उसका भंडारण करके रखें, तो भाई बाद में बेचेंगे थोड़े दाम फालतू मिलेंगे, इससे जो है ना आपकी बचत होगी और आपका फायदा भी होगा। एक बात और है भाई, जिस तरह के सही समय पर आपने बिक्री कर ली, सही समय पर आपने और जो आगे जो आप वित्तीय स्वास्थ्य है इसको मजबूत करके खेती में आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सका है, तो भाई छोटी छोटी जरूरतें के साथ साथ आपने बचत भी करनी है और समय पर, ताकि वो आगे काम आवे। तो यह तो हमने बात करी भाई अपना बेहतर वित्तीय प्रबंधन किसान किस तरह करें। और भाई लगी हाथ एक चर्चा और करेंगे हम, क्योंकि किसान भाई जिक्र भी कर रहे हैं, हम भी करते रहे हैं कि भाई सरकार जो है ना कई डाल की योजनाएं चला के रखा है, तो भाई आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिस तरह के जिक्र भी कर रहे हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन भाई एक बहुत ही बढ़िया योजना है सरकार ने चला रखी है, और यह जो योजना है ये 2007 में शुरू करी गई थी, और एक जो है ना ये केंद्र प्रायोजित योजना है, और जिसका उद्देश्य क्या है कि भाई जो चावल है, गेहूं है, दालें हैं या मोटे अनाज हैं सिरियन, और भी जो और दूसरी जो फसलें हैं उनके उत्पादन में आपने बढ़ोतरी करनी है, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, क्योंकि भाई जब हम इनके खाद्य जो पदार्थ हैं किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा बोएंगे, क्योंकि भाई देश की आबादी ना देखते हुए ज़्यादातर जो है ना खाद्य पदार्थों की जरूरत पड़ा है, तो भाई इस करके जो है ना 2024-25 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन कर दिया गया था। और इसका उद्देश्य भी यही है कि जो बेहतर तकनीक है एक तो वो अपनानी है, और प्रमाणित बीज उनका वितरण, बढ़िया बीज लेने हैं, और मिट्टी का जो स्वास्थ्य है उसमें भी सुधार करने की जरूरत है। कई बार किसान भाई ने सोचा है कि जब भी भाई आप फसल बो हो और फसल पक्का तैयार हो जाए, और कई बार तो

फसल जो है ना कम हुआ है, पर आपने जो है ना उस मिट्टी की जांच नहीं करवाई, क्योंकि भाई उसमें कोई ना कोई पोषक तत्व की कमी रहेगी। तो भाई जब भी आपका खेत खाली हुआ है, इस तरह के आजकल का जिक्र कर रहे हैं, तो इस समय भाई आप जो है ना खेत की जो मिट्टी है उसकी जांच करवानी चाहिए कि उसमें कौन कौन से पोषक तत्व विद्वान हैं भाई और कौन कौन से नहीं हैं। क्योंकि जिन पोषक तत्वों की कमी जमीन में रहेगी वो तो हमने देने पड़ेंगे, पर भाई जिनकी मात्रा ज़्यादा है उसको कम करना पड़ेगा। इससे जो है ना मिट्टी की जाँच करवाने से ही पता लगेगा। और फसलां का जब प्रकार का जिक्र करें तो भाई चावल है, गेहूं है, दलहन है, मोटे अनाज हैं, और भाई इसके साथ साथ मक्का, जौ, बाजरा और कुछ वो जो है ना भाई वाणिज्यिक फसलें जिनका जिक्र करें तो भाई कपास का है, जूट है या गन्ना है। इस डाल की जो फसलें हैं वो सारी इसमें ली गई हैं। और भाई जो किसानों को मिनी किट कृषि यंत्र और प्रदर्शन के लिए भाई वित्तीय सहायता प्रदान करी जाए है, और ये जो भाई योजना है इसका देखो एक तो काम यह है कि जो नया नाम 2024-25 में इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन के रूप में पुनर्गठित किया गया था, जिस पर भाई पोषण पर विशेष जोर दिया गया, और दलहन में भाई आत्मनिर्भरता भी बनानी है, क्योंकि भाई इस मिशन का भी यही उद्देश्य है कि भाई इसमें जो दलहनी फसलें हैं उनका बढ़ावा देना है। और ये मिशन किसानों को भाई उन्नत तकनीक के साथ साथ उत्पादन बढ़ाने के लिए सब्सिडी और जो तकनीकी सहायता है वो प्रदान करा है। तो भी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है इसका जो नाम बदला गया था, और इसके गिलां गिलां भाई जो और इस प्रणाली में जो देखा है कि जो उत्पादन है उसका वितरण है या एकीकृत पोषक तत्व या कीट प्रबंधन तकनीक फसल मौसम के दौरान प्रशिक्षण के माध्यम से भाई किसानों को जो काम करने का तरीका है उसको बढ़ावा देना है। और सरकार भी यही चाहे कि भाई जो किसान है ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का भाई फायदा उठाएं, क्योंकि ये योजना किसानों के लिए फायदेमंद है। और भाई ये तो हमने जिक्र कर लिया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर, और भाई ईव जो है ना थोड़ा सा जिक्र करेंगे मौसम ने लेकर, क्योंकि भाई मौसम जो है ना थोड़ा सा गर्म होने लग गया, तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू होगी। और आज के अधिकतम तापमान का जिक्र करें तो भाई वो रहा 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। और कल है भाई अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि भाई आज और जो कल का तापमान है लगभग बराबर रहने की संभावना है। और कल कार्यक्रम रहेगा भाई अन्नदाता, और उसमें जिक्र करेंगे ट्रैक्टर व अन्य कृषि उपकरणों में ईंधन की बचत किस तरह करें, और नई फसल नई उमंग में बात करेंगे दलहनी फसल अरहर की बिजाई पर, साथ साथ में भाई जानकारी देंगे भैया ने प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक कीटनाशक हांडी खाद कैसे बनाएं और भाई उसका उपयोग जो है ना किस डाल करना है। तो ये तो कार्यक्रम का हमारा विषय रहेगा कल है, और भाई ईव करावेंगे भाइयों का मनोरंजन। तो आओ सुनते हैं भाई ये रागनी।

और भैया ने ये तो सुनी रागनी गायक कलाकार थे रमेश कुमार सैनी हुए साथी। और भाई ईब जो ना बात कर रहे हैं आज की नसीहत में, बागा में सूक्ष्म सिंचाई विधि का के महत्व रहा है, क्योंकि भाई जो बाग है कई बार किसान भाई ने सोचा है, कई बार तो क्या है जो पहले तो नहीं करे करें थे भाई सीधा ही पानी दे दे करें थे जिस किले में बाग लगा रखा था, पर भाई धीरे धीरे जो है ना तकनीक बढ़ती चली गई और पानी की बचत की तरफ भी भाई रुझान बढ़ गया। तो हम तो ये कहें कि भाई आप जो है ना जो सिंचाई है वो सूक्ष्म सिंचाई का मतलब यह है कि भाई पानी की कम बचत करो, पानी की बचत करना ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम पानी की बचत नहीं करेंगे इस तरह के फुहारा विधि ला दे हैं कई बार टपका विधि से सिंचाई कर दे रहे हैं, तो भाई इसी तरह जो है ना सूक्ष्म सिंचाई विधि। तो किन्नों की फसल का जिक्र करें तो भाई इसमें जो है ना किसान आमदनी बढ़ाना सके हैं, क्योंकि जो नींबू वर्गीय परिवार है इसमें जो है ना पानी की बचत करना भी बड़ा फायदेमंद रहा है। पर जिस तरह कई बार ने देखा है कि फल जिस तरह आम है केला है इसके बाद जो है ना यो आवा है, तो उत्तर भारत में भी जो किन्नू फल काफ़ी प्रसिद्ध रहा है इसकी खेती खास करके आप देखा है कि पंजाब में बहुत हुआ है, हरियाणा में भी हुआ है, और इस प्रजाति के पौधे बारहमासी या सदाबहार हुआ है, तो इन पौधों को भाई पूरे साल खाद और पानी की जरूरत बनी रहा है। पौधे पानी के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभावा है और पौधे पानी के द्वारा भाई जो जरूरी पोषक तत्व है उन्हें अवशोषित करके पौधे में बढ़वार का काम करा है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से भाई हम न केवल कहकर हम भाई खाद और पानी को बचा सके बल्कि खाद और पानी की जरूरत के अनुसार पौधे की जड़ों तक पहुंचा सका है। और इसी तरह जो है ना पानी और खाद इसकी कमी तय पौधे की जो पैदावार है या उसकी जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ सका है। जो नींबू वर्गीय पौधे में सूक्ष्म सिंचाई के ते जो है ना भाई खाद और पानी देने तय पैदावार और फलों की जो गुणवत्ता है उसमें बढ़ोतरी हुआ, और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली तय खाद और पानी की मात्रा पौधे की एक तो आयु है मिट्टी का प्रकार है या भाई बारिश है पौधे तय पौधे की दूरी मौसम के अनुसार भाई पानी की मात्रा तय करी जावा है। और इसी तरह भाई अनार के बाग में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की जरूरत पर बात करें तो भाई अनार का पौधा भी पूरे साल फूल और फल तर देंदा रहा है, फिर भी भाई इस पौधे में कुछ समय के लिए जो है ना फूल और फल आने की प्रक्रिया को रोक सका है, जिस तरह कि हम पौधे को आराम देकर आगे आने वाली जो बाहर से अच्छी पैदावार और फल की गुणवत्ता बढ़ा सका है। अनार के पौधे में कई क्रम भाई तीन बार बाहर आवा है, जिस तरह के अंबे बाहर जनवरी तक फरवरी में आवा है, आस्था बाहर सितंबर तक भाई अक्टूबर तक, और मृग बाहर भाई जून तक जुलाई तक। तो भाई अलग अलग जलवायु और बारिश या मानसून के अनुसार फल बाहर का चयन किया जा है, जिससे जहां पर जो है ना मानसून जून महीने में या भाई सितंबर के महीने तक चला है तो जून वाली बाहर फायदेमंद हुआ है, और इसी प्रकार जो है ना मानसून अगस्त में हो तो भाई अगस्त महीने की जो बाहर है वो फायदेमंद रहा है। तो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से हम मिट्टी में नमी की मात्रा बराबर कर सके हैं और जिस तरह की अनार के फल के में जो फटने की समस्या आ जाए है उसका निदान कर सके है, और अनार में प्रतिदिन एक दिन छोड़कर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से सिंचाई कर सके है। तो अच्छी व्यवस्था में हम पानी की भाई उचित मात्रा किसी समय पर पौधे की जड़ों के पास देकर सिंचाई की दक्षता को बढ़ा सका है। तो अनार फल फटने का कारण क्या है कि भाई वो समस्या कैल्शियम बोरोन और पोटास की कमी के कारण हो जाए, और सिंचाई के समय में भी जो अधिक अंतर होना तो ये पौधे की जो मिट्टी में नमी एक बराबर न होने के कारण भी भाई हो सके। सूक्ष्म सिंचाई तो भाई हम मिट्टी में नमी बराबर कर सके हैं, तो यो दिन भाई रात वातावरण में नमी की कमी के कारण भी हो सका है। तो ये तो हमने जिक्र कराया कि भाई जो बागा में सूक्ष्म सिंचाई विधि का के महत्व रहा है। और भाई जानकारी एक और देंगे भैया ने, गाभिन पशुओं की ब्याने से पूर्व

0: ऐसा जो है ना जरूर क्यों नहीं, क्योंकि भाई पशु को अपने शरीर की जो जरूरत है अधिक, उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको खुराक चाहिए। अगर पशु को भाई उसकी खुराक का आधा या दो तिहाई हरा चारा मिलता रहे तो भाई उसकी जो शारीरिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सके है। लेकिन भाई गर्भाशय में पल रहे बच्चे की उसकी बढ़ती उम्र के हिसाब से पोषक तत्वों की जरूरत पड़ा है। तो ब्याते समय इन बातों का ध्यान रखें, तो जब भी पशु ब्याने के करीब हो तो भाई वह बेचैन होकर बार बार उठेगा बैठेगा तो पशु के चेहरे और आंखों से दर्द का आभास दिखेगा। तो पशुपालक को भाई एक बाल्टी गर्म पानी, सरसों का तेल, साबुन और एक तेज़धार चाकू, जो कीटाणु नाशक दवा है जिस तरह के डिटोल है, इससे साफ करे हो और ब्याते समय पशु के भाई कमरे में तैयार रखनी चाहिए। और पशु को भाई ब्याते समय ऐसे कमरे में बांध देना चाहिए जिससे फर्श पर भाई कोई पुआल हो, भूसा हो या गन्ने की कड़बी गे रखी हो भाई, ताकि पशु को बैठने में, आराम करने में कोई दिक्कत ना हो और पशु अच्छा महसूस करे। और भाई जब पशु ब्याजा है तो भी बच्चे को भाई कोई चोट फेट ना लगे। और ब्याने के बाद भी भाई देखभाल करना बड़ा जरूरी हो जाए, क्योंकि भाई बच्चे के जो है ना योनि मार्ग तक बाहर आने पर जो मादा पशु को बड़ा आराम महसूस हुआ है और खड़ा होकर अपने बच्चे को चाटना शुरू कर दे है, तो भाई चाटने से पहला ही पशुपालक को सबसे पहले बच्चे की जो नाभि है 3-4 इंच आगे नाल को धागे में बांध कर उसके आगे पास रखे जो साफ चाकू है या ब्लेड है उससे काट देना चाहिए। बच्चे का भाई जेर ते समान टूट जाए, काटे हिस्से के ऊपर भाई कोई डिटोल टिंचर लगा दें ताकि भाई इन्फेक्शन ना हो, और सूती साफ कपड़े तय गर्म पानी की सहायता से साफ कर दें। और बच्चे की बड़ी हुई जो पीले रंग की घुरी भी काट दें, क्योंकि जो खुरी है भाई उसको काटना बड़ा जरूरी हो जाए ताकि बच्चा खड़े होने पर फिसल ना पावे। और बच्चे के जो नथुनिया भाई आँख हैं उनको सबसे पहले साफ करना चाहिए ताकि अच्छी तरह सांस ले सके। मादा पशु के थन गर्म पानी से साफ करके भाई बच्चे के मुंह में थन देकर दूध पिलाने की जरूरत बिल्कुल महसूस होगी। तो भाई ब्याने के 4 से 8 घंटे के अंदर जेर अवश्य बाहर आ जानी चाहिए। और ध्यान रखें कि जेर के बाहर निकलते ही पशु से तुरंत दूर करके खड्डे में दबा दें। कई बार पशु अपनी जेर को खुद खा ले है जिससे भाई जो हार्मोन है पशु को दूध देने की जो ताकत है उसमें कमी आ जाए। और तो भाई ये इस बात का भी किसान भाई ध्यान रखेंगे। तो ये तो हमने चर्चा कर ली भाई गाभिन पशुओं में ब्याने से पहले और बाद में किसकी देखभाल करनी है। एक जानकारी देते किसान भैया ने, किसान कॉल सेंटर का नंबर बता दें, और भाई वो नंबर रहा है 1551। इस नंबर पर भाई कोई भी खेती बाड़ी संबंधी जानकारी है किसान भाई 1551 पे कॉल करके ले सका है।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी है? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: परम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। और भाई इसे गलाए कार्यक्रम किसान वाणी यहीं संपन्न हो रहा है। साले भाई ना दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।

0: कार्यक्रम तारीफ सन सुनिए सब बण भैया नायर साले भाई की एक बार फिर राम राम। और कार्यक्रम ग्राम संसार में भाई जो तारीफ संद है, तारीफ संद मैम जो ना भाइयों के मन पसंद लोकगीत रागणी बोरी भी फिल्मी गीत भी हम लेके आवा हैं। पर भाई भैया के जो संदेश भी बहुत सारे आ रहे हैं और भैया के संदेश जो है ना बचेंगे, उसके बाद भाई उन्होंने जो फरमाइश हमारे द्वारा भेजी है उनके अनुसार भाई उनके पूरी करने की भी कोशिश करेंगे। पर भाई सबसे पहला भैया का करावेंगे मनोरंजन और भाई पहला ले लें थोड़ा सा अंतराल।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: यह संदेश यूनेस्को व आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
4: जलवायु और पानी के भीतर जीवन, यह यूनेस्को का संदेश है। महासागर पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करते हैं, लेकिन आज वो गर्मी, अम्लीकरण और प्रदूषण जैसे बड़े संकटों का सामना कर रहे हैं। कोरल रीफ, मैनग्रोव और समुद्री घास जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरण तेजी से नष्ट हो रहे हैं, लेकिन महासागर, हवा और लहरों से स्वच्छ ऊर्जा, स्वस्थ मछली पकड़ने के जरिए और समुद्री जीवन के लिए संरक्षित क्षेत्र देकर जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद भी करते हैं। इसलिए जलवायु को स्थिर और पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने के लिए महासागर की रक्षा करना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ ने कुछ ही दशकों में लगभग 50% कोरल खो दिए हैं।
0: और भाइयों ईब जो है ना करावेंगे भैया का मनोरंजन। और भाई मेल जो है ना हमारे द्वारा बहुत आ रही हैं। सबसे पहला जो संदेश आ रहा है वो आया भाई नागढ़ से। लिखने वाले हैं भाई इंद्राज, पार्थ, परीक्षित, हार्दिक और उनके परिवार के सभी सदस्य। तेजामुड़ी से कबीर संधु, प्रणीत, वरनीत कौर और उनके परिवार के सभी सदस्य। जगुड़ी से हैं रणधीर सिंह, गुरमेजो, गौरव, वीरेन, प्रवीण, युगम, कीरत, मनराज और उनके परिवार के सभी सदस्य। आओ सुनते हैं इनकी फरमाइश पर भैये रागणी।

और भैया ने ये तो सुनी रागनी। गायक कलाकार थे महेंद्र सिंह समध्यान और उनके साथी। और भाई अगले जो लोकगीत की फरमाइश कर रहे हैं वो जो आया हमारे द्वारा संदेश आ रहा है खुर्जा उत्तर प्रदेश से, लिखने वाले हैं तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा, उनके परिवार के सभी सदस्य। गांव रामसवाला, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। ब्रिजपाल, श्यामवीर, पूजा देवी, मोनी देवी, सोनम, उन्ती, उत्सव और उनके परिवार के सभी सदस्य। कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाड़ा से हैं। रवि कुमार, राहुल, जयप्रकाश, प्रियंका, गुरकृत, मन्नत, गुरशब्द और उनके परिवार के सभी सदस्य। आओ सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये लोकगीत।

0: और भाई ने ये तो सुने लोक गीत। और भाई जो अगला संदेश हमारे द्वारा आ रहा है वो आया है गांव उगाड़ा जिला अम्बाड़ा से। लिखने वाले हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती, राघव, हरमन, उनके परिवार के सभी सदस्य। शेरगढ़ करनाल से हैं प्रेम सिंह, रामपाल, सावित्री, राजवंती, निर्मल, शमशेर, लक्की, पूरव और उनके परिवार के सभी सदस्य। और आजाद नगर कुरुक्षेत्र से हैं राजेश, बलवान, कृष्ण, विक्की, पिंटू और उनके परिवार के सभी सदस्य। और भाई एक भाई ने और संदेश भेजा है पर गांव का नाम या शहर का नाम नहीं लिखा। लिखने वाले हैं भाई जीतराम सैनी, यशपाल, नेविस, देवांश, मांगेराम और उनके परिवार के सभी सदस्य। आओ सुनते हैं इनकी फरमाइश पे अगला ये लोकगीत।
1: न बोलिया रे 11 करोड़ की 11 धजा कदे

और भैया ना ये तो सुनी रागनी गायक कलाकार थे रणबीर सिंह वह साथी। और इसी के लिए भाई कार्यक्रम तारीफ संध्या संपन्न हो रहे हर साले भाई ना दे इजाजत। अच्छा भाई राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। 7:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जय जवान।

कार्यक्रम जय जवान सुनने वाले हम सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

0: एक आवाज जो बचपन में सुनी थी,
1: एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी,
0: एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है।
1: हम सबकी अपनी आकाशवाणी 90 साल की हो रही है।
0: 90 साल की सेवा, संवाद और संस्कार की यात्रा।
1: आइए इस गौरवमय अवसर पर हम सब मिलकर कहें,
0: आकाशवाणी
1: विश्वास की आवाज।
2: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
4: प्राधीनता को जहां समझा श्राप महान, प्राधीनता को जहां समझा श्राप पैदा करती दीवाने, मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय जवान FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र को सुन रहे हैं। 7:45 हुए हैं। समय है कार्यक्रम ऑर्गन इंडिया की। आज आप सुनेंगे कड़ी संख्या 2।
1: आप सुन रहे हैं AIR FM कुरुक्षेत्र और अब समय हो गया है ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक उपहार का।

0: नमस्कार, मैं मीनू ऑर्गेन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में आपका स्वागत करती हूं। ऑर्गेन इंडिया दिल्ली की एनजीओ पराशर फाउंडेशन की पहल है, जो अंगदान, उत्तक दान और देहदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करती है। आज के कार्यक्रम में हम अंगदान से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आए हैं।
1: आप सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार, मैं हूं सागर। आज हमारे साथ हैं अमूल्या मैम। अमूल्या मैम है बेंगलोर की रहने वाली और इन्होंने अपना लिवर डोनेट किया था। हाय मैम, नमस्कार, आपका स्वागत है। मैम, सबसे पहले जानना चाहूंगा एक पूरी जर्नी के बारे में, थोड़ा सा हमें लेकर चलिए, बचपन से लेकर अपनी आपकी लाइफ कैसी रही।
2: मैं तो पूरे इंडिया में मतलब रह चुकी हूँ। मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि मैं अपने पापा के बैंक का जॉब था, तो ट्रांसफर्स के कारण हम साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट वेस्ट, काफी अलग अलग प्रदेशों में रह चुके हैं। फिर आंध्रा में हम सेटल हुए, वहां से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की, फिर मैंने अपना MBA किया। तो ये मेरा प्रोफेशनल जर्नी रहा है अभी तक का।
1: तो सीधा मैम, मैं पॉइंट पर आना चाहूंगा कि आपने अपना लिवर डोनेट किया, किसको आपने डोनेट किया, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, उनको क्या प्रॉब्लम हुई थी।
2: मैंने अपना लिवर डोनेट किया अपनी तब 7 साल वाली लड़की को, जिसका नाम मायरा है। तो ये लिवर डोनेशन मायरा के लिए था। हाँ, ये मेरी बेटी है। जैसे हमारे समक्ष आया, काफी मतलब सरप्राइजिंग और आश्चर्य वाली बात थी, क्योंकि हम लोगों का लाइफस्टाइल वैसे काफी सीधा साधा लाइफस्टाइल है। बट जब सडनली हम लोगों ने जॉन्डिस का थोड़ा सा हमें मतलब महसूस हुआ कि आंखें थोड़ी पीली दिख रही है, तो फिर हम ऐसे डॉक्टर के पास कंसल्ट करने गए थे। तो फिर तब जाकर मतलब काफी कुछ बदला अगले 7 दिनों में, जिसके लास्ट चरण में लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ा।
1: थोड़ा सा मायरा के बारे में हमें बताइए मैम, कि मायरा किस तरह की बच्ची है और क्या उसका लाइफस्टाइल हुआ करता था।
2: काफी एक्टिव है मायरा वैसे। तब तो वो बैडमिंटन खेला करती थी, डांस क्लासेस जाती है, कीबोर्ड सीखती है और काफी स्कूल में अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेती थी।
1: अमूल्य मैम, तो क्या कोई भी ऐसी चीज है मायरा की लाइफ की जो आपको ऐसा लगता हो कि ओके, इसको हम लोग अवॉइड कर सकते थे।
2: अभी जो हमारा केस था वो काफी मतलब जेनेटिकली मतलब जेनेटिक कंडीशंस में आता है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर हम अवॉइड कर सकते थे, तो इसका मतलब एक ही उपाय होगा कि हम काफी स्क्रीनिंग और मेडिकल वैल्यूएशंस पे ज्यादा फोकस करें। जनरली बच्चों के चक्कर में हम लोग इतना मतलब, जैसे अभी हम एडल्ट्स में एनुअल हेल्थ चेकअप करवाते हैं, हम जनरली अपने बच्चों का ये सब नहीं करवाते। तो ये एक ऐसा तरीका हो सकता है जहां हम शायद आज नहीं सोच रहे हैं, बट जैसे अगर आपके बच्चे हैं, आपके घर में बड़े हो रहे हैं, तो एनुअल रूटीन होना चाहिए कि आप एक पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर रहे हो, उनसे पूछ रहे हो कि ऐसी कोई चीज है जो प्रोबेबली हम अभी नजरअंदाज कर रहे हैं, या जिसका हमने टेस्ट नहीं करवाया है, या कोई ऐसा टेस्ट है वैक्सीनेशन लेने के बाद जो अब के जमाने में करवाना चाहिए, जो हमने पहले नहीं करवाया था।
1: थोड़ा सा हमें बताइए वो फेज कैसा था और क्या थॉट्स हुआ करते थे आपके, मायरा के सिम्टम्स क्या थे।
2: काफी पेनफुल और टर्मोइल वाली कंडीशन थी सागर जी। अभी मतलब आप जो कह रहे सही है, बट ये काफी इम्पोर्टेंट है कि दर्शकों तक ये समझ पहुंचे, ताकि अगर आपको ऐसा कुछ आपके आसपास में किसी की दशा ऐसी हो या कभी ना चाहते हुए आपके साथ घटे, तो आप इसको बेटर फेस कर पाओ। तो हम लोग, जैसे जो हमारा जर्नी था वो ऑलमोस्ट 40 दिन का था। तो जिस दिन हमने मायरा को एडमिट किया था फॉर रेगुलर जॉन्डिस चेकअप, वहाँ से ये बात शुरू हुई थी। तो इसके बाद 2-3 दिन तक मतलब जॉन्डिस की ट्रीटमेंट की तरफ से ही सब कुछ चल रहा था, बट हमको भी काफ़ी क्लैरिटी नहीं मिल रही थी डॉक्टर से कि ये हो क्या रहा है। मतलब ना कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा था, ना कुछ समझ आ रहा था कि मतलब क्या, व्हाट इज़ नॉट वर्किंग। तो आफ्टर 2-3 डेज तब जाकर हमारी लिवर ट्रांसप्लांट टीम जो थी हॉस्पिटल की, तब जाके हमसे मिली और उन्होंने हमको बताया कि यहाँ पे जो लिवर का जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है, वो मायरा का लिवर नहीं कर पा रहा है। तो देर इज एन एक्यूट लिवर फेलियर, ये टर्मिनोलॉजी थी। तो एक्यूट लिवर फेलियर होने के कारण मतलब वो जो भी खा रही है, पी रही है, वो एकदम से फ्लश आउट हो जाता था। तो इसीलिए बाहर से काफी सप्लीमेंट्स देने पड़ रहे थे इन टर्म्स ऑफ IV। बट एकदम 4 डे के बाद से जो हमने देखा, उसकी काफी कंडीशन उसकी खराब होने लगी थी। पूरा उसका बॉडी जैसे एकदम पीला पड़ गया था, आईज काफी पीली हो गई थी, काफी हाई फीवर हो गया था। तब जाके हमको जब लिवर ट्रांसप्लांट टीम मिली, तो उन्होंने बताया कि ऐसे लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा एंड दिस इज द ओनली ऑप्शन। एंड जब हमने पहली बार बात सुनी, तो हमारे मतलब हमें रजिस्टर ही नहीं हुआ, क्योंकि ये पहली बार हमने सुना था, कभी हमने फैमिली में किसी का ऐसा कोई केस ना देखा था ना सुना था आसपास में भी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब उसका पूरा लिवर रिप्लेस किया जाएगा एंड हम बाहर से एक फॉरेन लिवर लेकर आएंगे एंड उसको बॉडी में ट्रांसप्लांट करेंगे। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी डोनर है उनके पैरामीटर्स मैच करे, वो जो लिवर हम लेकर आएंगे वो लिवर हेल्दी हो, उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो, सो दैट वी आर एबल टू गिव हर अ बेटर एंड अ न्यू लिवर। मतलब ऐसे प्रोसेस स्टार्ट हुआ, क्योंकि अब जब ट्रांसप्लांट वगैरह की बात करते हो तो इंश्योरेंस वगैरह भी एकदम हैंडी नहीं आता, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आपके पास एक फाइनेंशियल सरप्लस भी हो। तो तभी हमने दो तीन और ओपिनियंस भी लिए, बहुत कम विंडो था हमारे पास, बट फिर भी मेरी छोटी बहन भी डॉक्टर है तो उसने भी अपने हॉस्पिटल में बात की, तब जाके थोड़े डॉक्टर रिकमेंडेशंस भी आए, बट लकीली उनका जो रिकमेंडेशन था जो हमारे डॉक्टर थे वो एक ही थे, तो काफी मतलब हमें वहां से कॉन्फिडेंस मिला। तो जैसे मेरी बहन थी तो वो काफी मतलब बात कर रही थी मेडिकेशंस के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कुछ बदला जा सकता है, तो वो काफी हमारे पास एक्सटेंसिव सपोर्ट था। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर जब जाके हमने मतलब डोनर टेस्ट के लिए, जनरली पेरेंट्स आर द फर्स्ट चॉइस, तो डॉक्टर्स पेरेंट्स को फर्स्ट ऑप्शन देते हैं टू बी द डोनर, एंड बेस्ड ऑन द टेस्ट मेरा वाज अ रेलेवेंट प्रोफाइल फॉर हर डोनर। तो आइडियली वी वेर आल्सो नॉट प्रिपेयर्ड कि मैं करूंगी। जब हमें पता चला था कि डोनर बनना है तो माय हस्बैंड ने बोला था कि कब मैं जाता हूँ, सो दैट मतलब मायरा के साथ आप रहोगे पोस्ट सर्जरी टू रिकवर एंड हेल्प हर रिकवर सूनर। तो बट उनका मतलब ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ, तो फिर इट हैपेंड टू बी मी। तो ये थोड़ा हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, तो ये एक अलग जर्नी थी टू से कि आगे जाके अब क्या होगा। बट फिर मैंने अपने टेस्ट दिए पूरे 24 घंटे में, क्योंकि डोनर्स का भी एक एक्सटेंसिव टेस्ट प्रोफाइल होता है, तो जब ओनली वो टेस्ट प्रोफाइल क्रॉस होता है और सब रिजल्ट ठीक आते हैं तब जाके आपको फिट डोनर माना जाता है फॉर द सर्जरी। तो ये ऑलमोस्ट 5th डे की बात थी जब मेरे सारे रिजल्ट्स आए और मुझे फिट कहा गया था, वी वर ओके टू प्रोसीड विद द सर्जरी। तो तब जाके मैंने मायरा से बात की थी, तब उसको मैंने बताया था कि बेटा इस छोटा सा एक आपको इनसे मतलब छोटा सा कट होगा, वहां पे आपका जो लिवर काम नहीं कर रहा है उसको हटा के मम्मा का आपको लिवर देंगे, तो यू विल बी फाइन एंड आई विल बी फाइन। तो ऐसे करके बात हुई थी, उसके बाद नेक्स्ट डे सर्जरी चली। जब मेरा लिवर निकाल के उसको फिर मायरा में ट्रांसप्लांट किया गया, उसकी सर्जरी कुछ 12 घंटे चली, देन दैट वॉज द एंड ऑफ द प्रोसेस। बट वहां तक बात खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके बाद पोस्ट रिकवरी इज अनदर चैलेंजिंग फेज। तो समवेयर ये हेल्प हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि व्हाट शी इज गोइंग थ्रू, तो मैं उसको गाइड भी कर पा रही थी। तो उसे पता था कि मम्मी के साथ भी ऐसे ही हुआ है, तो फिर वो भी काफी कॉन्फिडेंट थी, जिसके वजह से वो काफी ज्यादा मतलब स्ट्रांग थी, तो रिकवरी में भी हमें उतना ही जल्दी और उसके बॉडी का सपोर्ट मिला। 40 दिन लगे, वो 40 दिन हॉस्पिटल में थी, मैं ऑलमोस्ट 7 दिन के बाद मैं वापस आ गई थी, बट वो 40 दिन तक हॉस्पिटल में थी। तो धीरे धीरे फिर हमने ब्रीथिंग करना सीखा, बॉडी की इलास्टिसिटी हमने बनानी सीखी, हमने फिर वॉक करना सीखा, खाना खाना सीखा, छींकना सीखा। तो ये पूरा हमारा जर्नी रहा। अब जाके हम अपने आप को नॉर्मल महसूस करते हैं, बट ऐसे दिनों में फिर याद आता है कि हम कितने ग्रेटफुल हैं।
1: अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ तो आपने दो तीन चीजें मेंशन की हैं, खाना खाना सीखा, छींकना सीखा, ये बहुत ज्यादा यू नो माइन्यूट लेवल पर चीजें आ जाती हैं। आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये थोड़ा सा एक्सपेंड कर सके इन पॉइंट्स को प्लीज।
2: श्योर, क्योंकि आपकी जब सर्जरी होती है तो जो बॉडी का मतलब जो खोल के बंद किया जाता है उसके वजह से आपका जो नॉर्मल फंक्शनिंग होता है इन सब छोटी चीजों का, ये काफी डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप जब खाते हो तो हर निवाले के साथ आपका जो इंसिशन है, जो स्टिचेस है, वो सब दर्द करते हैं। तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर एंड कम बैक टू नॉर्मल। जब आप ब्रीथ करते हो तो ऐसे आपको लगता है कि आप शायद सिर्फ 10% ऑफ द लंग कैपेसिटी के साथ ब्रीथ कर रहे हो। मतलब हम बात भी जब करते थे तो 3-4 शब्द के आगे हम बोल नहीं पाते थे। हमको ऑलमोस्ट 1 महीना लगा कि हम मतलब नॉर्मल ब्रीथ करके एक सेंटेंस बोल पाए। तो फिर हम जब वॉक करते थे तब भी यही होता था कि ब्रीथिंग कैपेसिटी काफी लिमिटेड हो जाती थी, तो 2-3 स्टेप चलते थे फिर बैठ जाते थे, फिर 2-3 स्टेप चलते थे फिर बैठ जाते थे। मतलब दिस इज ऑल पोस्ट सर्जरी इम्प्लीकेशंस की आपकी बॉडी काफी वीक हो जाती है, बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती, एंड जस्ट बिकॉज सब कुछ खोल के फिर बंद किया जाता है तो द ऑर्गन्स ऑल्सो टेक अ वाइल्ड टू गेट एडजस्टेड टू द न्यू रूटीन। तो इसीलिए आपका जो प्री सर्जरी बॉडी है उसकी फिटनेस काफी हेल्प करती है टू रिकवर लेटर आफ्टर दिस फेज।
1: आपके जो थॉट्स थे डोनेट करने के पहले और आफ्टर डोनेशन की जो आपकी लाइफ है, क्या कुछ आपने अलग पाया? हाउ डू यू फील अबाउट दिस कॉज नाउ? प्लीज वो थोड़ा सा हमें एलाबोरेट करके बताएं।
2: ड्यूरिंग द सर्जरी तो ऐसे था कि मतलब जो भी बन पाए हम करेंगे टू इंश्योर कि हम मायरा को एक दूसरा जन्म दे सके, और उसका उसकी जो सर्जरी हुई थी वो उसके बर्थडे के दिन ही हुई थी, तो मैं तो उसको दूसरा जन्म ही कहूंगी। मैं तो सबको कहती हूँ कि मैंने अपनी बेटी को दो बार जन्म दिया है, तो मैं उसमें काफी अपने आप को प्राउड फील करती हूँ और भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। बट तब डॉक्टर्स काफी आपको एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन भी करते हैं कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, मैं वो काफी ट्रांसपेरेंटली भी बताऊंगी आपको। तो ऐसे होता है कि आफ्टर ऑर्गन हैज बीन ट्रांसप्लांटेड, रिसिपिएंट के लिए इम्यूनो सप्रेशन स्टार्ट किया जाता है ताकि जो ऑर्गन उनको नया मिला है वो उनकी बॉडी खुद रिजेक्ट ना करे। तो ये ऐसी मेडिकेशन होती है जो आपको हर 12 घंटे पे लेनी होती है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कम की जाती है ताकि

0: अपने हैंड्स को हमेशा क्लीन रखो, मल्टीपल टाइम्स वॉश करो, सैनिटाइज करो. अगर आप बच्चे के एज ग्रुप में हो तो आप ऐसा कोई स्कूल ढूंढो जहाँ पे आपकी ये स्पेशल रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जा सके. तो ये सारे जो हमने कोविड के टाइम पे थोड़े प्रिकॉशंस देखे थे, ये बिकम अ पार्ट ऑफ आर नॉर्मल लाइफ. तो मतलब काफी लंबा प्रोसेस रहा है, पूरे 12 महीने की जर्नी रही है, बट अभी हम लोग काफी नॉर्मल लाइफ में घुल मिल गए हैं. हमारा डाइट नॉर्मल हो चुका है, हम लोग एज अ फैमिली भी ट्रैवल करते हैं, वो भी काफी क्लासेस करती है. तो मेरा ऑफिस वाइज भी मैंने ऐसे रोल्स लिए हैं जहाँ पे मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकूँ, कि अगर मायरा को जरूरत पड़े तो आई एम अराउंड. बट काफी नॉर्मल हो चुका है इन टर्म्स ऑफ अवर फूड, अवर सोशल लाइफ, फ्रेंड सर्कल्स. ये तो मैं सबके लिए कहूंगी कि वन, आप भले लिविंग डोनर हो या ना हो, बट प्लीज साइन अप टू बी अ डोनर. आप जब मतलब अगर आप इस दुनिया में रहे ना रहे, बट आप कितने काफी लोगों को आप और जिंदगी दे सकते हैं. ये तो मैंने अपने नाना जी के टाइम से देखा है. वो खुद डॉक्टर थे, तो उन्होंने मतलब इवन बिफोर ही वाज क्लोज टू हिज डेथ, उन्होंने ऑलरेडी साइन अप कर दिया था कि मेरे आंखों को डोनेट किया जाएगा, स्किन को डोनेट किया जाएगा, एंड एनी ऑर्गन विच इज इन वर्किंग कंडीशन को डोनेट किया जाए. तो उनकी तो मतलब तभी से इच्छा थी. मैं तो एंकरेज करूंगी सबको कि आप वन एज एन ऑर्गन डोनर अपने आपको रजिस्टर करें, कि कभी कोई नीड पड़े तो देयर इज समबडी हु कैन रीच आउट टू यू.
1: दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आज का ये शो आपके लिए काफी इंस्पायरिंग रहा होगा.

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
2: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं AIR FM कुरुक्षेत्र और अब समय हो गया है ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक उपहार का।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ऑर्गन इंडिया की कड़ी संख्या नंबर 2। FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बज चुके हैं, समय है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का।

कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि आप जानते हो, इस कार्यक्रम में हम लेते हैं एक खास विषय और उस पर सुनाते हैं आपको कुछ गीत। तो आज हमारा क्या विषय रहेगा, इस पर आप थोड़ा ध्यान दें और सोचें कि आज का हमारा विषय क्या है।

जी साथियों, आज हम बात कर रहे हैं भाग्य के बारे में, किस्मत, नसीब, तकदीर के बारे में। जीवन में घटने वाली उन घटनाओं और परिस्थितियों का योग है भाग्य, जो अक्सर हमारे नियंत्रण से बाहर लगता है। इसे दिव्य शक्ति कह सकते हैं, कर्म का फल, या फिर हम प्रारब्ध भी मान लेते हैं, जो सुख दुख, सफलता विफलता को प्रभावित करता है। भाग्य निश्चित हो सकता है, लेकिन कर्म और प्रयास से इसे बदला या सुधारा जा सकता है।

0: एक आवाज जो बचपन में सुनी थी,
1: एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी,
0: एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है।
1: हम सबकी अपनी आकाशवाणी 90 साल की हो रही है।
0: 90 साल की सेवा, संवाद और संस्कार की यात्रा।
1: आइए इस गौरवमय अवसर पर हम सब मिलकर कहें,
0: आकाशवाणी
1: विश्वास की आवाज।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
1: तकदीर वो भाग्य वो मालिक पहले से ही ब्रह्मांड की रचना बनाने से पहले कर देता है। हर घटना जीव के जन्म मरण उसका रिजक यानी उसका पालन पोषण खान पान और अच्छे बुरे का फैसला वो पहले से ही कर देता है। भाग्य वह रहस्यमयी शक्ति है जो जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों पर सामने आती है और घटनाओं को आकार देती है। कई विचारधाराएं मानती हैं कि हम केवल भाग्य पर ही निर्भर नहीं रह सकते। हमारे वेद और शास्त्रों के अनुसार हमारे कर्म और पुरुषार्थ ही हमारे भाग्य को बनाते हैं। इसे दो तरह से देखा जा सकता है, एक जो पूरी तरह से अनियंत्रित है नेचुरल लक है और दूसरा वह जो कड़ी मेहनत से प्रभावित किया जा सकता है जिसे हम कंट्रोल्ड लक भी कह सकते हैं। हथेली में भाग्य रेखा को जीवन में कंफर्ट सफलता और मेहनत के परिणामों को का सूचक माना जाता है जो उम्र के साथ बदल भी सकती हैं।

कुछ लोग भाग्य को दिव्य कृपा मानते हैं तो कोई इसे संयोग भर मानते हैं। भाग्य कर्म करने वालों का साथ देता है, इसलिए केवल प्रारब्ध के भरोसे न बैठकर अच्छे कर्मों द्वारा उत्तम भाग्य बनाया जा सकता है। घटनाओं का एक पूर्व निर्धारित कर्म, जिसे हम नसीब कहते हैं, किस्मत कहते हैं, इस अवधारणा को ऐसा माना जाता है कि सब कुछ पहले से ही तय है और जो हो रहा है उसी वजह से हो रहा है। यानी ये माना जाता है कि भविष्य पहले से ही निर्धारित है और वैसे ही सब कुछ होगा, चाहे किसी व्यक्ति का हो या सामान्य तौर पर ना हो। यह धारणा लगभग हर संस्कृति में पाई जाती है। हिंदू धर्म में भाग्य निर्माता परमात्मा को माना जाता है, जबकि इस्लाम में यह माना जाता है कि जो अल्लाह ने निर्धारित कर दिया वही सबके साथ होगा, यानी जिसके भाग्य में जो लिखा होगा वैसा ही होगा। अब अगर हम भगवत गीता की बात करें तो भगवत गीता के अनुसार भाग्य पूर्व कर्मों का फल है, लेकिन यह निश्चित नहीं है। मनुष्य अपने वर्तमान कर्म से अपना भाग्य बदल सकता है। गीता कर्म प्रधान है। वह बताती है कि फल की इच्छा ना रखते हुए अच्छे सर्वश्रेष्ठ कर्म करना ही भाग्य को सुंदर बनाने का मार्ग है। आपका भाग्य अचानक नहीं बनता, लेकिन यह हमारे अतीत के कर्मों का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने कर्मों के द्वारा हम अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। मनुष्य अपना भाग्य पल पल लिखता है, बदलता है।

किसी व्यक्ति को जंगल और पहाड़ काटकर रास्ता बनाना पड़ता है, यानी मेहनत करनी पड़ती है, तो किसी को बनी बनाई पक्की सड़क मिल जाती है। इसी सोच के आधार पर हमेशा भाग्य को परिभाषित किया गया है। वर्तमान में हमारे द्वारा किए गए प्रयास ही उज्जवल भविष्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी आज जो हम करने वाले हैं आगे आने वाली पीढ़ियां उसे भोगेंगी। यही बात एक व्यक्ति, एक परिवार, देश और संपूर्ण विश्व के ऊपर भी लागू होती है। भाग्य कोई चमत्कार नहीं है, इतिहास गवाह है कि पुराने जमाने में बड़े से बड़े राजे महाराजे भी हवाई यात्रा का सुख नहीं भोग पाए थे, जो आज एक सामान्य मनुष्य के लिए भी आम बात है।

भारतीय दर्शन के अनुसार भाग्य कर्म का ही फल है। यह उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत को प्रधानता देते हैं, महत्व देते हैं। इसे पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी माना जा सकता है और वर्तमान जीवन में परिस्थितियों के रूप में सामने जो आता है वो भी माना जाता है। केवल भाग्य के भरोसे न बैठकर ईमानदारी से प्रयास करने पर भाग्य को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है, इसे नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ लोग इसे संयोग भी

मानते हैं, जबकि कुछ इसे एक रहस्यमयी ताकत भी मानते हैं जो जीवन को सीमित या निर्देशित कर देता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण जी फरमाते हैं, बताते हैं कि कर्मों के क्षीण हो जाने पर, ख़त्म हो जाने पर भाग्य भी ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को निरंतर अच्छे कर्म ही करने चाहिए। मनुष्य अपने मन से स्वयं को उन्नत बनाता है, अवनत करता है। आत्मा ही स्वयं का मित्र है और शत्रु है। हमारा किसी का भी कर्मों पर पूरा अधिकार नहीं है और उसके परिणामों पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। वर्तमान की परिस्थितियां भाग्य से निर्धारित होती हैं, लेकिन हम उन पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं यह हमारी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है, जो हमारा अगला भाग्य बनाता है। यही हम जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, वैसा ही हमारा भाग्य भी बनता चला जाता है। जब व्यक्ति अपने सभी कर्म ईश्वर को समर्पित कर देता है तो वह भाग्य के बंधनों से ऊपर उठ जाता है, ऐसा श्री कृष्ण जी कहते हैं।

रास्ते मुश्किल हैं, रास्ते मुश्किल हैं, पर हम मंजिल ज़रूर पाएंगे। ये जो किस्मत अकड़ कर बैठी है, इसे भी ज़रूर हराएंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने को हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार। इन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के UAE को एक्सपोर्ट्स अब $36.63 बिलियन से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो UAE से भारत आने वाले सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
3: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने वीडी सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को सीपीएम के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमड़ी के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
6: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
7: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि

0: इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
1: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जहां संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
0: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए क्षित कुमार वैद्यान।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई

0: और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces Special Intensive Division Phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers' meeting, which is underway in New Delhi. Earlier in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
3: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
2: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना। गुलजार का लिखा, आरजी बर्मन का संगीतबद्ध किया फिल्म घर से।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: आशा भोसले का गाया ये गीत सुनिए। शहरयार ने इस गीत को लिखा है, खय्याम का संगीत है, फिल्म का नाम उमराव जान।

0: उमराव जान फिल्म से ये गीत आपने अभी सुना। शहरयार का लिखा, खय्याम के संगीत से सजा, आशा भोसले की आवाज में।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने कितने

आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपके लिए की ये आखिरी प्रस्तुति। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। शागिर्द फिल्म का गीत है। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

शागिर्द फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत से सजा और इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपके लिए यहीं संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम होगा बस थोड़ी ही देर में।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

कुचामन सिटी राजस्थान के जिला मुख्यालय में 14 मई 1943 को प्रसिद्ध निर्माता ताराचंद बड़जात्या के यहाँ जन्मे राजकुमार बड़जात्या। खनन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 1962 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में इन्होंने दाखिला लिया, लेकिन पिता के अनुरोध पर राजश्री प्रोडक्शंस में शामिल होने के लिए इन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी।

राजश्री प्रोडक्शन एक फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से हिंदी फिल्में शामिल रही हैं। राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्में मनोरंजन की मांग को हमेशा ही पूरी करती रही हैं। फिल्मों के वितरण और प्रोडक्शंस के कार्यों को पूरा पूरा सफलतापूर्वक अंजाम देना राजकुमार बड़जात्या ने आरंभ कर दिया था। एक निर्माता के रूप में 1994 से लेकर 2019 तक ये सक्रिय रहे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में पिया के घर से लेकर मैंने प्यार किया तक का सफर इन्होंने पूरा किया। सह निर्माता के रूप में 1979 की फिल्म नैया से ये जुड़े।

राजकुमार बड़जात्या एक फिल्मकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बड़जात्या परिवार का एक ऐसा सदस्य जिन्होंने फिल्म निर्माण और वितरण के अपने पारिवारिक व्यवसाय को बड़ी ही शिद्दत से निभाया। फिल्म निर्माण की अपनी विरासत में इन्होंने कई पारिवारिक मूल्यों के साथ ली हुई लोकप्रिय संगीतमय कलात्मक फिल्मों का निर्माण किया। एक फिल्मकार की संपत्ति और समाज में मान मर्यादा उनकी फिल्मों से ही पहचानी जाती है। राजकुमार बड़जात्या हिंदी सिनेमा जगत में बेहतरीन कथाओं, अभिनय, गीत संगीत के माध्यम से आम और खास दर्शकों को उनके पसंदीदा विषयों की सार्थक फिल्में देने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। राजकुमार बड़जात्या सबसे पहले 1972 की फिल्म पिया का घर से जुड़े। बासु चटर्जी की लिखी और निर्देशित इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था ताराचंद बड़जात्या ने।

राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म सौदागर, जिसके निर्देशक थे सुधेंदु रॉय, नूतन, अमिताभ बच्चन, पद्मा खन्ना अभिनीत। इस फिल्म के राजकुमार बड़जात्या सहयोगी निर्माता थे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने तपस्या फिल्म में काम किया, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म। इस फिल्म का निर्देशन अनिल गांगुली ने किया और निर्माता थे ताराचंद बड़जात्या। ये फिल्म अनुभवी बांग्ला उपन्यासकार आशापूर्णा देवी की कहानी पर आधारित थी। फिल्म में राखी, परीक्षित साहनी, ललिता पवार ने मुख्य भूमिकाएं अदा की थी। संगीत रविंद्र जैन का था। इस फिल्म ने 1976 वर्ष की संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही राखी। सन 1980 में इसी फिल्म को तेलुगु भाषा में भी बनाया गया। सन 1976 की चितचोर, 1980 की एक बार कहूं, 1984 की सारांश और 1989 की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया में भी राजकुमार बड़जात्या एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में रहे।

1994 में आई हम आपके हैं कौन, HAH के यानी हम आपके हैं कौन, राजकुमार बड़जात्या की एक निर्माता के रूप में आई संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जिसे इनके पुत्र सूरज बड़जात्या ने लिखा और निर्देशित किया और राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के बैनर तले इसका निर्माण किया गया। माधुरी दीक्षित और सलमान खान अभिनीत 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई यह फिल्म वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म ने फिल्म वितरण के नए तरीकों को अख्तियार कर साफ सुथरी कहानी के साथ भारतीय फिल्म उद्योग को हिंसक कहानी ली हुई फिल्मों के बीच बदलाव का एक सुकून भरा एहसास दिया। साथ ही साथ निर्माण और वितरण का तरीका भी बदला इस फिल्म ने। राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अन्य अवार्ड्स में इस फिल्म की

एच ए एच के बाद 1999 में आई निर्माता राजकुमार बड़जात्या की हम साथ साथ हैं। अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या, अपने परिवार के सदस्यों के साथ राजकुमार बड़जात्या ने इस फिल्म का निर्माण किया। कहानी और निर्देशन सूरज बड़जात्या का था। ये फिल्म भी उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली और दशक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। समीक्षकों ने भी इसे खूब सराहा। ये फिल्म टोरंटो में 6 स्क्रीन्स पर कनाडा के सिनेमा घरों में प्रदर्शित होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी। वैसे ये फिल्म अपनी निर्धारित प्रदर्शित तिथि से पहले ही रिलीज हो जाती, पर संगीतकार राम लक्ष्मण ने साउंड ट्रैक एल्बम की जांच के लिए समय लिया। पोस्ट प्रोडक्शन, सिनेमेटोग्राफी, कोरियोग्राफी के साथ साथ अन्य सभी काम पूरे होने के बाद आखिरकार 5 नवंबर 1999 को स्क्रीन्स पर ये फिल्म आई

2002 में फिल्म आई हम प्यार तुमसे कर बैठे। जुगल हंसराज और टीना राणा इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे। 2003 की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ जो चितचोर पर आधारित फिल्म थी और इस फिल्म के कलाकार थे ऋतिक रोशन, करीना कपूर और अभिषेक बच्चन। राशि प्रोडक्शंस की इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था यशराज फिल्म्स ने।

राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित सन 2006 में फिल्म आई विवाह। मुख्य कलाकार थे शाहिद कपूर और अमृता राव। रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसमें सगाई से लेकर शादी तक के सफर की कहानी को बखूबी प्रदर्शित किया गया था।

एक विवाह ऐसा भी, इस नाम की फिल्म लेकर आए राजकुमार बड़जात्या साल 2008 में। मुख्य भूमिकाएं निभाई थी ईशा कोप्पिकर, सोनू सूद और आलोक नाथ ने। ये फिल्म आशापूर्णा देवी की कहानी पर

हम राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं। 2010 में इन्होंने फिल्म बनाई इस लाइफ में, 2011 में लव यू मिस्टर कलाकार। ये फिल्में राजकुमार बड़जात्या की अन्य फिल्मों की तरह लोकप्रिय नहीं हुई।

इसी क्रम में 2011 में सचिन पिलगांवकर के निर्देशन में राष्ट्रीय फिल्म्स की प्रसिद्ध फिल्म अखियों के झरोखों से की सीक्वल आई जाना पहचाना, जिसमें सचिन और रंजीता ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। ये फिल्म भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिर 2015 में आई राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म। ये फिल्म उस वर्ष की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म थी प्रेम रत्न।

सलमान खान, सोनम कपूर, नील नितिन मुकेश अभिनीत ये फिल्म दर्शकों के मापदंड पर खरी उतरी। 2019 में एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या अपनी आखिरी फिल्म लेकर आए हम चार। अभिषेक दीक्षित लिखित और निर्देशित इस फिल्म में चार नए चेहरों को पेश किया गया था। ये राजश्री प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की 58वीं फिल्म थी।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म निर्माता राजकुमार बड़जात्या पर। आलेख और स्वर जी श्याम का, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 10 बजे हैं और ये समय है आपकी पसंदा फिल्मी संगीत पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम चांदनी रातें।

कार्यक्रम चांदनी रातें में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की इस गीत के साथ।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म मेरा साया का ये गीत। इसे सुनने के लिए आप सभी की फरमाइश आई थी, और सबसे पहले जो हमें व्हाट्सएप मैसेज आया है वो आया है 6:22 पर, और ये हैं जलालाबाद शामली यूपी से हैं रशीद मंसूरी, आयान मंसूरी और सैन मंसूरी। फिर हैं हनुमानगढ़ टाउन से हैं राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं महाराजा कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। सनावत से हैं शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुनाना। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि, राजीम, ज्योति और प्रहलाद। शिवाजी नगर खंडवा से हैं राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम और अक्षय सेन। कुरुक्षेत्र से हैं अनंता भगत, अरुणा, चेतन और सुलोचना। ग्राम कृष्ण बुजुर्ग जिला अमरावली महाराष्ट्र से परवीन हागोले, योगिता प्रियाली, पार्थ और हागोने परिवार। दाऊद सराय सहारनपुर से हैं अनवर साबरी, शैनो, मुदस्सिर, मुजक्किर और जरीफ अंसारी। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख भूसा, माईजान, राजकुमार बुड़ाना। और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीम हसन। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा। गोल बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से हैं राजेश डी अंसारी

और आजमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम और दानिश अंसारी, जनकपुरी सानपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्टो, पद्मा टाकिस नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह और सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी शाह। आप सभी ने सुना फिल्म मेरा साया का ये गीत। अगला गीत हम ले रहे हैं फिल्म अनपढ़ से, जिसे सुनने के लिए आप सभी ने हमें व्हाट्सएप मैसेज किया है। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरव, साइना और निवान, मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजाल अलल्ला, फरहान अलल्ला, समीरा आजमीन गुड़िया, ये सभी हैं तेलंगाना भोंगीर से। गांव हीरा वाली फजिल का पंजाब से हैं सुभाष गोदारा, बिमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु, कमला बालूजा, मधु बालूजा, सागर और एमपी से उमंग मलिक, आकाश, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, ये सभी हैं मजनू का टीला। त्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल। नवांशहर पंजाब से गगनदीप थापी, तृप्ता कुमारी थापी, डॉक्टर प्रियंका थापी, प्रशांत थापी, प्रीतम थापी और बेबी वामिका और वाणी थांदी। मुसर्रत जहां नाच, तलहत जहां नाच, फरहत रीत, नुजरत नुजहत, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, ये सभी हैं नूर महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश रॉय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी रॉय, दुबिहा निवेदा जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय, रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय, सुरेंद्र संधु, अनीता संधु, रोहित, रितेश, शिखा, प्रतीशा और मैक्स। नलेश्वर नगर नलवेर महाराज से हैं पीएस नोहालकर, निर्मला, विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार, आशीष। जिला सिरसा हरियाणा से हैं सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या बिजारनिया। आप सभी की पसंद पर फिल्म अनपढ़ का ये गीत।

0: एक आवाज जो बचपन में सुनी थी,
1: एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी,
0: एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है।
1: हम सबकी अपनी आकाशवाणी 90 साल की हो रही है।
0: 90 साल की सेवा, संवाद और संस्कार की यात्रा।
1: आइए इस गौरवमय अवसर पर हम सब मिलकर कहें,
0: आकाशवाणी
1: विश्वास की आवाज।
0: एक आवाज जो बचपन में सुनी थी,
1: एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी,
0: एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है।
1: हम सबकी अपनी आकाशवाणी 90 साल की हो रही है।
0: 90 साल की सेवा, संवाद और संस्कार की यात्रा।
1: आइए इस गौरवमय अवसर पर हम सब मिलकर कहें,
0: आकाशवाणी
1: विश्वास की आवाज।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चांदनी रातें। अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनाते हैं फिल्म पारस मनी का गीत, जिसे सुनने के लिए आप सभी ने हमें फरमाइश भेजी है। गांव लसूड़िया, पाता तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से हैं गोविंद वैष्णव दिव्या, सुमन कोमल परी, कृतिका रमेश चंद्र डांगी। छत्तीसगढ़ से हैं बबूल साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबू राध्या। बटिंडा रोड मंडी डवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, लक्की, तानिया। दादा बाबू रोड गिरडीह से हैं झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा, हसन बाबू।

वो मिफ्रा बेबी चाहत और सादिया। सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव, ये सभी हैं नारकली बजारा जगराव से। शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ से हैं मारा से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे। कमला बालूजा, मधु सागर और सतना एमपी से, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक मजनू का टीला से। झारखंड से हैं एसएम जावेद, जगुप्ता अंजुम, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, ये सभी। सेक्टर 5 कुंडी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्भी। राजकुमार ड्यूडी, प्रमोद कुमार ड्यूडी, पुष्पेंद्र कुमार, ये सभी हैं हिसार से। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखिंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से हैं पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय। ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंचोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंचोलिया। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरहमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून। सहारनपुर से हैं आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग। मित्रनगर बीड शहर महाराष्ट्र से विकास बंसोड़े, रेखा, अदिति और वैभव। फजिलका पंजाब कैसे हैं खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशाल, लाडी, शालनी, दिवानशी, वाणी, आर बी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और समस्त खेड़ा परिवार। गांधी चौक बाड़मेर से हैं बबलेश पंवार, डैनी, मनीष, रामदेवरा से हैं दिनेश चौहान, डांगरी से हैं बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से हैं खुदाबख्श खलीफा। पटेल नगर मलोड से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता, निखिल, तन्वी और अंकित। वजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम और आशीष, ये सभी। पलेरा टिक्कमगढ़ मध्य प्रदेश से। गंजरूड़ वारा से हैं उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनास, नवाजिश शेख, दानिश शेख और अमन आफरीदी। संबलपुर कांकेर से हैं फागू राम यादव, ज्योति और ओजस्वी। लखनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज और त्रिपुति साहू। मुरादाबाद से शेख जिया उरहान, शेख अता उरहान, शेख हबीब बुरहान, डाबकी रोड अकोला से लिखते हैं शशीला देवी मधुरकर, सदानंद कुमार, गौरव और आरव और अर्पिता। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरलाल, अविराज, ये सभी हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरा। सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति, गुमहरिया जमशेदपुर,

से विपिन, स्वाति, देव कुमार और आर्य कुमार मीन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र हैं। गंगाधर यमेकर, प्रमोद और प्रदीप छोटा बाजार थानेसर से। श्याम शर्मा, मिली शर्मा, चिराग शर्मा, राघव, तनुज, पलक, उदिश पपरी बाजार चंदौली से। विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से। मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, गमहरिया जमशेदपुर से। रोहन और आर्य, चकिया बाजार चंदौली से। सुंदर जायसवाल और सुमन, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण और नितिन और मयंक शर्मा। आप सभी की पसंद पर फिल्म पारस मणि का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म पारस मणि का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम ले रहे हैं।

ये फिल्म मेरा साया से, इसे सुनने के लिए आप सभी ने मैसेज किया है। एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, इजाद कुरैशी, आकिल कुरैशी, बेबी अरीबा हबीबा, ये हैं पटाली रोड, गंड रोड, वारा, उत्तर प्रदेश से। जिला नाम मुरादाबाद से हैं, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तनवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह, रणधीर, बांगर, गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम, वीरेन और मनराज, रुपेश संघई, महेश, प्रगेश, प्रतेश और पूरा संघई परिवार। कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मनत, गुरकिरत और गुरशब्द सिंह राहुल। वेडिंग खेड़ा, पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। आर्यनगर कोता, कोका भिलाई से हैं उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल, अजीत, आयुष और नंदनी। नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू, ये सभी हैं धनोरी तेलीवाला से। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, ये सभी कनेरा मोहल्ला पटियाला से। गांव उगाला, जिला अंबाला, हरियाणा से हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के सभी सदस्य। अमरावती से हैं सिद्धार्थ, अर्पना, प्रणव और प्रतिभा। ग्राम बहरामपुर टैमा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा, अमित, सचिन, मास्टर समर राज, बेबी अरोही, ऐशिका, अंजलि, स्वीता, पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी, आरजू पप्पू खुशदिल, हंसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी और पूरा खुर्दल परिवार। ये हैं चकला बाजार, समाना शहर, पंजाब से। गोवर्धन बिहारी, कॉलोनी दिल्ली से हैं तुलसी मस्कीन, वीना, चैतन्य, मेघा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना। जोहरनगर दुर्ग से हैं आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु, रिधान और खुराना परिवार। झारखंड सुपाही साही गांव से देवेंद्र तांती, राकेश, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा, दीपाली और दिवेन। हरियाणा सिली कला, जिला यमुनानगर से, हरियाणा से जय सिंह काम्बोज, विजय सिंह काम्बोज, रिदम निश्चय सिंह और जयपाल धीमान, उनके साथ हैं खुर्शीद चमरोड़ी। आप सभी की पसंद पर फिल्म मेरा साया का ये गीत।

साथियों, आप सुन रहे थे फिल्म मेरा साया का गीत। और अगली ख्वाहिश आपकी पूरी कर देते हैं फिल्म वो कौन थी से ये गीत सुनाकर। और इसे गीत को सुनने के लिए आप सभी ने हमें अपनी फरमाइश भेजी है व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। बीड शहर महाराष्ट्र से हैं नंदकिशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री, अंजलि, बाला साहेब, रामनिवास और धनजय, बीपी कुलथे। जिला किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव और भानुप्रिया। गांव मुरादागढ़ जिला करनाल से हैं हरियाणा से रमेश कुमार कंबोज, पिंकी वंश और भूपेश कुमार कंबोज। रामशरण दास नागर और राजपति गांव नलवा वासी क्षेत्र से। रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से हैं प्रशांत सिंधे, सुनीता, यशराज, ऋषि और कृष्णा घोड़के। मधु बालूजा, कमल बालूजा, सागर और सतना एमपी से। उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माहिक मलिक, ये सभी एमपी से। और मजनू का टीला से। जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान समीर, सलमा मुलानी, मुमताज, दिलशाद, नसीर, उनके चाचा चाची और पूरा मुलानी परिवार, ये सभी हैं। फूल चिंचोली तालुंडा पंडरपुर से।

उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव अनंत और सत्यम अनंत, बाकुड़ झारखंड से। अजीज भाई, मतीन भाई, शेख चंद, फारूक फुल्ले वाले, सैयद खलील, मुबीन भाई, एमडी, यासीन, मूसा करीम, शेख सलीम और निज़ामाबाद तेलंगाना से। नर्मदा पार्क मंगलबेड़ा से हैं मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। करणवीर हाउस भूचो कैंचियाँ बडिंडा पंजाब से हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर, तपिंदर, कुलदीप, दमन, अभिजोत। मुंदीजक पागलपुर से दिलीप कुमार सोनी और कमल किशोर। योगेंद्र कुमार चिंडालिया, नरेंद्र कुमार चिंडालिया, लक्ष्मी, सुरेंद्र कुमार, बिल्लू सिंह, ये सभी हैं हरियाणा लोक कॉलोनी लाहौर से। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म वो खून थी का ये गीत।

अगला गीत हम ले रहे हैं फिल्म पगला कहीं का, और इसे सुनने के लिए गोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिंपा, कपिल, पूजा परिहार, मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं अभिजीत गुहानकर, सरिता, सिद्धांत, एकांश, लाडला टुकटुक, विनोदपुरी वीपी रंजन रंजू, अशोक, सुशील, बीके पुरी, कैलाश, नीलम रामा, पालीपुरी सुनील और वीके पुरी, गांव चोलदा बागपत से हैं संजय ढींगिया, नमन अपार, हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर, मीनाक्षी काना, श्रीमती मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, ये सभी हैं जिला झालावाड़ राजस्थान से, नैना सत्यनारायण, कपिल, शोभा, फुंदीबाई बागरी, ये सभी भी रटलाई जिला झालावाड़ से, शेरवानी स्कूल गंजरूड़वाड़ा, आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी, अनिल मोहन, उषा मोहन, टीलू नायक, कैथल हरियाणा से, मधु नायक, गांव हरुडीही चांडील झारखंड से हैं तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनोरमा मनमोहिनी महतो, दीनबंधु महतो,

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने